आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं।

0: दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अशोक शर्मा की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुने सुरेश वाडकर के स्वर में ये भक्ति पद।

चित्रा सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रायदास की पारंपरिक शब्द रचना, संगीत जगजीत सिंह का था। आइए कार्यक्रम वंदना के अंत में सुने उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है, सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख डॉक्टर ए के चौहान का है।
1: प्रत्येक मनुष्य की रुचियां और इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं और यही संकेत है मनुष्य के विभिन्न स्वभावों का। स्वभावानुसार आगे मनुष्य कर्म करता है और कर्म फल पाकर उस सुख दुख की अनुभूति करता है। इस प्रकार देखें तो फल अथवा प्रारब्ध क्या मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है? कितना सीधा गणित है, किंतु कितने व्यक्ति हैं जो इस बात को गंभीरता से सोचते हैं। स्वयं के जीवन के प्रति स्वयं ही गंभीर न होना उसकी अज्ञानता का प्रतीक है, अथवा उपेक्षा वृत्ति का, अथवा परिस्थितियों के गुलाम रहने की प्रवृत्ति का द्योतक है। विचार कीजिए, आखिर बात क्या है कि आप जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? ध्यान दीजिए कि आखिर क्यों आप अपनी अलग जगह नहीं बना पा रहे हैं। अपने आसपास के लोगों में निर्णय लीजिए, अपनी कमजोरी पर मुझे स्वयं ही विजय पानी है। आप मात्र गंभीर होइए अपने जीवन के प्रति, देखिए जीवन कितनी तेजी से प्रगति पर पहुंचता है। सोचिए आखिर जीवन है क्या, उसका अस्तित्व कहाँ है और उसमें गति कैसे आती है। निश्चित जानिए जीवन नाम है उस प्राण शक्ति का जो कि आप में समाई हुई है। उसका अस्तित्व है कालचक्र में, जिसके सहारे वह स्थित है और उसमें गति है आपकी इच्छा शक्ति पर। फिर आपके जीवन की अधोगति अथवा प्रगति के लिए दूसरों को जवाबदार आप कैसे ठहरा सकते हैं? गंभीर होइए अपने जीवन के प्रति, विचार कीजिए अपनी दिनचर्या की ओर और परिणाम लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। किसकी ताकत है कि रोक सके आपको? सीखना है तो मात्र वर्तमान में सही ढंग से जीने की कला, भूतकाल से शिक्षा लेने की आदत और भविष्य के प्रति आश्वस्त होने का संकल्प। वर्तमान के एक एक क्षण को कभी व्यर्थ मत जाने दीजिए, वही वर्तमान भूतकाल बनेगा। और विश्राम के क्षणों में विचार कर लीजिए अपने क्रियाकलाप पर। आगे श्रम करने जब आप उठेंगे तो भविष्य ही वर्तमान बनकर सामने आएगा। अविलंब उसे पकड़ लीजिए और भिड़ जाइए अपने संकल्प को अमली जामा पहनाने की दिशा की ओर। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे ये देखकर कि सफलता आपके कदम चूम रही है। स्मरण रहे, आप अपने स्वभाव में विकृति भर न आने देवें, अपनी इच्छा में कुरुचि का समावेश मात्र न होने देवें और आप अपने संकल्प में दृढ़ता मात्र बनाए रखें। अतिरिक्त समय में सदा सत्संग कीजिए, सज्जनों से संपर्क रखिए और स्वाध्याय की सुरुचि में आनंद लीजिए। आप देखेंगे कि दुर्गुण कैसे खुद ही विदाई लेते जा रहे हैं और सद्गुणों का समावेश स्वयं ही कैसे होते जा रहे हैं। है ना, कितनी छोटी बात किंतु कितनी अधिक सारगर्भित, इसकी अनुभूति कालांतर में स्वयं ही आपको हो जाएगी। असल में मनुष्य जब बहिर्मुखी होने लगता है तो उसकी आंतरिक अटूट शक्तियां टूटनी शुरू हो जाती हैं और अंतर्मुखी होने पर वे ही संगठित होकर कर्म करने लगती हैं। किसी भी महापुरुष को ले लीजिए, उसकी जीवनी पर विचार कीजिए तो पाएंगे कि सफलता का राज मात्र इतना ही है कि उनकी संकल्प शक्ति प्रबल होती है और अपनी सुरुचियों पर दृष्टि निरंतर बनी रहती है। सोचिए सुरुचि का निर्माण क्या मनुष्य के अपने हाथ में नहीं है?
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख डॉक्टर ए के चौहान का था। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान,
2: एपिसोड नंबर 200/220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विफल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था, अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर चतुरसेन और राजेंद्र काचरू के थे और आकाशवाणी की इस संगीतमयी प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। इसमें भिंडी की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ओकेश चंद्राकर।
1: आज हम बात करेंगे भिंडी की उन्नत खेती। भिंडी जो है भारत की प्रमुख फसल है। यह पोषण से भरपूर होने के साथ साथ किसानों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से उगाया जाए तो कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। बात करें भिंडी की खेती के लिए जलवायु की, तो भिंडी क्या है, एक गर्म जलवायु की फसल है और इसे गर्म एवं आर्द्र जलवायु पसंद होती है। इसके लिए 25 से 30 और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। अत्यधिक या पाला इस फसल के लिए हानिकारक होता है। बात करें मिट्टी की, तो भिंडी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली, अच्छी जिसमें कार्बनिक मात्रा अच्छी हो, तो इसका उत्पादन जो है काफी अच्छा आता है। इसके लिए जल निकास वाली दोमट या बुलई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जल भरा वाली भूमि में से इसको बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें जड़ सड़न का भी समस्या आ सकती है, तो ज्यादा जल भराव वाली भूमि इसका चयन न करें। भिंडी की अच्छी फसल के लिए खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई करें। उसके बाद लास्ट जुताई के बाद इसमें रोटावेटर से मिट्टी को इसमें भुरभुरी कर ले, रोटावेटर चला के, और अंतिम जुताई के समय 15 से 20 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। इससे मिट्टी की जो उर्वरक है वह काफी अच्छी बढ़ती है और पौधे की प्रारंभिक वृद्धि भी काफी अच्छी होती है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। बात करें उन्नत किस्म की, तो अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन अत्यंत आवश्यक होता है। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं, जिसमें उन्नत किस्म की बात करें भिंडी की, तो पूषा सावनी, अर्का नामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, अर्का अभ्या, ये सारी जो किस्म है वो अधिक उत्पादन देने के साथ साथ रोगरोधी तथा बाजार में अधिक मांग वाली होती है। बात करें भिंडी की बुआई और बुआई का समय और बीज दर की, तो भिंडी की बुआई अलग अलग मौसम में की जा सकती है। बीज दर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और बीज को बोने से पहले कार्बेंडाजिम या थायराम या बावेस्टीन 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज से उपचारित करके इसकी बुआई करें, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों से फसल को बचाया जा सके। बात करें इसकी दूरी की, तो कतार से कतार के बीच की जो दूरी है वह 45 से 60 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है वह 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे उत्पादन काफी अच्छा मिलता है। बात करें भिंडी में सिंचाई प्रबंधन की, भिंडी की जो फसल है उसमें 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे, पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखे। फूल एवं फल बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बात करें खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की, तो अच्छी उत्पादन लेने के लिए संतुलित पोषक तत्व बहुत ही आवश्यक होता है, जिसमें गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, नत्रजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस

0: का उपयोग करके खरपतवार को हम कम कर सकते हैं, इससे मिट्टी में नमी भी बने रहती है। बात करें कीट एवं रोग प्रबंधन की, तो भिंडी में कई प्रकार के कीट एवं रोग लगते हैं जिसका समय पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें मुख्य रूप से आता है फ्रूट एवं सूट बोरर। इसके लिए एमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। एक समस्या आता है येलो वेन मोजेक, इसके लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें। रोगरोधी किस्म की बात करें तो अर्का अभ्या, अर्का अनामिका, ये रोगरोधी किस्म है, इसको लगाएं। साथ ही साथ इसमें जो रोगरोधी जो जिसमें रोग लग गया है उसको उखाड़ के वहां से फेंक देना चाहिए। बात करें तुड़ाई की, तो भिंडी की फसल में बुआई के लगभग 45 से 50 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है, तो फल को कोमल अवस्था में ही तोड़ना चाहिए और 2 से 3 दिन के अंतराल पर इसकी तुड़ाई करते रहें। अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। उत्पादन एवं लाभ की बात करें तो यदि किसान वैज्ञानिक पद्धति से इसको लगाते हैं तो भिंडी 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ले सकते हैं। बाजार में भिंडी की मांग हमेशा बनी रहती है जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में भिंडी की उन्नत खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ओकेश चंद्राकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती सुनिएगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अर्नब चटर्जी का ख्याल गायन और स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन के 11:40 पर सुनिएगा सिद्धेश्वरी देवी का दादरा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कमिश्नरेट रायपुर की अनूठी पहल पर रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला से खास संवाद। शासकीय दृष्टि से और श्रवण बाधित विद्यालय में प्रवेश संबंधी जानकारी पर श्री अरविंद गेडाम से होगी विशेष बातचीत और आज के बदलते दौर में प्रभावी पेरेंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स पर पेरेंटिंग कोच श्रीमती पल्लवी मिश्रा से होगी विशेष चर्चा। प्रस्तुति होगी श्रेया श्रीवास्तव की। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में 8:30 पर बच्चों में किडनी से संबंधित रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से होगी भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमाशंकर। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिएगा मॉनसून की स्थिति में के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह। इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी।

सुबह 10 बजे कार्यक्रम नई फिल्मों से सदाबहार नगमे पेश करेंगे दिन के 11:05 पर आकाशवाणी संग्रहालय से के अंतर्गत। दोपहर 12 बजे सुनिएगा गाथा झरोखो से का भाग 6। इसमें आज आप सुनेंगे लोरिक चंदा की गाथा, लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और प्रस्तुति मोहन सी रामानी की होगी। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आज के गोट का विषय होगा अब तो आषाढ़ आ गए रे। साथ ही सुनिएगा विशेष कार्यक्रम बूंद नहीं ये जीवन आए, आलेख और वाचन होगा आशा शर्मा का, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की और इसके संयोजक होंगे रमाशंकर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट 5:00। युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में 5:10 पर अपन गोट का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। साथ ही आप सुनेंगे क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। शाम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है श्रेया श्रीवास्तव।

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। जिंदगी के दरवाजे पर एक बार फिर से सुबह ने दस्तक दी है और इस नए दिन के साथ हमें जीवन की नई सौगात दी है। हर सूर्योदय हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर भी असीमित शक्तियों और ऊर्जाओं का भंडार है, जो केंद्रित होने पर और सही दिशा मिलने पर सूर्य के समान ही चमक उठती है। आज की ये सुबह बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें जिंदगी का एहसास है। इस नए दिन में एक नई शुरुआत है। ये समय है खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का और सकारात्मक सोच लिए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने का, क्योंकि सूझबूझ से लिया हमारा एक निर्णय हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है। तो आइए अपने कदम बढ़ाएं और इस नए जीवन को गले लगाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में। ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

जीवन में कभी भी जोखिम लेने से ना डरें। अगर आप जीतते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं, और अगर हारते हैं तो भी दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्रोताओं, ये प्रेरणादायक सुविचार है भारत के महान दार्शनिक, विचारक और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का, और यहाँ इस सुविचार के माध्यम से वो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में कभी भी हमें जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिणाम चाहे जो भी हो वो हमारे पक्ष में ही होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो नेतृत्व कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश जीत ना भी मिले और हम हार जाते हैं तब भी हम अपने अनुभव के आधार पर दूसरों का सफल मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथियों, जब भी हम जीवन में कुछ नया और कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं तब बहुत सी चुनौतियां और समस्याएं आड़े आती हैं। ऐसे में कई बार कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और अपने कदम पीछे कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वे कभी भी अपने जीवन में कोई भी बड़ा मकाम हासिल ही नहीं कर पाते और सफलता के सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन चुनौतियों को जीवन की परीक्षा मान जी जान लगाकर प्रयास करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में विचलित होने के बजाय वो जोखिम लेते हैं और जीवन को नए मायने देते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है और हमारी असली ताकत भी। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दुनिया भी हम पर विश्वास नहीं कर पाती। आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा में हमारा बढ़ाया हुआ हर एक कदम कभी भी निष्फल नहीं होता। जब हम अपने विचारों में और कार्यों में तालमेल बना लेते हैं तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता हमारे कदम चूमती है। इसलिए जीवन में कभी भी डरे नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ दृढ़तापूर्वक अपना कार्य करते हुए जीवन में जोखिम जरूर लें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर आप हार भी गए तो आप एक कुशल मार्गदर्शक बनेंगे, और अगर जीत गए तो एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता। अब ऐसे में निर्णय आपका है कि आप अपने लिए कैसा जीवन चुनते हैं।

0: श्रोताओं, आम जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर छत्तीसगढ़ सरकार और कमिश्नरेट रायपुर द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कमिश्नरेट रायपुर द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और QR कोडिंग का कार्य कर इस दिशा में एक अनूठी पहल की गई है और ऐसा करने वाला रायपुर देश का पहला जिला बन गया है, जिसके चलते कमिश्नरेट रायपुर ने अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा लिया है, जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। ऐसे में इस डिजिटल रजिस्ट्रेशन, QR कोडिंग और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से जुड़ी सटीक और अधिकृत जानकारी आप सभी तक पहुंचाने हमने बात की पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉक्टर संजीव शुक्ला से। तो आइए आपको सुनवाएं इस विषय पर रायपुर कमिश्नर डॉक्टर शुक्ला से विशेष संवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार
0: सर, हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुरुस्त करने, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की पहल, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और कोडिंग के विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये असल में क्या है।
1: वस्तुतः रायपुर शहर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी संख्या में जो वाहन चलते हैं वो ई रिक्शा और ऑटो हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। रायपुर शहर में चलने वाले ई रिक्शा और ऑटो की कोई एक ऑर्गेनाइज जानकारी पुलिस के पास नहीं थी कि कितने वाहन चल रहे हैं, उन वाहन का ओनर कौन है, उसके चालक कौन है, उन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, और ये सभी वाहन इस तरीके से चलते थे जो ट्रैफिक के दृष्टि से भी असुविधा हो रही थी और लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जरूरी था कि इन सबका रिकॉर्ड रखा जाए। तो उसे ही ध्यान में रखते हुए ई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया गया और जिसमें सभी ऑटो चालकों ने भी बहुत सहयोग किया और शहर में चलने वाले 15,047 ऑटो उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उन सभी ऑटो चालकों का और उनके ऑटो के मालिक का नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ ऑनलाइन हमारे पास उपलब्ध है। सुरक्षा की दृष्टि से और यातायात को व्यवस्थित तरीके से लागू करने की दृष्टि से इस रिकॉर्ड का संधारण किया गया है।
0: सर, कमिश्नरेट रायपुर द्वारा इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका मुख्य उद्देश्य दो भागों में देखना चाहिए। एक, जो लोग ऑटो चला रहे हैं उनका भी एक सम्मान है, वो रोजगार से जुड़े हुए हैं। ये सामान्य तौर पर आरोप लगता था कि ऑटो चलाने वाले बहुत से लोग कुछ गलत कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बार हमने सभी चालकों का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनके ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए, उनके नंबर नोट कर लिए, तो एक तो अब कभी भी उनके ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि ऑटो में कोई अपराधी तत्व शामिल है। यदि कोई व्यक्ति को शंका होगी तो वो उसके QR कोड से चेक कर लेगा कि ये ऑटो चालक कौन है और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और दूसरा इसका उद्देश्य यह है यात्रियों की सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा। अब हर ऑटो में दो स्थानों पर, सामने कांच पर और पीछे जहां सवारी बैठी है वहां, दो स्थानों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति ऑटो में बैठ रहा है वो अपने कैमरे से उस QR कोड को चेक कर सकता है। जैसे ही वो QR कोड स्कैन करेगा उसमें ऑटो का नंबर, उसके मालिक का नाम, उसके ड्राइवर का नाम, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ जानकारी उसके पास आ जाएगी। साथ ही कोई महिला या कोई व्यक्ति रात के सुनसान में या अकेले किसी ऑटो को हायर कर रहा है तो वो उस ऑटो के स्कैनर की फोटो खींच के अपने घर भेज सकता है। तो उनके घर वालों को भी ये पता रहेगा कि हमारा बच्चा या हमारा परिजन किस ऑटो में यात्रा कर रहा था रात में। और इसके साथ ही साथ यदि कभी कोई किसी ऑटो में सामान भूल जाता है या गलती से कोई ऐसी चीज हो जाती है तो भी उस व्यक्ति के पास रिकॉर्ड होगा कि वो कल किस ऑटो में यात्रा किया था। तो ये ऑटो चालकों के सम्मान की दृष्टि से भी और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी, इन दो उद्देश्यों से इस कार्य को किया गया है।
0: सर, वर्तमान में इस QR कोडिंग की स्थिति और भविष्य में कमिश्नरेट रायपुर की कार्य प्रणाली के विषय में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
1: वर्तमान में ये चरणबद्ध तरीके से हम इस जो ई रिक्शा के संचालन है इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण में हमने सुरक्षा की दृष्टि से इनको QR कोड दिया है। द्वितीय चरण में हम सभी ऑटो चालकों को जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है उनको हम आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे और सभी नागरिकों से ये अपील करेंगे कि जो भी किसी ऑटो का उपयोग करें उसके पहले देखें कि ऑटो में QR कोड लगा हो और ऑटो चालक के पास पहचान पत्र हो कि ऑटो का ही वो उपयोग करें, वो उनके लिए सुरक्षित है। तीसरे चरण में हम शहर में ऐसे लगभग 200 के आसपास ऑटो स्टैंड की पहचान कर रहे हैं जहां खाली ऑटो खड़े हो सके, ताकि रोड में यत्र तत्र यहां वहां जो गाड़ियां ऑटो खड़े रहते हैं जो ट्रैफिक में व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं उससे भी छुटकारा मिल सके और ऑटो खड़े होने के निर्धारित स्थल जो इस यातायात को सुगम बना सके ऐसे स्थल निर्धारित कर सके।
0: सर, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने इस कार्य के चलते गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है, ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है?
1: वस्तुतः इस काम को जब किया गया था तो ऐसा ना कोई उद्देश्य था और ना इसकी जानकारी थी कि ये ऐसा काम हो रहा है जो अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जब 15 दिनों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहर के 15,000 से अधिक ई रिक्शा और ऑटो का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ उनके डॉक्यूमेंट के साथ, तो गोल्डन बुक को ये जानकारी प्राप्त हुई तो गोल्डन बुक ने बताया उनके प्रतिनिधियों ने कि इस तरीके से डिजिटली रजिस्ट्रेशन करने वाला और डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाला पुलिस की अकेली संस्था है रायपुर कमिश्नरेट, तो इसके आधार पर उन्होंने अवार्ड दिया है रायपुर कमिश्नरेट को।
0: सरंत में जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से इस विषय पर और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
1: मैं अपने शहर के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सार्वजनिक यातायात का जो साधन है ऑटो और ई रिक्शा उसको उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ही उसमें QR कोड और उनके भविष्य में आइडेंटिटी कार्ड का प्रावधान कर रहे हैं। जब भी वो ऑटो का उपयोग करें, विशेषकर किसी सुनसान स्थान पर या रात में महिलाएं या बच्चियां अगर ऑटो में बैठ रही हैं तो वो इस बात को जरूर ध्यान दें कि उस ऑटो में QR कोड है कि नहीं। ऑटो के QR कोड को स्कैन कर लें, तो अपने परिजनों को व्हाट्सएप कर दें ताकि ऑटो चालक को भी ये मालूम हो कि उसकी पूर्ण जानकारी सवारी के पास और उनके परिजनों के पास है, ताकि वो भी उनके साथ कोई गलत हरकत ना कर सके और लोग भी सुरक्षित रूप से अपने यातायात का साधन का उपयोग कर सके। ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं जो अपने शहर के लोगों से कहना चाहूंगा कि यातायात पुलिस के पास जितने साधन है, जितने व्यक्ति हैं, उन सब के माध्यम से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यातायात को व्यवस्थित करें। लेकिन जब तक पूरे शहर का इसमें मुझे सहयोग नहीं मिलेगा, शहर का हर व्यक्ति जब तक यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक इस व्यवस्था को बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरा शहर के सभी लोगों से अनुरोध है कि यातायात, सुचारू यातायात, सुरक्षित यातायात को बनाए रखने में अपना अपना योगदान सभी दें, तो कोई कारण ही नहीं है कि हम शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात न दे सकें।
0: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, शिक्षा वो हथियार है जिसे व्यक्ति अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण और विकास कर सकता है। शिक्षा पाना हर किसी का मूलभूत अधिकार है और किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या अक्षमता इसमें बाधक नहीं बन सकती। इस बात की गंभीरता को समझते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस दिशा में कार्य किया है और कर रही है। ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे विशेष विद्यालय भी संचालित हैं, जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर जीवन देने में विशेष सहायक हैं। इस नए शैक्षणिक सत्र में शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में प्रवेश संबंधित जानकारियों पर हमने बात की समाज कल्याण विभाग संयुक्त निदेशक श्री अरविंद गेडाम से। तो आइए इस विषय पर आपको सुनवाएं श्री गेडाम से खास बातचीत। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार मैडम।
0: सर, सबसे पहले हम शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय और इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है।
1: ये शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय, ये नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये दृष्टि बाधित बच्चों एवं श्रवण बाधित बच्चों के लिए संचालित किया जाता है, जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें हम जो दिव्यांगजन, जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र बने होते हैं, 40% से ऊपर दिव्यांगजन होते हैं, नेत्र बाधित हो या श्रवण बाधित हो, दोनों बच्चों की भर्ती करवाते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बच्चे हों। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक इनकी पूरी शिक्षा दी जाती है समाज कल्याण विभाग द्वारा, एवं इसमें विशेष शिक्षक भी रहते हैं। वे शिक्षक ही इन्हें पढ़ाते हैं, वो भी ट्रेन टीचर रहते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, भारतीय पुनर्वास परिषद से, जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आते हैं, एवं इसके पश्चात वे इन बच्चों को सिखाते हैं।
0: सर, ये विद्यालय कहाँ स्थित है और इसमें प्रवेश पाने हितग्राहियों के लिए क्या किसी तरह की कोई विशेष प्रक्रिया शामिल है?
1: जी, ये हमारा जो विद्यालय है शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय मठ पुराना रायपुर में संचालित है। इसमें विभिन्न जिलों के बच्चे आते हैं, एवं इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया ये है कि बच्चों के पास अनिवार्यतः 40% से ऊपर का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, UDID कार्ड होना चाहिए, एवं वे जहाँ से ट्रांसफर होकर आते हैं, जैसे धमतरी, महासमुंद, बड़ौदा बाजार या राजनांदगांव या अन्य किसी दूरस्थ जिले से आते हैं, तो उनका NOC भी चाहिए रहता है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए रहता है कि वे वहां तक जो भी क्लास तक पढ़े हैं, या क्लास 5 तक पढ़ने के बाद 8 से यहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, या 8 के बाद 9-10 पढ़ना चाहते हैं, तो उनका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट रहता है वो अनिवार्य रहता है, जिससे बच्चों को तत्काल एडमिशन दिया जाता है। एवं अगर यहीं कहीं क्लास 1 से एडमिशन चाहते हैं, तो इसकी तो यही प्रक्रिया सीधी है कि वे दस्तावेज प्रस्तुत करें एवं उन्हें भर्ती किया जाता है।
0: सर, इस विद्यालय में विद्यार्थियों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं और सेवाओं के बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे।
1: ये जो विद्यालय विशेष विद्यालय कहते हैं, क्योंकि दिव्यांगजनों के लिए ही है, जैसे कि दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में बताया गया है, इसके अनुसार दिव्यांगजनों को वहाँ पे चलने के लिए नीचे चेकर्स टाइल्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो रैंप के निर्माण है, रेलिंग का निर्माण, ताकि उन्हें चलने में एवं किसी कक्ष में जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, एवं जो शिक्षक है उसमें कुछ शिक्षक दृष्टिबाधित भी है, जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चों को विशेष जो लिपि होती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, उस लिपि से पढ़ाते हैं, उसमें दक्ष रहते हैं। एवं इन बच्चों के लिए श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनके लिए जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, फ्रंट में टीवी लगी रहती है, उस टीवी में दिखाते हैं हम कि उन्हें किस तरह एक्ट करना है, एक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ब्लाइंड वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए हम ऐसी मशीन लगाते हैं ताकि वो मशीन से सुन के भी अपना कार्य कर सके, ये सीख सके। उसमें ये जो मशीन से लगी हुई है, जिससे वे देख के क्रियाकलाप कर सकते हैं, इनके लिए हम केस स्टडी भी तैयार करते हैं बच्चों के लिए, कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है, उन्हें किस तरह सिखाना है। श्रवण बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज आता है, छोटे बच्चों को जो आते हैं उन्हें साइन लैंग्वेज बचपन से सिखाया, ताकि जिंदगी भर साइन लैंग्वेज का यूज कर सके। पानी के टैप भी नीचे लगाए गए हैं वहाँ पे, ताकि जैसे जो बच्चे हैं थोड़े शॉर्ट हाइटेड हों, छोटे बच्चे हुए पानी भी प्रॉपर तरीके से पी सके, किसी को भी परेशानी ना हो उन्हें, एवं रहने एवं खाने की पूर्ण सुविधा दी जाती है वहाँ पर।
0: सर, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस नए सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि और पात्रता के बारे में बताएं।
1: प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है, एवं पात्रता के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होना बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी आधार पर डॉक्टर प्रमाणित करता है कि बच्चा दिव्यांग है। साथ ही साथ उनका UDID कार्ड है, जो एक विशिष्ट पहचान पत्र है, जैसे हमारे हम नॉर्मल व्यक्तियों के लिए रहता है आधार कार्ड, वैसे ही दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र होता है UDID कार्ड, ये भी रहना अनिवार्य है। एवं पिता या माता की सहमति प्रमाण पत्र ली जाती है, साथ साथ अगर किसी दूसरे जिले से आ रहे हैं तो उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया जाता है, ये 4 दस्तावेज अनिवार्यता है।
0: सर, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से और खासकर ऐसी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
1: कि मैं ये कहना चाहूंगा कि दिव्यांगता जो है वह किसी बाधा नहीं है, जैसे कि बीते वर्षों में हुआ करती थी। इस समय दिव्यांगता में काफी परेशानी थी, लेकिन जैसे जैसे अधिनियम और यूज होता गया दैनिक क्रियाकलापों में, अधिनियम और अच्छा हुआ जिससे दिव्यांगजन विभाग को कोई समझ में आया दिव्यांगजनों को किस तरह पढ़ाना है। और इस तरह इसी तरह समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न जिलों में स्कूल खोले हैं, जैसे हमारे स्कूल जो है बिलासपुर में भी संचालित है और महासमुंद में भी स्कूल, धमतरी में भी स्कूल है, राजनगांव में भी स्कूल है, मानसिक के भी स्कूल है हमारे, दृष्टि वाले थे मानसिक के स्कूल बीजापुर नारायणपुर में भी संचालित है, अंबिकापुर में भी संचालित है, कोरिया में भी संचालित है। तो जो बच्चे वहां से यहाँ नहीं आ पाते वे अपने गृह स्थान के पास में ही जाके पढ़ सकते हैं। आजकल तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बच्चे अपने सामान्य स्कूल में ही जाके पढ़ते हैं, क्योंकि टीचर हमारे से स्पेशल टीचर भी वहाँ मौजूद रहते हैं, हर स्कूलों में रखा गया है ताकि वे इन बच्चों को भी पढ़ा सके, ताकि जो बच्चे दूर से इधर नहीं आ पाते हैं वे बच्चे अपने घर के पास ही रह सकते हैं। लेकिन जो मानसिक बच्चे हैं उनके लिए विभिन्न स्थानों पर स्कूल खोला, इसमें काफी सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास शिक्षकों की भी कोई कमी नहीं है, स्टाफ भी भरपूर स्टाफ है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ते हैं और यहाँ निकल के बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे लग चुके हैं, जैसे हमारे कुछ GNO में भी पढ़े हैं कुछ बच्चे और वे यहाँ हमारे सेवाएं दे रहे हैं, बड़ौदा बाजार में एक लेक्चरर है वो लगे हुए हैं और कुछ शिक्षक के पद भी लगे हुए हैं, उचित सेवाएं प्रदान करते हैं। इसलिए मेरा अंतिम ये कहना है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या अभिभावक हैं वे हमारे स्कूलों में आएं एवं जो पढ़ाई विशेष शिक्षा दी जा रही है उसका लाभ लें।
0: सर आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी उपयोगी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, माता पिता और बच्चों का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। एक ऐसा रिश्ता जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पुष्ट है। ये रिश्ता जितना सुंदर और सुलझा हुआ है उतना ही पेचीदा भी है, और खासकर आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के दौर में ये चीजें और भी बढ़ती जा रही हैं, जहां वायरल ट्रेंड्स, एक्सपोजर और भ्रमित करने वाले ऐसे बहुत से पहलू शामिल हैं। आज के बदलते दौर में पेरेंटिंग एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। ऐसे में आज के इस डिजिटल दौर में प्रभावी पेरेंटिंग से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स पर हमने बात की पेरेंटिंग कोच और चाइल्ड काउंसलर श्रीमती पल्लवी मिश्रा से। तो आइए इस विषय पर आपको सुनवाते हैं श्रीमती मिश्रा से विशेष चर्चा।
1: नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार रायपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: मैम, आज के बदलते दौर में प्रभावी पेरेंटिंग किसी चुनौती से कम नहीं, ऐसे में इस विषय पर आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
2: बिल्कुल सही कहा मैम, आज पेरेंटिंग सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। बच्चों को एक्सपोजर ही इतना ज्यादा मिल रहा है अलग अलग एरिया से, वो मोबाइल, सोशल मीडिया और अपनी लाइफ स्टाइल में बचपन को ना लगभग बदल दिया है। ऐसे में पेरेंट्स का रोल सिर्फ पढ़ाना या डिसिप्लिन करना नहीं, बल्कि बच्चों को समझना भी है। हर बच्चा अपने आप में अलग ही होता है, इसलिए कंपैरिजन कम करना है, कनेक्शन ज्यादा जरूरी है। जब बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है ना, तभी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस और सक्सेस को पा पाता है, तो ये जरूरी है सबसे ज्यादा।
1: मैम, आजकल सोशल मीडिया के चलते पेरेंटिंग के बहुत से कॉन्सेप्ट्स वायरल हो रहे हैं, जैसे टाइगर, हेलीकॉप्टर, जेंटल पेरेंटिंग। तो ऐसे में नए अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
2: मेरे 12 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने यही सब जाना है कि मेरी एक सिंपल सलाह रहेगी कि सोशल मीडिया से सीखिए, लेकिन आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। हर फैमिली और हर बच्चा अलग अलग होता है। पेरेंटिंग कोई ट्रेंड नहीं है, एक रिलेशनशिप है। लेवल से ज्यादा जरूरी है एक बैलेंस करना। बच्चों को प्यार भी चाहिए, बाउंड्रीज भी चाहिए और गाइडेंस भी चाहिए। इसलिए किसी एक स्टाइल को फॉलो करने की बजाय अपने बच्चे की जरूरत को समझिए।
1: मैम, हर उम्र में बच्चों की सही परवरिश और सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए अभिभावक ऐसा क्या करें कि तालमेल बना रहे?
2: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। क्वालिटी टाइम क्या हो सकता है, बिना मोबाइल के 20 से 30 मिनट आप उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके साथ के लिए उनकी फीलिंग्स को समझिए। सिर्फ एक मार्क्स पर फोकस मत कीजिए या कोई एक पर्टिकुलर हैबिट पे फोकस मत कीजिए। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उतनी ही जरूरी है, और ये लाइफ स्किल भी है। जब आप उनके साथ रहेंगे तो बच्चे भी वैसा सीखेंगे। जब पेरेंट्स और स्कूल एक टीम बनकर काम करते हैं ना, तब बच्चों का डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है।
1: मैम, कई बार बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं, ऐसे में अभिभावक किस तरह से अपनी बात रखें कि उनका सकारात्मक प्रभाव भी हो और बच्चे समझकर उन्हें पूरा भी कर सके?
2: देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि बच्चे को गलती से अलग रखिए, गलती को रिजेक्ट कीजिए, बच्चे को नहीं। अगर बच्चा फेल हुआ है या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाया है, तो उसे लेक्चर या कंपैरिजन नहीं करना है। उस समय आप ये समझिए कि उसको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक लाइन जो हमेशा मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे परफॉर्मेंस या तुम्हारा रिजल्ट बदल सकता है, लेकिन हमारा प्यार और हमारा साथ तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। जब बच्चा फेल महसूस करता है ना, तो वो अपनी गलती से सीखता है और उससे उभर करके बाहर आता है।
1: मैम, जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से बेटर पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ क्या कुछ खास कहना चाहेंगी?
2: बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि बच्चों को सबसे महंगा टॉय या सबसे अच्छी ड्रेस या स्कूल कोई ऐसी चीज याद नहीं होती, लेकिन उनको पेरेंट्स का बिहेवियर हमेशा याद रहता है। रोज अपने बच्चे को एक हग दीजिए, उसकी बात ध्यान से सुनिए, उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट की तारीफ कीजिए और उसके लिए इमोशनली अवेलेबल रहिए। स्ट्रॉन्ग बच्चे डांट से नहीं, कनेक्शन से बनते हैं। और अंत में एक बात, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, प्रेजेंट पेरेंट बनिए। और सक्सेसफुल पेरेंटिंग की सबसे बड़ी की यही है कि आप परफेक्ट पेरेंटिंग करें।
1: मैम आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जरूरी बातें हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आइए अब आपको पशुओं की एक खतरनाक बीमारी गलघोटू और पशुधन विकास विभाग द्वारा इसके रोकथाम के लिए टीका लगवाने की अपील के संबंध में आवश्यक जानकारी दें। छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ ही पशुओं में फैलने वाली खतरनाक जीवाणु जनित बीमारी गलघोटू का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए पशुधन विकास विभाग ने राज्य के सभी पशुपालकों से सतर्क रहने और अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गलघोटू रोग मुख्य रूप से गाय, भैंस और भेड़ को प्रभावित करता है। संक्रमण होने पर पशुओं में तेज बुखार, गले और जबड़े के नीचे सूजन, मुंह से अत्यधिक लार निकलना, नाक से स्त्राव, सांस लेने में कठिनाई और गले से घरघराहट की आवाज जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई मामलों में पशु चारा खाना बंद कर देते हैं और दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ कई बार गंभीर स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पशुधन विभाग ने पशुपालकों से कहा है कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें, प्राथमिक उपचार प्रारंभ करें और तत्काल निकटतम पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर टीकाकरण अवश्य करवाएं। साथ ही किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं में ये बीमारी पाए जाने पर या इसके लक्षण मिलने पर इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से विभाग को देने की अपील भी की गई है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए सजग पशुपालक बने और पशुधन की रक्षा करें।

श्रोताओं, सच्चे रिश्ते उस फूल की तरह होते हैं जो अपनी खुशबू से जीवन के गुलिस्तां को महकाते हैं। इसीलिए ये बेहद ही खास होते हैं और दशकों से एक ऐसा ही प्यारा और अनोखा रिश्ता है आपका और आकाशवाणी रायपुर का, जिसकी महक आज भी यूं ही बरकरार है। तो इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। साथियों, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये खूबसूरत सफर यहीं पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको हमारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं, हमें पत्रों के माध्यम से जरूर लिख भेजें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द नए अंदाज में, नई बातों, नई गीतों और नई रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए अपनी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
4: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
6: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
3: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design, and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, the facility in Sanand is designed to meet the global demand for advanced memory and storage solutions. The facility will directly cater to global and domestic customers across critical industries, including automotive, industrial automation, 5G communication, and Internet of Things. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
6: Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said, to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion US dollars to around $530 billion US dollars, while services exports will have to rise from roughly $421 billion US dollars to about $470 billion US dollars.
7: Our aim is to grow in the current year. We were 863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach 1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530, $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470.
6: Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive division of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said, the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with the state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. Mr. Shah instructed the officials from the Department of Water Resources to monitor all water reservoirs across the country. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India, in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. The trials covered approximately 40,000 kilometers on passenger cars and 20,000 kilometers on two-wheelers. It said the mileage is influenced by many factors beyond fuel type, including driving habits, maintenance, tire pressure and alignment, and air conditioning load. In Jammu and Kashmir, a total of 12,168 pilgrims paid obeisance at the Holi Cave Shrine on the opening day of the annual Amarnath Yatra yesterday, as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. The Yatra commenced in the early hours from both the traditional 48-kilometre Noonwan Pahalgam route and the shorter 14-kilometre Baltal route, despite intermittent rainfall. Pilgrims, including men, women and sadhus, began their journey to the 3,880-metre-high Holi Cave Shrine amid chants of Bam Bam Bhole, after being flagged off by the respective deputy commissioners and senior superintendents of police from the two base camps. Governor of Bihar, Lieutenant General Syed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pabitra Margarita represented India at the funeral ceremony for the former Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in Tehran. In a social media post, Mr. Margarita said they conveyed respect on behalf of the government and the people of India. They also extended condolences to the families of those who lost their lives in the recent conflict. On to sports. In the FIFA World Cup, Argentina beat Cabo Verde 3-2 after extra time in a thrilling round of 32 match at Miami Gardens in the US to enter the round of 16. Earlier, Egypt advanced after defeating Australia 4-2 in a penalty shootout at Arlington in the US. We have a report.
8: Defending champions Argentina survived a major scare against Cabo Verde, a nation of just over 5 lakh people, before booking their place in the round of 16. Lionel Messi put Argentina ahead in the 29th minute with his 7th goal of the tournament and the 20th World Cup goal of his career in his 30th appearance across 6 editions. Diroy Duarte restored parity for Cabo Verde in the 59th minute, forcing the match into extra time. Lisandro Martinez gave Argentina the lead once again, but Sidney Lopes Cabral produced a stunning equalizer to keep the underdog's dream alive. The decisive moment came in the 111th minute when Cristian Romero's header from a Messi corner deflected off Dina Borges and into the net for an own goal, sealing Argentina's dramatic victory. Earlier, Australia and Egypt were tied 1-1 after regulation time and goalless extra time before Egypt prevailed 4-2 in the penalty shootout to register their first ever World Cup knockout stage victory. Argentina will now face Egypt in the round of 16 on Tuesday. Manik from Sports Desk for Akashvani News.
6: In the final round of 32 match of the FIFA World Cup, Colombia are leading against Ghana 1-0. John Arias put Colombia ahead in the 14th minute with a close-range finish. The winners of this match will face Switzerland in the round of 16. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening, Indian time. The opening game of the five-match series was abandoned due to rain at Chesterley Street. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, West Madhya Pradesh and Odisha for today. Heavy to very heavy rainfall conditions are expected over East Rajasthan, East Madhya Pradesh, coastal Karnataka, Telangana and Vidarbha for next 2 days. Meanwhile, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
9: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the news on the rapidly warming oceans, raising the likelihood of heat waves, droughts and heavy rainfall across large parts of the world. Hindustan Times writes, El Nino to intensify rapidly by September, set off weather chaos. A headline in the Statesman says, India emerges as one of the lowest cost major solar power markets globally. Center to summon Meta officials over alleged child sexual abuse ads on Instagram, cites the Times. Times of India. An editorial in the Pioneer states a recent judgment in the Apex Court, the landmark judgment, recognized their homemakers as nation builders. The article adds that 15-17% of the GDP is contributed by unpaid caregiving work, household or unrecognized work. The Asian Age and all other dailies have noticed the Defence Acquisition Council clearing over 50,000 crore rupees of military purchases for all three services to boost combat readiness. All the dailies have noticed the government's order on removal of the three Chinese apps after these were allegedly found being misused for stalling e-rickshaws. The Hindu writes SIT likely to re-audit Ram Temple Trust accounts for 5 years. And finally, a report in Times of India states Bangalore, Chandigarh and Delhi having the highest average income in the country. And with that, it's back to you, Anuja.
6: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals and men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। इसमें सुनिए बच्चों में किडनी से संबंधित रोग, लक्षण, कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित कुछ विशेष रोग के बारे में। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल और खेलकूद ये काफ़ी आवश्यक है, लेकिन बदलते दौर में खान पान की अनियमितताएं और कम शारीरिक मेहनत होने के कारण मोटापा और कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां बच्चों में होती रहती हैं, लेकिन कभी इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं कि जिसका पता देर से चलता है। और जब वो बात हमारे मूत्र तंत्र की हो, हमारा जो मूत्र तंत्र है उसमें कई अंग शामिल होते हैं और इन अंतरूनी अंगों में हमारा किडनी जो है वो काफ़ी विशेष होता है। किडनी का जो काम होता है शरीर में, मूत्र के छानने जैसी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं और किडनी के सही काम ना करने से कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, किडनी की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में होती हैं। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बच्चों से संबंधित किडनी की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे और किडनी से संबंधित बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, इनका कारण क्या होता है और इनका उपचार क्या हो सकता है, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनय राठौर, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और MD बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स रायपुर में। तो डॉक्टर विनय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि जो बच्चों में आजकल मोबाइल की लत है उससे जो आंखों पे बड़ा दुष्प्रभाव होता है, तो इस तरह की अगर हम बात करें, आजकल जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में मेहनत की कमी हो गई है, बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं, खेलना कूदना कम हो गया है, तो कुछ बच्चों में बीमारियाँ होती हैं छोटी मोटी जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारी होती है जैसे हमने बताया किडनी से संबंधित, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
1: जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं और कई बार हम जब बताते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं क्या। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किडनी की बीमारियों को बड़ों की बीमारी माना जाता है, शुगर वालों की, जिनको शुगर है, जिनको BP है, इनकी बीमारी माना जाता है, मगर बच्चों में काफ़ी किडनी की बीमारियाँ भी होती हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। लगभग 10% की जो नेफ्रोलॉजी की OPD होती है उनमें बच्चे होते हैं और इन बच्चों में कई तरीके की किडनी की समस्याएं होती हैं। तो जहां तक बड़े हैं उनको मुख्य समस्या शुगर, BP, इनकी वजह से किडनी की बीमारी होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्य जो किडनी की बीमारियां होती हैं वो तकरीबन आधे केसेस में जन्मजात होती हैं। जन्मजात कहने का मतलब, इस बीमारी को कहा मेडिकल भाषा में कहा जाता है काकुट, जिसका मतलब होता है कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड किडनी। तो ये एक समस्या होती है जिसमें हमारे जो मूत्र और किडनी के जो पेट में हमारी जो बनते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार के कुछ दुविधाएं होती हैं जो आगे जाकर के किडनी की बीमारी, बच्चों में किडनी की बीमारी का कारण बनती हैं। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा कुछ बीमारी होती है जो किडनी में कॉमन होती है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन, UTI, तो ये भी एक तरीके की बच्चे का की किडनी की बीमारी है। और यदि बच्चों में UTI हो रहा है तो ये अमूमन ये बताता है कि बच्चे के किडनी में या फिर उनकी जो मूत्र नलिकाएं का जो तंत्र है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है या जो कॉमन समस्या होती है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो हमारी किडनी है वो छन्नी की तरह काम करती है, वो हमारे खून में से जितनी भी गंदगियां हैं उनको निकालती है और अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्रोटीन है इनको हमारे शरीर के अंदर रखती है। तो इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी में ये दिक्कत आती है कि किडनी है वो हमारे शरीर के अंदर से प्रोटीन को ही बाहर निकालने शुरू कर देती है और ये एक बहुत कॉमन समस्या है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं और ये बच्चों में ये देखी जाती है। इसके अलावा जो और कुछ बीमारियां होती हैं जो किडनी बच्चों में देखी जाती है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ गया हो। कुछ बीमारियों को AKI कहा जाता है। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जैसे किसी को दस्त हुआ या मलेरिया हुआ उस समय किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से किडनी की बीमारी होती है। और एक और कॉमन बीमारी होती है पथरी। तो हम हमेशा सोचते हैं कि पथरी बड़ों की बीमारी है मगर कुछ बच्चों को भी पथरियों की बीमारी होती है और पथरी की बीमारी की वजह से भी किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये लगभग कारण है। कहने का मतलब ये है कि हमें सजग होना चाहिए कि बच्चों में भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, तो इसमें किन किन एज ग्रुप के बच्चों को आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है?
1: जी, तो जैसे मैंने कहा कि किडनी की बीमारियां बहुत छोटे बच्चों से लेके, इनफैक्ट जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे लेके 18 साल तक के बच्चों में सभी में मिलती हैं। और जो कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मैंने बताया कि काकुट जो बीमारी बोल रहे हैं, वो अमूमन छोटे बच्चों में होती है, मगर ऐसा नहीं होता है कि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि ये हमें बाद में यानी कि 13-14 साल की उम्र में भी पता चलती है। तो सारी उम्र, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर से ही ये बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो आज के डेट में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कुछ किडनी की बीमारियाँ जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 20वें सप्ताह में भी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी पता चल जाती है। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं जो बच्चों की, वो सारे एज ग्रुप्स में देखी जाती हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है, टिपिकली 3 से लेकर 8 साल की उम्र के बीच में बच्चों को देखी जाती है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ये है, ये सब बीमारियां हैं, ये कुछ बड़े उम्र के बच्चों में भी, जैसे 13-14 साल के बच्चों में भी है, उनमें भी देखी जाती है। तो ये बीमारियां सारे एज ग्रुप को ही इन्वॉल्व करती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जो मैं आपने बताया कि जो काफ़ी छोटे होते हैं उनमें भी किडनी डिसीज होती है, तो छोटे बच्चे तो जैसे उनमें कुछ तकलीफ होगी वो बता भी नहीं पाएंगे, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं?
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सामान्यतः बड़े जो होते हैं वो अपनी शुगर बीपी के बारे में वो नपा जाके हॉस्पिटल में नपवा लेते हैं या शुगर का चेक करा लेते हैं, उसके बाद उनको पता होता है कि उनको किडनी की बीमारी हो सकती है तो वो टेस्ट कराते रहते हैं, या कुछ और कारण होता है जैसे पेशाब में जलन वगैरह होती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि भाई पेशाब में जलन है, अस्पताल में जाके डॉक्टरों को दिखा देते हैं। मगर छोटे बच्चों के साथ ये मुश्किल होती है कि वो अपने लक्षण नहीं बता पाते, और लक्षण बता पाते हैं तो वो कुछ वेग होते हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी किडनी के पेशेंटों में कुछ कुछ लक्षण होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनमें से सबसे कॉमन है वो है सूजन आना। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है। आंखों में आप देखेंगे तो सूजन आता है। अब दिक्कत ये होती है, कई बार ये सूजन है सुबह सुबह तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सूजन चले जाती है। तो माँ बाप उनको लगता है कि ये कोई लक्षण बहुत चिंताजनक नहीं है, मगर यदि आंखों के नीचे यदि सूजन आ रहा है तो ये चिंताजनक विषय है और इसमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा जो कॉमन लक्षण होता है वो पेशाब में खून का आना, ये दिख जाती हैं तो तुरंत माँ बाप सलाह ले लेते हैं। तीसरा कॉमन लक्षण होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, अगेन इसमें जो है माता पिता अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर कुछ चीज़ें होती जो लक्षण जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनमें से सबसे एक है कॉमन है वो है बुखार का आना। तो यदि बुखार आ रहा है किसी बच्चे को, 1 साल से नीचे बच्चे को या 2 साल से नीचे बच्चों को, और उसको कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, उसको वायरल फीवर नहीं लग रही है, सर्दी खांसी नहीं है और बुखार आया हुआ है, तो ये अमूमन लक्षण होता है कि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चों को यूटीआई हुआ है यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बार बार बच्चों को बुखार आ रहा हो, बुखार का कारण पता ना चल रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और किडनी के बारे में सोचना चाहिए। एक और कॉमन लक्षण जो हम भूल जाते हैं वो है सरदर्द, और ये बड़े बच्चों में होता है। बड़े बच्चों में सरदर्द होता है तो हम उसको सोचते हैं कि ये सिंपल सरदर्द है और दर्द के दवाइयाँ दे देते हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते, और कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि सरदर्द की दवाई देता है। हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं कि किडनी से समस्या से भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी बीमारी जब होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर से सरदर्द होता है। तो हमें यदि सरदर्द हो रहा है तो एक बार ज़रूर से बच्चे के प्रॉपर तरीके से किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके बीपी का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सरदर्द भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी की बीमारी होने का, और ये लक्षण हम अमूमन मिस करते हैं। इसी के तरीके से कुछ और तकलीफें होती हैं, जैसे कि किडनी के आसपास में एरिया में दर्द होना। ये दर्द हम पेट दर्द की तरह इग्नोर करते हैं कई बार, सिंपल पेट दर्द है इस तरीके से, मगर यदि ये पथरी का निशानी हो सकता है, तो इसलिए यदि पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और आगे के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, हमें कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए बीपी के बारे में, सरदर्द को, बुखार को, ये 3 चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं। बाकी चीज़ें पेशाब में कमी होना, पेशाब में खून का आना या सूजन आना, ये हमें दिख जाती है और इसके बारे में हम सलाह ले लेते हैं। तो मैं श्रोताओं से इसके बारे में सजग रहने के लिए कहूँगा कि छोटे बच्चों में यदि या बच्चों में सर दर्द हो रहा है या उनको इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके प्रति, किडनी बीमारी के प्रति सजग रहें।
0: डॉक्टर साहब, हम बातें और करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुनें।
1: तो मेरी पसंद का एक गीत, हम तेरे प्यार में साला आराम को बैठे,
0: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर वीना राठौर जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर में, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और बाल रोग में MD भी हैं। डॉक्टर वीना जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे जो बच्चे हैं उनमें किडनी से संबंधित कुछ रोग के बारे में, तो आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि इनमें किडनी के रोग भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं एज में, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं जो प्राइमरी किडनी के डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं?
1: जी, तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बता नहीं पाते, लेकिन बड़े बच्चे में जो दिक्कतें होती हैं वो बता सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम बताते हैं वो पेशाब में जलन का है, पेशाब में रोक नहीं पाने का है, या पेशाब बार बार जाने का है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये किडनी डिजीज को बता सकते हैं। थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक और चीज़ जो हम बहुत किडनी की बीमारियों में दिखते हैं वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की कमी का, और ये माँ बाप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जो मिस हो जाती है। यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यदि आप बच्चे की वेट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये सोचते हैं कि ये खाना पीने की वजह से नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हाइट नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, ये भी एक मार्कर हो सकता है कि बच्चे को किडनी की बीमारी है। और अगेन इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत होती है। कंप्लेन बताते हैं कि पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में कुछ अलग तरीके से स्मेल आ रही है। ये एक कुछ लक्षण होते हैं जो बड़े बच्चे हमें बता सकते हैं और ये गाइड करते हैं कि बच्चे को कोई किडनी की संभावित बीमारी हो सकती है। इसी बात में मैं एक और चीज जो बताना चाहूंगा कि पेशाब का धार, ये पर्टिकुलरली जरूरी होता है पुरुषों के लिए जो मेल बच्चे होते हैं, तो पेशाब का धार में यदि कमी आ रही है वो भी एक मार्कर होता है कि पेशाब में बच्चे के मूत्र में तंत्र में कोई ना कोई दिक्कत है, और इसके लिए भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
0: जी जी, तो डॉक्टर साहब, आप जब हमने इसके लक्षणों की बात की है, तो यदि बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट और जांचें हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आप किडनी रोग से ग्रसित होने वाला है या हो गया है?
1: जी, तो जिस जब भी हमें बच्चों में इस तरीके के लक्षण दिखें तो हमें पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, इवन जिला अस्पताल और उससे भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होते हैं। वो है सिंपल पेशाब की जांच कि पेशाब में प्रोटीन कितनी जा रही है, पेशाब में माइक्रोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि उसमें पस है कि नहीं है। दूसरा, खून के कुछ जांच होते हैं जिसमें जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन एक प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी छान के हमारे शरीर से बाहर निकालती है, तो उसका लेवल यदि बढ़ा होता है वो एक मार्कर होता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट अगेन आप जाके, अब बच्चों में ब्लड प्रेशर मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए पीडियाट्रिशियंस के पास हमें जाना होता है वो, ताकि वो तरीके से ब्लड प्रेशर ले सके। तो ये तीन मेजर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एडवांस टेस्ट में जैसे मैं बताऊँ तो एक अल्ट्रासाउंड कराना कि पेशाब के रास्ते में किडनी कितनी है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, ब्लेडर कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे मैंने बताया कि बच्चों का यदि पेशाब का फ्लो कम है तो यूरोफ्लोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है, MCU, एक्स्ट्रा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार CT स्कैन, ये कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या बीमारी है, बट बेसिक टेस्ट जो है वो पेशाब की जाँच, क्रिएटिनिन मेजर करना और एक सोनोग्राफी, ये तीन से अधिकतर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे इन सब जांचों के बारे में आपने बताया, और इन जांचों में यदि प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है कि किडनी की डिसीज होने वाले हैं या किडनी के जो रोग है प्रारंभिक स्तर पर है, तो उसके ठीक होने या उससे रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं?
1: जी, अब ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हम कोई भी जाँच इसलिए करते हैं कि हम उसका पेशेंट को इलाज करके रिकवरी कर सकें, और यही मकसद भी होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि दो तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे एक नेफ्रोटिक एक एक्यूट किडनी इंजरी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जहां तक एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल होता है, यानी उसका सही तरीके से इलाज हो जाए तो रिवर्स हो जाती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कंप्लीट रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और मैनेज करके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगेन एक बीमारी है जिसमें 70-80% पेशेंटों को हम इलाज

सकते हैं तो कंप्लीट रिकवरी होने की गुंजाइश होती है। इसलिए जरूरी यह है कि हमें बीमारी का पता जल्दी से जल्दी पता चले ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके मैक्सिमम आउटकम को हम ले सकें। यदि बीमारी का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो अमूमन सारी किडनी की अधिकतर बीमारियां रिकवरी एक्सपेक्टेशन होती है।

0: आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में भी डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है? हमारी किडनी मुख्यतः हमारी शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे जैसे किडनी फेल होती जाती है तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब इसको आर्टिफिशियली तरीके से इसको शरीर के बाहर से निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में हम एक कैथेटर लगा देते हैं, उस कैथेटर में हम एक पीडी फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, उसको हम पेट के अंदर डालते हैं और सारी शरीर की जो गंदगी होती है वो उस पेरिटोनियल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाती है, फिर उस इकट्ठा फ्लूइड को हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो यह प्रक्रिया को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। छोटे बच्चों में यही एक डायलिसिस का माध्यम होता है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, अगला बात मैं बताने वाला हूँ हीमोडायलिसिस के बारे में, वो इनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो छोटे बच्चों में ये काफ़ी कारगर तरीका होता है, जिससे ये डायलिसिस के माध्यम से हम वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा मैंने बताया हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक मशीन होती है जिसमें हम शरीर के से खून को एक डायलेजर कहा जाता है, जिसको जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें डाला जाता है, वहाँ से शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं और फिर जो जो अच्छी खून है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के बाद जो खून है उसको वापस पेशेंट के या बच्चे के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस में एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, एक संस्थागत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हॉस्पिटल में ही किया जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ट्रेनिंग दे देते हैं माँ बाप को, तो उसके माध्यम से वो घर बैठे बैठे भी अपने घर में पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कोई बच्चा क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित है तो अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ेगी?
0: जी, अब ये भी जैसे मैंने कहा कि कई बार हमें लोगों को समझाने में मुश्किल होती है कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी हो सकती है क्या, उसी तरीके से माँ बाप को या लोगों को समझाने में ये भी मुश्किल होती है कि क्या बच्चों को भी डायलिसिस होता है।
1: जी।
0: तो जी, बच्चों का भी डायलिसिस होता है और बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी बिल्कुल इस लेवल तक काम करना बंद कर दे कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर से बाहर ना निकल पाएं और शरीर को हार्म कर रही हूँ। अमूमन जो मेज़र किया जाता है वो GFR में से, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, उसके माध्यम से मेज़र किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब लेस देन 10-15 और 10 से लेस के आसपास होती है तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बट ये और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि डायलिसिस की ज़रूरत बच्चे को कब पड़ेगी, इंक्लूडिंग उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें खून बन रहा है कि नहीं बन रहा है इत्यादि। जैसे मैंने बताया किडनी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि वो पेशाब को हमारे शरीर के खून को छाने, खून भी बनाना एक हमारे किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा किडनी हमारी हाइट, वेट, बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि इन सब चीज़ों में भी कमी आती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस दो तरीके के होते हैं। छोटे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इफेक्टिव और कारगर होती है, और हीमोडायलिसिस जो बड़े बच्चे हैं उनमें कई बार छोटे बच्चों में हीमोडायलिसिस नहीं किया जा सकता। अमूमन 10-12 kg जब होता है या 5-6 साल बच्चे, उनमें ही हीमोडायलिसिस की संभावना दिखती है। ऐसे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है, बड़े बच्चों में हीमोडायलिसिस भी किया जा सकता है।
1: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अब जब डायलिसिस की नौबत आ गई है और ऐसा भी पता चल रहा है कि कभी कभी इस तरह भी होता है कि डायलिसिस के बाद भी आराम नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि बड़ों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, तो क्या बच्चों में भी ऐसी नौबत आ सकती है?
0: जी बिल्कुल, जो जिन बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है या जैसे मैंने बताया आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि अब ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, तो ऐसी बीमारियों में बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। और इनफैक्ट ट्रांसप्लांट बच्चों में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है उनमें यदि ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि एक नई किडनी मिलने से बच्चे की ग्रोथ, हाइट और स्कूल जाना ये सब बहुत आसान हो जाता है इस कम्पेयर टू डायलिसिस में रहने में। लेकिन अब इसमें डोनर्स होते हैं, वो अमूमन घर के रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये डोनेट करते हैं किडनी, और ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद, बाकी और टेस्ट करने के बाद यदि ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो उसके माध्यम से भी जिनके पास डोनर नहीं है, ब्लड ग्रुप मिल नहीं पा रहा है, ऐसे जो मरीज होते हैं वो उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं इस प्रोग्राम में। और छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल ये लिया गया है कि यदि कोई ब्रेन डेड डोनर जो डोनेट करने वाला है वो बच्चा है तो वो किडनी बच्चों को ही अलोकेट की जाती है या बच्चों को प्राथमिकता मिलती है उसमें अंगदान में के माध्यम से। और अभी अभी हाल ही में ये एक बच्चे को ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इस तरीके

0: से बच्चों की किडनी की ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी पद्धति है जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, और इसके माध्यम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो एम्स है, यहाँ भी कई तरह की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अभी उपलब्ध हो चुकी हैं, तो हम देखें तो किडनी डिसीजेस के बारे में, खासकर बच्चों के संबंध में, तो अभी एम्स में कौन कौन से जो ऐसे चिकित्सक की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: जी, तो एम्स रायपुर में काफ़ी हद तक किडनी, बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो सबसे पहले बच्चों को देखता है और वहां पे स्क्रीनिंग की जाती है। वहां पे बच्चों की अधिकतर किडनियों की बीमारी जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या यूटीआई है, इस तरीके की बीमारियों का वहाँ पे इलाज हो जाता है, और वहाँ पे डेली ओपीडी चलती है, वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। सीरियस केसेस में पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, वो 24/7 खुली रहती है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ पे बच्चों की पेशाब के रास्ते हैं उसमें यदि कोई समस्याएं होती हैं तो उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उसमें चाहे जैसे मैंने बताया कि मेल बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नाम की एक बीमारी होती है जिसमें एक वॉल होता है हमारे पेशाब के रास्ते में, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। या वेसाइटोको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होती है जिसमें पेशाब हमारा बाहर निकलने के बजाय कई बार वापस बैक किडनी की तरफ जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसकी आधुनिक इलाज उसका उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की कि यदि किडनी फेल हो जाए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस, दोनों पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस बच्चों के लिए इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रांसप्लांट के लिए अगेन हम एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं जिसकी ओपीडी हर गुरुवार को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। वहाँ पे हम बच्चों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी होती है, तो वहाँ ऐसे पेशेंटों को हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो तैयारियां होती हैं, वो उस ओपीडी में भी की जाती हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी डिसीजेस ना हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हम किडनी के रोगों से कैसे बच सकते हैं?
0: जी, अब रोकथाम बहुत जरूरी है किडनी की बीमारियों में। आज जैसे आपने बताया कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है
1: जी,
0: वो इतनी चेंज हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज, बच्चों में एक्टिविटी, खेलना कूदना ये बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, और इसके साथ साथ हमारा सेवन जो खाना है वो अब घर तक की, घर का बना हुआ खाना से हटके बहुत हद तक फास्ट फूड की तरफ जा चुका है, और इस फास्ट फूड में अधिकतर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल और खान पान ये हमारी किडनी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। और लॉन्ग रन में जो बच्चे हैं, जो तो अभी हैं, उनको अगले 50 साल 60 साल तक की ज़िंदगी उनके सामने है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, धीरे धीरे एक्युमुलेट करते जाती हैं नुकसान। तो इसलिए जैसे आपने पहले ही भी कहा था कि स्वस्थ लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नमक का सेवन कम से कम रहना चाहिए, कोशिश बच्चों के लिए भी ये लागू होता है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिविटी बना के रखें, कम से कम बच्चे खेलें एटलीस्ट।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और हमारे श्रोता जो भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो डॉक्टर साहब की बताई गई बातों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होना अच्छा है। जब तक कोई अनहोनी ना हो उससे पहले हमें गंभीर हो जाना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और ख़ासकर जब बात शरीर के अंदरूनी अंगों की होती है, किडनी जैसे अंगों की होती है, तो हमें ज़रूर सजग रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने आज हमारे श्रोताओं को बच्चों से संबंधित किडनी रोग के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे बच्चों में किडनी से संबंधित रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह। इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्णदास से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है। हालांकि जून महीने में मानसून ने पिछले सालों के मुकाबले निर्धारित समय अवधि से थोड़ी देरी से छत्तीसगढ़ में दस्तक दी और दस्तक देने के बावजूद पूरे जून महीने में हम लोग देखें तो औसत से कम बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है। इस वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हालांकि अब मानसून सक्रिय है और बारिश भी हो रही है। मानसून के आगमन से पहले ही मौसम विभाग ने इस साल यह आशंका जता दी थी कि इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से कम बारिश हो सकती है। इसकी वजह अल नीनो प्रभाव बताया जा रहा है। इन सब स्थितियों के बीच हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या करें? खासतौर से जो धान उगाने वाले किसान हैं वे धान की कौन सी किस्म लगाएं या फिर धान के बजाय अन्य कौन सी फसल लगाना इन स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि मौसम विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास। डॉक्टर दास, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: डॉक्टर दास, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले सालों से यदि हम तुलना करें तो इस बार मानसून की स्थिति कैसी लग रही है, क्योंकि किसान थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा के आंकड़ों को देखें
1: जी,
2: इस वर्ष मानसून थोड़ा सा देरी से प्रवेश किया है
1: जी।
2: वैसे तो लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करें
1: जी
2: तो 2004, 2009, 2023 में भी मानसून जो है 24, 26 और 23 जून को पहुंचा था
1: जी।
2: तो ये इस प्रकार की स्थिति पहले भी निर्मित हुई है
1: जी।
2: मगर अपन खेती किसानी के संदर्भ में देखे
1: जी
2: तो मानसून निश्चित रूप से 10-15 दिन के डिले से यहाँ पर पहुंचा है
1: जी।
2: और अभी जो है खेती किसानी में धान की बुआई थोड़ा सा जो है पिछड़ा है
1: जी।
2: बाकी उत्पादन पर अभी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
1: अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब के मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि सुपर अल नीनो प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि बारिश की स्थिति कैसी हो सकती है?
2: अल नीनो के कारण जो है यह देखा गया है
1: जी
2: कि भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा में कमी या सूखे पड़ने की संभावना होती है
1: जी।
2: और अगर यह स्थिति जारी रहेगी तो इस प्रकार की आशंका जो है हो सकती है या इसकी स्थिति निर्मित हो सकती है
1: जी।
2: अभी वर्तमान में जो है ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा है
1: जी।
2: सामान्य रूप से थोड़ा डिले हुआ है जो कि पहले भी कई बार हो चुका है
1: जी।
2: तो अभी हम कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, परंतु सावधानी बरतना ही उचित होगा
1: जी। डॉक्टर दास, ये बताएं कि जैसे यदि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, और इस वर्ष जैसे मानसून ने देरी से दस्तक दी है और थोड़ी सी अनियमितता अभी देखी जा रही है, तो इन स्थितियों को देखते हुए ये जो फसलें हैं चाहे धान हो या दूसरी फसलें हो उनकी बुआई की अभी इस समय क्या स्थिति है?
2: छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो है धान की खेती की जाती है
1: जी।
2: लगभग खरीफ में 48-49 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसमें 38-39 लाख हेक्टेयर में धान रहता है। बाकी क्षेत्रों में मक्का है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, इत्यादि फसलों की खेती की जाती है
1: जी।
2: और धान की खेती चूंकि बहुतायत क्षेत्र में होती है, अधिकांश क्षेत्र में होती है, तो धान के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी खेती 3 प्रकार से की जाती है प्रमुख रूप से
1: जी।
2: पहला तो जो है सूखी बुआई
1: जी,
2: जिसमें किसान अपना जो है खुर्रा बोनी कहते हैं वो कर चुके हैं
1: जी।
2: दूसरा है बतर बुआई, जो मानसून का वर्षा होने के पश्चात जब खेत जो है वर्केबल कंडीशन में या काम करने योग्य अवस्था में आता है तब उसकी बुआई की जाती है, इसी को गीली बुआई भी कहते हैं
1: जी।
2: और तीसरा है रोपा विधि से धान की खेती करना
1: जी।
2: और रोपा विधि से धान की की खेती करने के लिए ही पर्याप्त समय है। बतर बुआई या गीली बोनी करने के लिए अभी अपने किसान भाई को इंतजार करना चाहिए
1: जी,
2: क्योंकि अभी सभी क्षेत्र में समान रूप से जो है पानी नहीं गिर पाया है। अगर खेत ठीक से अगर गीला नहीं होगा या जमीन में जो है नमी का प्रवेश अंदर तक नहीं होगा
1: जी,
2: तो बीज के अंकुरण के प्रभावित होने की संभावना है
1: जी।
2: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की जो है बतर बुआई करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करें। लगभग 1 से 1.5 फुट का जब जमीन गीला हो जाता है उसके बाद जब खेत बोने लायक स्थिति में आए तब बतर बुआई करना चाहिए, और इसी स्थिति में दलहन तिलहन की ही बुआई करनी चाहिए
1: जी। तो इसमें ये भी बताइए कि जैसे धान में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना धान के उत्पादन में, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं धान की जिनको जो मानसून के अभी जो वर्तमान स्थिति है या आगे जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं जिनको उगाने से किसान को मतलब नुकसान की आशंका ज्यादा ना हो?
2: छत्तीसगढ़ में जो है 3-4 टाइप की भूमि है
1: जी।
2: अपन मुख्य रूप से करेंगे भाटा मटासी डोरसा कन्हार
1: जी।
2: भाटा जमीन थोड़ा सा एकदम जो है ऊपरी हिस्सा रहता है
1: जी,
2: इसमें धान की फसल की खेती नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: उसके बाद मटासी डोरसा और जो है कन्हार भूमि में धान की खेती की जाती है और करने में कोई नुकसान नहीं है
1: जी।
2: इस वर्ष वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वो जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें।
1: अच्छा।
2: इससे क्या होगा कि यदि किसी भी कारण से एल नीनो की स्थिति में वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो हमारा धान का उत्पादन प्रभावित ना हो, और इसके लिए जो है 110 से 125 दिन के बीच की वैरायटी का चयन करना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा। अब इसमें जैसे ये तो आपने बता दिया कि जो जल्दी पकने वाली फसल है उनको यदि किसान चुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा, इसमें मतलब कौन से समय का ठीक रहेगा? अभी और इंतजार करें किसान या क्या करें?
2: नहीं, अभी तो जैसे मैंने बताया खुर्रा बोनी किसान भाई कर चुके हैं
1: जी,
2: उसमें तो आपको ये गुंजाइश है नहीं
1: जी।
2: अब बतर बोनी के लिए गीली बुआई करने के लिए अपने पास समय है
1: जी।
2: तो जैसे ही मानसून जो है अपना पूरे रूप में आ जाएगा या अगर खेत गीला हो जाता है, जहां जहां कुछ जगह पर अच्छी बारिश हुई है
1: जी,
2: वहां किसान भाई जो है गीली बुआई में या बतर बोनी में जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखे कि किसी भी स्थिति में छिड़काव विधि से बुआई ना करें।
1: अच्छा।
2: अगर कतार में बुआई करेंगे तो मान लो ड्राट की स्थिति पैदा होती है, सूखा की स्थिति पैदा होती है, तो खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है, तो दो कतार के बीच में मशीन से या निंदाई करने में आसानी होता है
1: जी। इसमें एक बात और है डॉक्टर दास, के जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, इस बात के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो धान के अलावा दूसरी फसल जैसे दलहन तिलहन है वो भी उगाएं। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको फसल हम विविधीकरण भी कहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सलाह किसानों को देना चाहेंगे?
2: फसल विविधीकरण के लिए बहुत दिनों से प्रयास जारी है
1: जी।
2: और इस वर्ष राज्य शासन ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है
1: जी,
2: जिसमें अगर किसान भाई धान को छोड़कर
1: जी
2: अगर दलहन तिलहन की खेती करते हैं
1: जी
2: या अन्य फसल लगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा
1: जी।
2: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वर्ष जो है एल नीनो के कारण जो है पानी कम गिरने की या अनियमित वर्षा होने की संभावना है
1: जी,
2: इस स्थिति में जो भर्री जमीन है या ऊपर की जमीन है जिसमें पानी कम रुकता है उसमें दलहन तिलहन की खेती को अवश्य रूप से करें, राज्य शासन की योजना का लाभ उठाए। इससे फसल विविधीकरण में जो है फायदा होगा या उसकी जो है मात्रा बढ़ेगी, जिसका किसान को भी फायदा मिलेगा
1: जी। बिल्कुल। इसमें एक बात और है कि जैसे बारिश में कुछ कमी देखी जा रही है या एक अनियमितता की स्थिति है तो फसलों के उत्पादन पर जैसा आपने भी कहा थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये जो जोखिम होता है किसानों को, उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, जैसे एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी यदि कोई योजना हो तो उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं।
2: देखिए, जोखिम से बचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक जो है प्रमुख योजना है
1: जी,
2: जिसमें किसानों को मात्र 2% तक प्रीमियम देना पड़ता है
1: जी,
2: और 98% जो है प्रीमियम की राशि है, बीमा की जो प्रीमियम की राशि है
1: जी,
2: वो आधा आधा केंद्र और राज्य सरकार जो है वहन करती है
1: जी।
2: तो जो किसान भाई लोन लेते हैं उनका तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हो जाता है
1: जी,
2: जो किसान भाई लोन नहीं लेते हैं वो भी आवश्यक रूप से अपने फसल का बीमा कराएं
1: जी,
2: जिससे अगर सूखा की पड़ता है तो जो फसल को नुकसान होगा तो उसका जो है भरपाई बीमा के माध्यम से हो सकता है
1: जी।
2: इसी तरह से उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना की जो है व्यवस्था की गई है, तो जो फसल सब्जी भाजी खेती करते हैं या फल फूल की खेती करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए
1: जी,
2: इससे जो है जोखिम को कम करने में मदद मिलेगा।
1: एक बात और है डॉक्टर साहब, आपने बात की धान की, बात की दलहन तिलहन की, बात की ये जो नगदी फसल होती हैं कुछ, है ना, जैसे उद्यान की फसल की भी आपने बात की, कुछ नगदी फसल होती हैं क्योंकि कई बार उनका बड़ा अच्छा दाम भी मिल जाता है बाकी फसलों की तुलना में, इनके बारे में हमारे किसानों को बताएं कि कौन कौन सी फसल छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, आपने बताया कि अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों में जमीन है, तो किस तरह की जमीन में किस तरह की नगदी फसल उगाई जा सकती है और इनका बाजार में इनका मूल्य किस तरह से मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है।
2: नगदी फसल में तो हम लोग प्रमुख रूप से जो है जैसे सब्जी वाली फसलों को अभी कह सकते हैं
1: जी,
2: जिसका बाजार में तत्काल और तुरंत जो है लाभ मिलता है या ज्यादा लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल,
2: अभी आप देखेंगे कि ये राज्य शासन ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की भी योजनाएं हैं
1: जी,
2: जिसमें पाली हाउस का भी निर्माण किया गया है अनुदान के माध्यम से
1: जी जी।
2: तो पाली हाउस में हम साल भर सब्जी की खेती कर सकते हैं और उन सब्जी वाली फसलों की खेती कर सकते हैं जो सामान्य मौसम में आसानी से जैसे वर्षा काल में नहीं हो पाता है
1: जी,
2: और इन फसलों को लगाएं, इसमें खरीफ की जितने भी सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं
1: जी,
2: और धनिया को लगा सकते हैं, धनिया बहुत हाई रेट में बिकता है, मिर्ची हाई रेट में बिकता है, और जिसको जो पसंद है क्योंकि इसमें हमारा तापक्रम और वर्षा से बचाव हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है
1: जी,
2: नमी भी हम रेगुलेट कर सकते हैं
1: जी,
2: तो सब्जी वाली फसलों को पाली हाउस में लगाएं
1: जी,
2: तो बाजार में बढ़िया कीमत मिलता है।
1: अच्छा,
2: हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गन्ने की खेती होती है
1: जी,
2: तो गन्ने की फसल को भी जो है किसान भाई लगा सकते हैं, राज्य शासन ने कुछ क्षेत्रों में इसको बढ़ावा भी दिया है
1: जी,
2: इसको भी जो है खेती करके जो है लाभ कमा सकते हैं।
1: एक बात और है डॉक्टर दास की, अभी जैसे पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी उससे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है और राज्य सरकार नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित
2: कर रही है,
1: तो फसल की पैदावार पे क्या इसका कोई असर तो नहीं पड़ता है और कितना अच्छा है ये?
2: नैनो यूरिया जो है बहुत ही उपयोगी, मतलब जो है सूक्ष्म जो है पोषक तत्व तो है, नाइट्रोजन ही है
1: जी,
2: मगर इसको कम मात्रा में जो है देकर हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा,
2: या बल्क में जैसे जो चीज उपलब्ध नहीं है
1: जी,
2: यूरिया जैसे अभी नहीं हो पाएगा
1: जी,
2: तो हम नैनो यूरिया का जो है उत्पादन करके इसका उपयोग करेंगे तो इसका जो नाइट्रोजन की कमी से उत्पादन कम होने की संभावना है उससे हम बच सकते हैं
1: जी,
2: तो किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना ही चाहिए और ये कम मात्रा में अपन खेत में डालते हैं क्योंकि इसको इस कम मात्रा में जो है घोल के डाल देंगे
1: जी
2: तो लाभ तो उतना ही होता है।
1: बिल्कुल,
2: और अगर युद्ध के समय जो है उर्वरक की कमी महसूस की जा रही है
1: जी,
2: उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि वो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नैनो यूरिया तो है, ये बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, जैविक खादों का उपयोग करें। और हमारे वर्तमान में बहुत सारी जो है देसी विधियां हैं
1: जी,
2: गोबर के माध्यम से जो है हम जो है उसको पानी में घोल कर जो है कुछ दिन रख कर उसमें कई सारे चीजें मिलाकर जीवामृत घनामृत सब बनाते हैं
1: जी,
2: इसका भी उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। ये सब का उपयोग करेंगे तो यूरिया के ऊपर निर्भरता कम होगी
1: जी,
2: और उसकी कमी महसूस नहीं होगा
1: जी,
2: और उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन हमारे या तो उतना मिलेगा जितना पहले मिल रहा था
1: जी,
2: या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
2: और इसका दूसरा फायदा है
1: जी
2: कि हमारा जो मृदा के स्वास्थ्य है उस पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है
1: जी।
2: रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य को हानि होती है, खराब होता है। इसको अपने को रोकने के लिए ये सब चीजों का प्रयोग करें। इसी तरह से आने वाले समय में
1: जी,
2: जब हम जैविक खेती की बात करते हैं
1: जी,
2: तो हमको तो या केमिकल फ्री रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं
1: जी,
2: तो हमको धीरे धीरे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा
1: जी।
2: तो हमारे पास एक विकल्प है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है
1: जी।
2: अगर किसान पहले से अपना डिमांड रख दे
1: जी,
2: तो हम उतने मात्रा में उनको उत्पादन करके उनको दे सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ही आपसे पूछने ही जा रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को क्या क्या उपाय करना चाहिए?
2: किसानों को सबसे पहले तो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है।
1: अच्छा,
2: अगर उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा आर्गेनिक मैटर अगर बढ़ जाता है
1: जी,
2: तो अपने आप में वो बफर एक्शन शुरू हो जाते हैं, उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत रहता है
1: जी,
2: तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है हम जितने भी रसायन खेत में पहले से प्रयोग कर चुके हैं
1: जी,
2: और उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है
1: जी,
2: उन सब को न्यूट्रलाइज कर देगा वो।
1: बिल्कुल,
2: एक बार जब रसायन फ्री हो जाएगा हमारा खेत
1: जी,
2: तो जैविक खेती के लिए वो प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणीकरण में कंडीशन रहता है कि विगत 3 वर्षों से वहां जो है रसायनों का जो है प्रयोग ना किया गया हो। अगर हम गोबर खाद या जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं
1: जी,
2: तो निश्चित रूप से हम आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं
1: जी,
2: और आने वाले समय में जैविक खेती की संभावनाएं बढ़ेंगी
1: जी।
2: इसके उत्पाद का जो है हमको मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा, इसका रेट भी ज्यादा मिलेगा
1: जी,
2: और किसान भाई जो है रसायनों का जितना से धीरे धीरे प्रयोग कम करें
1: जी,
2: मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं
1: जी,
2: जल का संरक्षण करें
1: जी,
2: तो हमारा जो है मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास, आपने बड़े विस्तार से हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको इस जानकारी का लाभ पहुंचेगा। एक बार पुनः हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
2: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये सुन रहे थे आप कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास के साथ हमारी बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
0: कार्यक्रम बातों बातों में अभी आप सुन रहे थे। इसमें मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह, इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंटवार्ता अभी आपने सुनी। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म है आपकी कसम।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने,
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आराधना फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं SD बर्मन।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आइए अब सुने आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और फिल्म का नाम है धरती।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ, संगी संगवारी मन ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुने आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसिकार ओ पी नैयर, फिल्म है कश्मीर की कली।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं परसराम यदु और साथी। आइए कार्यक्रम में पहले सुने परसराम यदु और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं परसराम यदु और साथी।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे परसराम यदु और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण

0: देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की सुचारू और पर्याप्त आपूर्ति निश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्पवर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार ने किसानों से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए धान की रोपा पद्धति के बजाय डीएसआर यानी सीधी बुआई तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार इस तकनीक से पानी और लागत दोनों में बचत होती है तथा फसल जल्दी तैयार होती है। किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का दो दिवसीय चिंतन शिविर आज से रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू होगा। शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन और भविष्य की विकास रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित शासन व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। शिविर में कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सुशासन और जनसेवा सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालु अमरनाथ जी गुफा मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थ यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में सैयारा फिल्म से। गीत और संगीत है मिथुन का।

कार्यक्रम नई फिल्मों से, इसमें अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत। इस गीत की धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने। फिल्म का नाम है धुरंधर।

आइए श्रोताओं, अब सुने अरिजीत सिंह का गाया ये गीत, गीतकार एम तुराज और अजीम शिराजी, संगीतकार शारिब और तोशी, फिल्म है जैकपॉट।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। स्वेताज और बरार और हनी सिंह की आवाजों में आइए अब सुने अल्फाज और हनी सिंह का लिखा गीत। मौसिकी हनी सिंह की है, फिल्म है छलांग।

ओके जानू, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाजें शाशा तिरुपति और जुबिन नौटियाल की, गीतकार महबूब, संगीतकार हैं बादशाह और तनिष्क बागची।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आइए अब सुने कुमार की रचना। इस गीत की धुन तैयार की है मीत ब्रदर्स ने। फिल्म है बागी।

मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ों में अभी आपने सुना बागी फिल्म का गीत, रचना कुमार की थी, संगीत मीत ब्रदर्स का था। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए दावते इश्क इस फिल्म का गीत, आवाज़ें श्रेया घोषाल, कीर्ति और सोनू निगम की है, गीतकार कौसर मुनीर और संगीतकार है साजिद वाजिद।

कार्यक्रम नई फिल्मों से अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। चित्रपट संगीत, आइए चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में पहले सुने आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में चांदनी फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत है शिव हरि का।

कुछ कुछ होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत। स्वर अलका याज्ञिक और उदित नारायण के, समीर के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है जतिन ललित ने।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादे,
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुने आशा भोसले और अभिजीत को, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतन ललित, फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुने आशा भोसले और शैलेंद्र को। नगमानिगार जावेद अख्तर, मौसिकार आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है सागर।

फिल्म बेताब, आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

बेताब फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबोवर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है राजकुमार।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से। मोहम्मद रफी की आवाज में ये है साहिर लुधियानवी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म है मन की आंखें।

0: रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना वर्मा मलिक की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जीने की राह। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आइए अब सुने दूसरा आदमी फिल्म का गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

आइए अब सुनें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसक्कार आर डी बर्मन, और फिल्म का नाम है मेला।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने, धुन तैयार की है ओपी नैयर ने और फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए विदुषी सिद्धेश्वरी देवी का गाया दादरा।

0: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी का गाया दादरा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:55 होने को है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक DAP उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी। उन्होंने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत की संस्कृति आध्यात्मिकता

और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। पात्र संगठन, संस्थाएं और आवेदक अधिक जानकारी के लिए पोर्टल या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत आज से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 305.8 मीटर सैनौ से 81 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी संग्रहालय से, इसके अंतर्गत सुनिए गाथा झरोके से। इसमें आप सुनेंगे लोरिक चंदा की गाथा। लेखक डॉक्टर परदेश राम वर्मा, प्रस्तुति मोहन सी रामानी की।
1: प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से।

लीजिए सुनिए रूपक लोरिक चंदा की गाथा। लेखक हैं डॉक्टर परदेशी राम वर्मा और रूपक के प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।

0: नैया के बातरीला सुमिरो के राम लखन के धनुष बाने हो।
1: छत्तीसगढ़ के गांव में सदियों से अंधेरी रातों को अपने बांस के स्वर से आलोकित करते बांस गीत गायक श्रम के परिहार का जादुई उपाय भी करते थे। राउतों को लाठी संचालन, गोपालन, नृत्य वीरता और बांस गीत गायन में दक्षता के लिए विशेष आदर प्राप्त है। ये गोसेवक जाति है। बांस गीत में लूरिक और चंदा की कथा प्रमुख रूप से प्रस्तुत की जाती है। आज भी लूरिक चंदा की कथा का सम्मोहन यथावत है।
2: लूरिक चंदा की कहानी में एक युवक की साहसिकता, निर्भीकता और सरलता का ताना बाना है। वही मनुष्य के भीतर के आदिम राग का निनाद भी है। ऊंच नीच, महल झोपड़ी से परे नैसर्गिक जुड़ाव की ये कहानी लूरिक और चंदा की कथा ही नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के समतावादी स्वभाव की कथा भी है।
1: लूरिक चंदा की कहानी को जिस रोचक ढंग से कलाकार गायन के बहाने आगे बढ़ाते हैं वो चमत्कारिक है। मानव जीवन के द्वंद्वों को सरलीकृत कर इसमें कुछ इस ढंग से गायन के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं।
0: बड़े लकड़ी माँ भैया, बड़ भैया गरजे रागी भैया, बहरा

0: से जोहार लागे महामाई के महोबा के।
1: वाह वाह सिंह, इसने चीखा थी का

0: एक गर्भपातन का किस्सा है, लोरी के किस्सा है, संगीतेला सुनावा थे।
1: अच्छेगा
2: गढ़पाटन का वीर लोरिक था तो एक साधारण चरवाहा, मगर सबकी आंखों का तारा था। अपने गांव के पास के जंगल में ढोर ढांगर चराता और मस्त रहता। गढ़पाटन में एक शेर नरभक्षी हो गया। राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि वो नरभक्षी शेर को मार गिराए। सेनापति परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि गढ़पाटन का वीर लोरिक शेर को मार सकता है।
3: सेनापति चालाक था। वो लोरिक के पास जाकर उसे प्रलोभन देता है। लोरिक गांव का सीधा साधा जवान उसके निवेदन पर राजी हो जाता है। सेनापति उसे राज्य के स्वाभिमान की दुहाई देता है। राज्य की जनता की रक्षा का वास्ता देकर लोरिक को शेर से लड़ जाने के लिए तैयार करता है।
2: सामंती व्यवस्था में सदैव शोषण के भिन्न भिन्न हथियार इसी तरह पंजाए जाते थे। लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ताधीश अपना हित साधन करते थे। अंततः लोरिक शेर से भिड़ जाता है।

0: शेर को मारने वाले साहसिक लोरी की खूब प्रशंसा की जाती है। लेकिन दरबार में जाकर राजा को सेनापति बताता है कि शेर को उसने स्वयं मारा है। लोरी का परिचय हाका लगाने वाले नौजवान के रूप में दिया जाता है। राजा प्रसन्न होकर लोरी को राज दरबार में रख लेता है।
1: लेकिन लोरिक आग्रह करता है कि उसे अपने पशुओं के साथ उसी तरह वन में विचरण करने की अनुमति दी जाए। राज दरबार में लोरिक का दम घुटता था। उसे गांव के पास के वे जंगल अपने से लगते थे, जहां पेड़ों में फल थे। वन्य प्राणियों से भरे जंगल में जाति नस्ल का भेद नहीं था। करीब ही बहने वाली नदी का जल सबका था। चांदनी रात में वंशी बजा रहे लोरिक की बांसुरी जादू जगा रही थी। राजा की कन्या चंदा उसे दरबार में भी देख चुकी थी।
0: लोरिक ने भी चंदा को दरबार में एक नजर देख लिया था। दोनों एक दूसरे पर निसार थे, जंगल में एक दूसरे को देखते हैं। अद्वितीय सुंदरी चंदा को देखकर लोरिक ठगा सा रह गया।

0: बारा पाली की गढ़ गौरा सोलह गली कर खोर
1: हाँ
0: जहाँ बसे चंदावरी नरे लोरी बहिया जिकल
1: ले वैसो
0: का बताओ संगी राजा महल के राज है छे आगे छे कुरी झेरिया को सरे राउते
1: अच्छा
0: राजा महल के भैंस के पांडू दिखाई के खातिर नौकी लगे हावेरे
1: संगवारी मो

0: हमार काका बड़ा मला देखतो।
1: अच्छा।
0: राजा महल के सुन सागर भी इसका सुन पड़ू देखी सब हम ये बारह पालिक शहर में नौकरी लगे हमारे।
2: लोरिक की वीरता पर मुग्ध राजकुमारी चंदा ने मन ही मन लोरिक को अपना पति स्वीकार कर लिया। लोरिक भी उस पर मुग्ध था।
3: दोनों राज परिवार की बेड़ियों से मुक्त वन में लगातार मिलते और इस तरह उनके अनुराग की कथा सेनापति तक पहुंच गई।
2: सेनापति स्वयं चंदा पर मुग्ध था, मगर चंदा लोरिक की ही हो चुकी थी। अंधेरी रातों में महल की मर्यादा तोड़कर चंदा लोरिक से जा मिलती।
3: राजा को इसकी जानकारी मिली। उसे राजकुमारी का इस तरह एक साधारण पशु सेवक से मिलना अच्छा नहीं लगा। उसके अहंकार को चोट लगी।
2: राजा कराकुल देश के राजा के कुष्ठ रोगी पुत्र से अपनी बेटी चंदा का ब्याह तय कर देता है। चंदा को यह जानकर आश्चर्य होता है कि पिता भी कैसे पुत्री के सुख की राह में पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है।
3: प्रेम के पथ पर सदा परंपरा, व्यवहारवाद और निजी अहम का पहाड़ आ खड़ा होता है। मिथ्या मर्यादा और स्वार्थ के समंदर के पार प्रेम के तड़पते पात्रों की सांसें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये सदा से चला आया।
2: इसी व्यथा को लोक गाथा लोरिक चंदा में गायक कलाकार मंची प्रवीणता के साथ प्रस्तुत करते हैं तो दर्शक श्रोता उस कथा में अपने जीवन का अक्ष देखते हैं और आहें भरते हुए रात रात भर कथा के साथ जागते।
0: बारह पाली की गड़गौरा सोलह गली करखो जहाँ बस चंदा वरी नरे लोरी बहिया जी के लोहसोर।
1: हाँ।
0: का बताओ संगी राजा महर के बेटी राजकुमारी चंदा जेकर शादी बचपन में होए हवे रागी।
1: हाँ।
0: एक दिन चंदा के पति बावन के सारी शरीर में कोड़ हो जाते।
1: अरे रे।
0: आगे किसा के का बताओ रागी।
1: का
0: लोरी राय तो मन मन में सोचे बेरी हाथ में रखे तेंदु सार के लौठी नौ हाथ के बांधे सिमे पागा पहने पूरा के कुर्ता।
1: या या।
0: होली का दात पुन्नी का चंदा दगर दगर चोला भरत हवे
1: होगा
0: जेकर कहानी तोला।

0: सुंदर ने झापी पकड़े हावे
1: हाँ।
0: 12 महीने के जोरन धरे
1: जोड़े
0: नदी गेरवा में कैसे पहुँचे हावे
1: कैसे गा?
0: नदी पार हो गए हावे संगी
1: हाँ।
0: लोरी चंदन ले कथे बाबू
1: कैसे
0: चंदा हम ये शहर छोड़ के दूसरा शहर में चल देते हैं
1: जाबो
0: हम लोग कुछ दिन बिताए ल पड़ी चंदा
1: हाँ।
0: काला घर में माँ बाप हम छोड़ के आए हवा
1: अरे रे
0: मोर पति बावन शंकर के साप लगे हवे
1: हाँ।
0: नान नान में शादी हो रही से जोड़ी सल्ला छोड़ के हम सारंगढ़ नामक शहर में चल देते हैं
1: अच्छा
0: वहाँ जीवन भी

0: चंदा को भी परंपरा की बेड़ी में जकड़कर एक अनुपयुक्त वर के साथ जाना पड़ा। लोरिक तो स्वीकार कर चुका था कि वो मात्र एक खिलौना है जिसे राज सत्ता से जुड़े लोगों ने खेलने के लिए चुना।
1: चंदा उसकी व्यथा जानती थी, लेकिन वो बेबस थी।
0: प्रथम रात्रि में मिलन एक कुष्ठ रोगी पति और अनिंद सुंदरी चंदा का मिलन। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुष्ठ रोगी पति को ग्लानी हुई कि चंदा के पिता केवल राजा सिद्ध हुए। उन्होंने ऐसी सुंदर पुत्री को कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह कर कुएं में ढकेलने का यत्न किया है।
1: चंदा ने कहा कि वो एक साधारण चरवाहे पर मुग्ध रही, मगर विधि के विधान से विवश है। अब जीवन का मार्ग ही बदल गया है। अंधेरी रातों में टटोल टटोल कर चलने के लिए ही अब सारा जीवन संघर्ष करना है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।
0: कुष्ठ रोगी पति को चंदा की साफ कोई छू गई। उसने कहा कि मैं कुष्ठ रोगी जरूर हूं, मगर पशु नहीं हूं। जाने किन पाप कर्मों के कारण मेरी ये दुर्गति हुई। अब तुम्हारा जीवन नष्ट कर मैं इससे बड़ी सजा का भागीदार नहीं बनना चाहता।
1: चंदा रोने लगी। कुष्ठ रोगी पति ने कहा कि चंदा, विधाता कभी इतना निर्मम नहीं हो सकता। तुम अपने सपनों की दुनिया में लौटने की कोशिश करो। मेरा कोई भविष्य नहीं है, वर्तमान भी मेरा अभिशप्त है।
0: चंदा कहती है कि आपकी उदारता आपकी शारीरिक कमी और अस्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति कर देती है। मनुष्य केवल तन के स्तर पर ही नहीं जीता, आपका मन बलि है। लोरी के चमचमाते शरीर की तरह आपका हृदय आलोक का पुंज है। हर मनुष्य की अपनी विशेषता होती है, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता।
1: कुष्ठ रोगी राजकुमार ने कहा, मुझे शब्दों के जाल में लपेटकर असहाय मत करो चंदा, तुम स्वतंत्र हो, जाओ लोरिक की तलाश करो।
0: चंदा ने दृढ़ स्वर में कहा कि बीमारी के इलाज के लिए सही वैद्य की तलाश भी की जा सकती है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है। आप मन से चंगे हैं, जो मन से चंगा होता है धीरे धीरे तन की कमी से भी वो उभर जाता है। मैं अब आपकी हूँ लोरिक, मेरा बीता हुआ कल है, आपके साथ ही जीना है। जिंदगी मन के बंधन में बंध कर मुक्ति का सुख लेती है, तन के बंधन की समय सीमा होती है, मुझे स्वीकार कीजिए।
1: इस तरह चंदा एक नए संसार का सृजन करती है। इस कथा में स्त्री और पुरुष के बीच के स्वाभाविक आकर्षण को चित्रित किया जाता है, लेकिन कई कई क्षेपक कथाएं भी हैं। किसी कथा में चंदा पुनः लोरिक की हो जाती है, तो किसी कथा में लोरिक को तलाशते हुए जब चंदा जाती है तो उसे वर्षों नहीं खोज पाती।
0: वर्षों बाद जब चंदा लोरिक के करीब पहुंचती है तो लोरिक साधु के भेष में मिलता है। चंदा को देखकर वो जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं चंदा और लोरी का प्राणांत हो जाता है।
1: लेकिन एक कथा में चंदा अपने कुष्ठ रोगी पति के संस्कारों और संवेदनाओं को देखकर पुनः उसी तरह मुग्ध हो जाती है जिस तरह वह लोरी की देहयष्टि को देखकर मुग्ध हुई थी। ये मन और हृदय के बंधन की अनुपम कथा है।
0: लोरिक चंदा की कथा का यही स्वरूप छत्तीसगढ़ में अधिक स्वीकार्य माना गया है, क्योंकि इस कथा में चिरंतन सत्य, सहजता और हृदय की विराटता को केंद्र में रखकर कथा को विस्तारित किया गया है।
1: छत्तीसगढ़ सदैव हृदय से संचालित होने वालों को अहमियत देता रहा है। ऊपरी आवरण और दुनियावी चकाचौंध को भेदकर अंतर मन तक जा पहुंचने की विधा का साधक रहा छत्तीसगढ़। इसीलिए चंदा अंततः मन की महत्ता को स्वीकार कर कथा में अपने पति की अर्धांगिनी बनती है। जीत हृदय के भाव की होती है। तन पर मन की जीत की यह कथा कई रूपों और स्वरूपों में बांस गीत लोकमंच लोकगाथा में ढलकर आज भी सम्मोहन रचती है।
2: राजा महर का रबेटी।

अभी आप सुन रहे थे रूपक गाथा लोरिक चंदा की। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। वाचक स्वर प्रीति राज वैद्य और योगेश नैयर के। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, रामस्वरूप यदु, रामाधार साहू और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।

आकाशवाणी संग्रहालय के अंतर्गत आप सुन रहे थे गाथा झरोखे से। इसमें आपने सुनी लोरिक चंदा की गाथा। लेखक थे डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। प्रस्तुति मोहन सी रामानी की थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले सुनवा रहे हैं आपको सनम रे, इस फिल्म का गीत, आवाज़ें मिथुन और अरिजीत सिंह की, गीत और संगीत मिथुन का। और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की, ईमेल और पत्र भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं भाटा पारसी, दान सिंह रावत, तानू पद्मिनी रावत, नीरज शुभम रावत, अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी गोपी भूपेश वर्मा, धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता स्वाति माखीजा, यवतमाल से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा अनस, सोंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, बालू से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेलहारी दुर्ग से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार और संध्या, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू सन्नी, डोंडी लोहारा से डोमिंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल, कामेश नेताम, बाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भिकू और विनय ठाकुर, रायपुर से रोगनाथ यादव, वंदना, शीला, कनक और गुनगुन यादव, बलेसर महासमुंद से बलराम सेन, इंदू सेन, छगन, द्वारिका सिन्हा, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सनम रे फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत एनिमल इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज़, सिद्धार्थ करीमा के बोल हैं, श्रेयस पुरानी का संगीत। और फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की, तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मालती और मयंक मरावी, सोनाडी से सुब्रत और शांतना चौधरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हिमलता, डिम्पल देवांगन, महासमुंद से भीष्मदास हिरमणि, दीपक लक्षदास, कोरासी भैसा से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज साहू, सुष्मिता साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, लोहारेडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, खुशांत और निशांत, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, पलारी से श्यामलाल रामदास, युवराज साहू, चरडुंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी माया, हटोद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, भीमकोच, तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश और लक्ष्मी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं एनिमल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत रेड टू इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। मनोज मंतशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रोचक कोहली ने और आवाज सुबिन नौतियाल की। फरमाइश आप सभी श्रोता साथियों की। नेवी उतई से विक्की देवांगन उर्वशी, जतिन जयंत, करुहानार से गोमती रजक काजल रजक, कोदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी, बंगीटोला से ननका राम ध्रुवे जामुनबाई फिरतराम मालती ध्रुवे, सेहामालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा, गंडई पंडरिया से शिवा यादव राज यादव चिंटू तरुण यादव, राजनांदगांव से बीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता, बालू से चिंताराम यादव रवि प्रकाश यादव, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक कुमार और जयश्री देवांगन, पलारी से प्रकाश शर्मा प्रिंस वर्मा निखिल और यशस्वी वर्मा, परसुडी से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास, बिलासपुर से सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष देवांगन, धरसीवा से छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना अरुणा, रायपुर से छन्नूलाल यादव पुष्पलता बलदाऊ राजेश्वरी, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश और रामकिशन साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी राजादास रानी मानिकपुरी, भिलाई जामुल से विकास वर्मा खुशी ग्रंथ वर्मा और संजय प्रधान। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गौतम आशीषा और जमुना शर्मा की आवाज़ों में लिख एक गीत। फरमाइश आप सभी की, भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, भाटापारा से राम कुमार राउत, अमरीका गणेश राउत, कार्तिक, अमली बदर से निकुंज तिवारी, लाची ममता तिवारी, धवलपुर से गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांती अर्चना, धनंजय मिश्रा, बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी, सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद आदित्य आशीष, दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, पालचुआ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी योगिता और नितिन दिवाकर, रुआबंधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना से या सौरभ जैन, खट्टी से सुभाष शर्मा, छाया कुमुदनी और ओंकार शर्मा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू, भाटापारा से ही गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिश्री, सिरमंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांतिबाई और राजेंद्र कुमार दामले, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना माल, अनिता मोटवानी, राजेश और मुकेश मोटवानी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम में आप आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आँखों की गुस्ताखियाँ। इसका गीत विशाल मिश्रा की आवाज़, बोल और संगीत फरमाइश आप सभी की। भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकर मुंदड़ा। भाटापारा से मोतीलाल भट्ट परिहार, संतोष कुमार मंडलू। और बेमित्रा से राज और रागिनी वैष्णव। मगरलोर से श्रीचंद यादव, भारती कशिश, चांदनी सनातन यादव। अहिवारा दुर्ग से पेंटर डबल कुमार धीवर, जतीन हेमन राज, बाबू धीवर। अरमरी खुर्द से चोरामन लाल वाडे, जैनी वाडे। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर। बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, हेमलता कमलकांत सारथी। भाटापारा से नारायण यदु, पूनिया राकेश यदु। कोरदालवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम गुलशन कुमार और शिव कुमारी वर्मा। मगरलोर से पूनू राम साहू, राज तेजेश्वरी, राजश्री, राजवीर साहू। डोंगरगढ़ से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार, कविता जयंती। और ठीपारा से अनिता साहू, वीणा नेहा और मुनिषा साहू। शिव मंदिर रोड खैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, पुष्पलता, झरना, प्रेरणा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं आँखों की गुस्ताखियाँ फिल्म का ये गीत।

0: आपके मीतिये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

0: जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अंजाम का गीत, आवाज़ अभिजीत की। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ कुमार सानू की, जतिन ललित का संगीत, गीतकार समीर।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स केंद्र रात 8:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती रात 9:30 पर और रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित अर्नब चटर्जी का ख्याल गायन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

घर आंगन कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर। आज की गोट का विषय होगा अब तो आषाढ़ आ गई रही, और विशेष कार्यक्रम बूंद नहीं ये जीवन आए। आलेख और वाचन आशा शर्मा का होगा, संपादन और प्रस्तुति बीर भानसा होगी, संयोजन रमाशंकर का होगा।

युववाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर अपन गोट का विषय होगा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। आप सुनेंगी आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत।

लोक संगीत शाम 6:30 पर कलाकार होंगे परमानंद करियारे और साथी, और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे परसराम यदु और साथी।

शाम 7:21 पर चौपाल में आज की सलामी स्थाई उन्नत कृषि के कार्य जल संचयन एक उपाय इस विषय पर डॉक्टर रवीश केशरी विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा एवं जल अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद देंगी जानकारी। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा 5:00। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं हमारी इसी सभा में 2:30 पर, संध्याकालीन सभा में 7:00, 8:00, 9:15 पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें, स्पोर्ट्स कैन आप सुनेंगे 8:30 पर, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती 9:30 पर और 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित अर्णब चटर्जी का ख्याल गायन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मल्ला आशा के राम राम। बहनी हो असाढ़ के महीना सिर्फ महीना नहीं होवे, एकर ले जिंदगी के नवा पाठ जुड़े हवे। हमर लोक संस्कृति मा तको ये महीना के विशेष महत्ता है। लोकगीत मा जतका आनंद है, खेत खार मा एकर ले सुर है, ताल है और जिंदगी मा एकर ले नवा उछाह है। तो आवो असाढ़ के ये महीना मा प्रकृति के मान गौन करन, बरसात के हर बूंद ल सकेलन और हरियर भविष्य के संकल्प लेवत सुनन आज पर्यावरण और जल संरक्षण के ऊपर आधारित ये विशेष कार्यक्रम बूंद नहीं ये जीवन आए, जेकर आलेख और वाचन आशा शर्मा के माने हमर है, संपादन और प्रस्तुति है बीरभान साहू के और संयोजन है रमा शंकर के। तो आवो सुनन विशेष कार्यक्रम बूंद नहीं ये जीवन आए।

जेठ बैसाख के लकलकावत घाम मा जिहा भुइया के हृदय फाटे रहते, खेत के माटी प्यास ले चटके बर धर लेते और रुख राई के पाना तको पियर पड़ जाते। उहे चिरई चिरगुन एक एक बूंद पानी खातिर तरसे लागते। तरिया अटा जाते, नदिया के धार पतरा जाते और हमर गौधन पानी खोजत एती ओती भटकत रहते। संग में हमर भुइया के भगवान किसान के आंखी आगाज डहर एक टक निहारत सिर्फ बादर ल नहीं बल्कुन जिंदगी ल खोजत रहते। तभी असाड़ के करिया बादर उमड़त घुमरत गरजत चमकत अपन आय के संदेशा देते और जब आगास ले बरसा के एक बूंद भुइया में गिरते तो भुइया के विश्वास और बदरा के भरोसा की संगरा भेंट होते तो खुशी के मारे माटी के महमहई जैसे सबके उदास जिंदगी में परान भर देते। काबर की ये महमहई सिर्फ माटी के नहीं होवे, ये तो एक नवा जिंदगी के महक होते और ये पानी के बूंद सिर्फ भुइया ला नहीं फिजोवे बल्कुन सबो जीव की जिंदगी मा आशा और विश्वास भर देते। तब ऐसे लागते कि अब दुख के दिन बीत गए और सुख के दिन आ गए।

पानी सिर्फ प्यास बुझाए के साधन न है, ये तो मान गौन धीरज मेहनत और जिंदगी की चिन्हारी आए। यही पहली पानी के बूंद ले धरती दाई मुस्का थे, किसान के भरोसा जागते कि ये सो खेत मा मुरोगारे पसीना फसल बन के लहलहाई। तो ही जंगल के हरियाली आए पानी, नदिया के गीत आए और हर जीव जंतु के सांस आए पानी। ये पानी के गिरे ले जिया रुख राई झूम झूम के खुशी मनाते, उन्हें मेचका और झिंगूर अपन बोली मा प्रकृति पर आभार दिखाते। उन्हें धरती के कोख मा पड़े बीजा सुते हुए लेका असन जागते और जरे जाम के भविष्य के संदेशा देते। तभी तो पानी के बूंद सिर्फ बूंद नहीं है, ये जिंदगी आए। और ये अषाढ़ के महीना अन्नदाता किसान और जिंदगी के नवा जन्म के महीना आए, खेत के हरियाए के आशा जन्म लेते और किसान के मन मा नवा भविष्य के सपना के जरई जागे बर लागते।

और किसान के माथा के पसीना और बदरा के पानी मिलके अन्न बनाते, तभी तो अन्नदाता कहते किसान। खबर की ये पानी की बूंद सिर्फ बूंद नहीं होवे, बल्कि मेहनत, आस और विश्वास के दूसर नाम होते। तभी तो पानी गिरते साथ किसान अपन बैला, नांगर, बीजा और खेत की तैयारी में भिड़ जाते। वो जानते कि आज के ओगराए पसीना अवैया काली के रोटी बनी।

संहिता है, कहूँ बेरा म बदरा बरस जथे ना तो खेत लहलहा उठथे, तरिया डबरी भर जथे, नदिया कल कल छल छल बोहाय भर लागथे, पेड़ पौधा म नवा जिंदगी आ जथे और जीव जंतु के उछा के का कहना। और ये माटी किसान के महतारी होते, बीजा ह भविष्य और पानी ह जिंगानी होते, तभी तो जी परान लगा के घाम पानी बरसात और मुश्किल ले मुश्किल बेरा ले लड़ते, जेकर ले घरों घर के थारी अन्न ले भर सके और ये प्रकृति और मनखे के नता के बंधना अटूट हवे। हम कहूँ जल जंगल जमीन और पर्यावरण ला बचाबो, तभी ये असाड़ के पानी हमला जिंदगी देवैया बने रही। काबर की तरिया नदिया कुआं रुखराई हमार संस्कृति के धरोहर आए।

हमर पुरखा मन बरसा के पानी ल भगवान के प्रसाद मानें, कुआं खुदवावें, तरिया बनवावें, पेड़ लगावें, काबर की ओमन जानत रहिन कि बरसा के पानी कहूँ धरती में नहीं उतरही तो अवैया पीढ़ी पानी पर तरसही। और पहली के बेरा में कोनो गांव के पहचान वहाँ के घर खेत और रद्दा ले नहीं होवत रहीस, बल्कि वहाँ के तरिया कुआं और बहावत नदिया ले होवे। जोन गांव के तरिया पानी ले लबालब रहाय, नदिया कलकल बोहात रहाय और जिहां पेड़ के जुड़ छाँव पानी ले जुड़ करे, वो गांव बढ़र अपने आप हो जाए। तरिया गांव के हृदय होते, उमा सिर्फ पानी के भंडार नहीं होवे, पूरा गांव के जीवन रेखा होते। खेत की सिंचाई होवे कि भुइयां के भीतर के पानी के बढ़ाना होवे कि जीव जंतु के प्यास बुझाए के सहारा कि चिड़ै चुरगुन के आसरा की जगह, ये सबो तरिया होते। गर्मी में जब चारों मुड़ा पानी सुखा जतीस तो यही तरिया जिंदगी के सहारा बनते। और नदिया धरती के धमनी माने जाते, पहाड़ ले उतर के भाठा ला उपजाऊ बनाते, खेत ला हरियर करते। हमर इतिहास गवाही कि दुनिया की जतका महान सभ्यता होइन, नदिया तीरन ही फलिन और फूलिन। नदिया सिर्फ जल के धारणों हैं, हमर संस्कृति, हमर आस्था और हमर जिंदगी के सरलक यात्रा आए।

फिर आज संसो की विषय ये है कि हम अपन तरिया लपाट के खेत बनावत हन, घर बनावत हन, कुआं मा कचरा पटात हे, नदिया ल प्रदूषित करत हन और वर्षा के पानी ल बोहान देवत हन। अब एकर परिणाम हमर आगू है, पानी भुइयां के नीचे जावत है, गर्मी बाढ़त है, वर्षा के संतुलन बिगड़त है और किसान संकट में पड़त है। जब बूंद बूंद ले सागर भरते तो बूंद बूंद ले सागर खाली तको तो हो सकत है। हमला हमर अवैया पीढ़ी ला सुरक्षित भविष्य देना है तो फिर अपन पुरखा की परंपरा ला अपनाए बर पड़ी, हर गांव के तरिया ला जियाए बर पड़ी, हर नदिया ला साफ रखे बर पड़ी और बरसात के पानी ला सकेले बर पड़ी और ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाए बर पड़ी। काबर की बरसा ला बलाथे पेड़, तरिया ला सजाते पेड़ और नदिया जिंदगी ला आगू बढ़ाते। ये बात की सुरता राखन कि तरिया म सिर्फ पानी नहीं रहा है, वो गांव के सांस होते। नदिया सिर्फ बहावत पानी नहीं हुए, हमर संस्कृति के धड़कन होते और पानी सिर्फ कोनो जिनिस नहीं हुए, अवैया पीढ़ी के संपत्ति होते। पानी।

जब ये धरती माँ पहली बीजा माँ जरई जामी सोही, तभी जिंदगी मुस्कई सोही। काबर की पेड़ प्रकृति के अमोल भेंट आए, बिना कुछ मांगे हमला जिंदगी भर देत रही थे, और खुद घाम में खड़े रह के हमला जुड़ छाँव देते। धरती के परान आए पेड़, जैसे सांस के बिना मनखी नहीं जी सकन, वैसे पेड़ के बिना ये भुइया नहीं जी सके। पानी ला बलाते पेड़, माटी ला बांध के राखते, और नदिया तरिया ला जियाते पेड़, और जीव जंतु के घर बसाते पेड़। तभी तो 10 कुआं के बरोबर एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बरोबर एक तरिया, और 10 तरिया के बरोबर एक बेटा, और 10 बेटा के बरोबर एक पेड़ ला माने गए है। ये बात सिर्फ धर्म के नो है, बल्कुन प्रकृति भर हमार सुघर सोच के प्रमाण आए। तो आज हम पेड़ नहीं लगाबो तो अवैया हमार लोग लेका सिर्फ हरियर धरती के कहनी सुनही, उनला छाव नहीं मिलही, शुद्ध हवा नहीं मिलही, और शुद्ध पानी नहीं मिलही।

अवो जब जागिन तभे सबेरा, पानी के एक एक बूंद सकेलबो, भुइया मा हरियाली लाबो, नदिया तरिया कुआं बचाबो, अवैया पीढ़ी के जिंदगी सजाबो। काबर की बूंद नहीं ये जीवन आए, तभी तो बरसात के पानी सकेल के राखना सिर्फ परंपरा नो है, बल्कुन प्रकृति पर आभार के भाव हरे। तरिया नदिया सिर्फ पानी के भंडार नहीं होके हमर गांव के संस्कृति, हमर रोजी रोटी और सामाजिक जिंदगी के आधार आए। ते एकर बर हम पानी ला सकेलन, बरसात के पानी ला वाटर हार्वेस्टर लगा के भुइया में उतारन, पानी ला सोच समझ के बोरन, त अवैया पीढ़ी हमर मान राखी। और हमर संस्कृति में तो पानी ला देवता माने गए है, नदिया ला महतारी, और कोनो भी शुभ काम जल के बिना नहीं हुए। तो एकर ले ये संदेशा मिलते कि पानी के सम्मान करना माने जिंदगी के मान करना होते।

बरसात की जब पहली बूंद धरती के अचरामा गिरते, तब सिर्फ माटी भर नहीं महमहावे, बल्कि उन किसान के भरोसा जागते, नान्हे लैका के मुस्कई और प्रकृति के कन कन मा नवा जिंदगी जाग जथे। फिर ये तभी तक है जब तक हम पानी के मान करना जानथन, और कहूँ आज पानी ला नहीं बचाएं तो अवैया पीढ़ी हमला पूछ ही कि जब नदियाँ सुखावत रहीस, तरिया पटावत रहीस, कुआं अटावत रहीस, तब तुमन का करत रहे हो। तेकर सेती आवो हम सब आज परन करन, बरसा के एक एक बूंद ला संभालबो, पटावत तरिया ला फेर जियाबो, हर नदिया ला अपन परिवार मान के ओकर रक्षा करबो, हर घर हर गांव और हर मन मा पानी बचाए के अलग जगाबो। सिर्फ बातें बात में नहीं, बल्कि अपन कर्म ले ये दिखाबो कि पानी के मोल हम जानथन।

सुरता राखन। हमला तरिया बचाना है, नदिया बचाना है, तो सबले पहली पेड़ लगाए बर पड़ही, पेड़ बचाए बर पड़ही। और यहू ला सुरता राखन कि पेड़ जिंदगी के आधार आए, और पानी के हर बूंद पेड़ ले जुड़े है, पेड़ के सबो जड़ धरती ले जुड़े है, और धरती के सबो जिंदगी पेड़ ले जुड़े है। तेकर सेती पेड़ बचाना माने भविष्य बचाना। तो आवो पेड़ लगावन, पेड़ बचावन, जिंदगी बचावन और पानी बचावन, तभी अवैया पीढ़ी हमर आभार माने।

और यहू बात सिर तो ना आए कि पेड़ और पानी की नता अटूट आए। जिहा पेड़ है वहाँ बरसात है, जिहा बरसात है वहाँ जिंदगी है। तेकर सेती पेड़ लगाए ले सिर्फ पर्यावरण के रक्षा नहीं होवे, संग मा पानी बचाए के सबले सरल और प्रभावी उपाय हरे। और पानी सिर्फ प्यास बुझाए के साधन नो है, ये खेती के आधार आए, संस्कृति के पहचान आए और अवैया पीढ़ी के अधिकार आए। जिन दिन पानी के मूल समझ में आ जही, वो दिन पानी बचाना हमर आदत में शामिल हो जही। काबर की ये बूंद नहीं जीवन आए।

बेनी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो पर्यावरण और जल संरक्षण के ऊपर आधारित ये विशेष कार्यक्रम बूंद नहीं ये जीवन आए, जेकर आलेख और वाचन रहीस हमर माने आशा शर्मा के, संपादन और प्रस्तुति रहीस बीरभान साहू के और संयोजक रहीन रमा शंकर। अब इन्हीं हो ये तो होइस हमर आप मन बर बनाएंगे कार्यक्रम जेन रेडियो ले प्रसारित होइस और आप मन सुने हो। फिर सही माँ आज हम सोचन तो पानी की स्थिति का है, विशेष करके पिए के पानी के। आप मन सब अखबार में पढ़त हो, समाचार में सुनत हो और देखत तको हो कि पिए के पानी खातिर कतका परेशानी उठाए बर पड़े थे। बाल्टी हौला धरे कतेक लंबा लाइन लगे रही थे और एकर स्थिति लड़ाई झगड़ा तको होते। अब ये समस्या सिर्फ रेगिस्तान क्षेत्र की समस्या नहीं रही है, बल्कि गांव गांव शहर शहर में सबो जगह ये समस्या देखब मां थे। तो पानी बचाए के उपाय हमला करे पर पड़ी। अभी देखो जैसे नल जल योजना ले घरों घर अभी पानी पहुंचा थे, नल लग गए तो वो पानी ले हम का करत हन, गाड़ी मोटर धोवत हन, सड़क ला धोवत हन, माने और नल में कहूं टोटी नहीं लगे तो पानी बेकार बहावत है। ओकर पर हमर जिम्मेवारी ये बनते कि हम अगर नल में टोटी नहीं है तो टोटी लगा देवन। और पेड़ पौधा में हम पानी डाला थन तो भाई दार चाउर धोयन, साग भाजी धोयन तो उन पानी ला डारन। गाड़ी मोटर धोना है तो ला हम गिल्ला कपड़ा करके तको पूछ सकत हन। और वैसने धोए पोछे के काम है तो भाई हम कपड़ा लत्ता झलफिलाए पानी दूसरे या तीसरे जोन पानी देते उमे हम झाड़ू अपन पोछा सफाई लिपे बाहरी काम कर सकत हन। तो वो पानी जैसे जत का पीना है हम उतके पानी में गिलास में हम डारन और पानी बचाए भर पेड़ लगावन। एक पेड़ माँ के नाम, कतेक सुघर भाव है ना ये योजना के पाछू। माँ जिन हमर बर सब कुछ है दुनिया में ओकर नाम ले हम पेड़ लगाबो तो सुख मिली जब वो पेड़ बाढ़ी फल ही फूल ही और वो माँ के नाम अमर हो जाए। और हम ही नहीं अपन लोग ले कमला तको ये बात जरूर सिखावन कि पानी की बचत कैसे करना है, पानी कैसे बचाना है। तो एक बार हम नान नान उपाय कर सकत हन कि सबले पहले बात तो उनकर जन्मदिन में हम एक पेड़ लगावन और पेड़ ला बड़े करे में, पेड़ ला पाले में पोसे में उकर सहयोग लेवन लेका कि तो लेका ले समझ में आई कि पेड़ मोर नाम से लगी है और जब वो बाढ़त देखी

पेड़ ला तो जो ओला खुशी मिली जिनला हम शब्द में नहीं बता सकन। तो फिर औ ओकर संग संग ओकर अवैय पीढ़ी ला तको वो पेड़ हापन फल फूल दे। तो बहनियों सुरता राखन कि पानी के बूंद नहीं ये जीवन आए और हर बूंद बचावन, काबर की जल बांची तो कल बांची और कल बांची तो जिंदगी बांची। तो ये कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगीस एकर बर हमला आप मन के ईमेलो पाती के अगोरा रही और ईमेलो पाती मिले नहीं तो हम जानबो मानबो ना कि हमर चेतलक श्रोता बहनी मन हमर कार्यक्रम ला कतिक ध्यान ले सुनत हैं और अपन विचार भेजत हैं। तो चलो आज के कार्यक्रम यहीं तक है और हमला विदा दे के बाद ईमेल और पाती तुरते लिख के पठो हो ऐसा हमला भरोसा है। और हाँ बहनी हो कार्यक्रम सुन के और विचार पठो के संगे संग सबले जरूरी काम पेड़ लगाना और पेड़ बचाना है। तो अवैया ईमेल और पाती माँ पेड़ लगाए के बाद आप जरूर बताओ आपके पाती पढ़े जाए। और अब देखो विदा लेके टाइम हो बेरा हो गए है तो देवा अपन बहने आशा ला विदा और लेवा हमर राम राम।

घर आंगन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2 बजे हैं, लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं धर्मपुत्र फिल्म का गीत, आवाज महेंद्र कपूर की, साहिर के बोल हैं एंड दत्ता का संगीत।

0: पड़ोसन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र किशन की बोल थी, संगीत आर टी बर्मन का।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में मजरों का लिखा गीत। संगीत SD बर्मन का है और फिल्म का नाम है तलाश।
2: पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहां के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
8: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं जब वी मेट फिल्म का गीत, मोहित चौहान की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल और संगीत प्रीतम का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

0: आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बढ़ते हैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।

0: मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि BIA अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्याय शास्त्र को भी दर्शाता है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हेवेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के शिष्टमंडल शामिल थे। 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के शाश्वत ज्ञान को विश्व तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi dedicated, inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees at Balotra, Rajasthan. These projects spanned multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister dedicated India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector.
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि BJP सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: Earlier, Mr. Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan. This marks a significant leap forward in country's civil aviation landscape and will further advance the vision of Ude Desh Ka Aam Nagrik.
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
1: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand in Ahmedabad. Union Home Ministry has designated 23 individuals based in Pakistan as terrorists under the Unlawful Activities Prevention Act. They were linked to Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Tayyaba and other organizations. The ministry said the government is committed to dismantling every terror module to safeguard the country and its citizens. Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav has expressed confidence that the entire high-speed rail corridor connecting Ahmedabad and Mumbai will be completed by the end of 2029. Speaking to the media in Ahmedabad after reviewing various ongoing railway projects in Gujarat, the minister stated that the construction of the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is progressing rapidly, with 80% of the work in Gujarat section already completed. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and over-the-top OTT content. Sources further said that the platform has been asked to submit the action taken report in 15 days. The government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price is effective from today. In Iran, preparations are underway for the six-day state funeral of the former Supreme Leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, which will begin in Tehran today. Senior Iranian leaders, military commanders and foreign dignitaries paid their respects to Ayatollah Ali Khamenei at Tehran's Grand Musalla. India was represented by Governor of Bihar, Lieutenant General Sayyid Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs, Pavitra Margarita. In a social media post, Mr. Margarita said they conveyed respect on behalf of the government and people of India. Meanwhile, India Meteorological Department has said that conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and Rajasthan during the next 4 days. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh, coastal Karnataka and Vidarbh till tomorrow. In men's cricket, the second T20 international between India and England will be played in Manchester today. The match will begin at 7 this evening. And that is the end of this news bulletin.

बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर. शनिवार की बहुत खूबसूरत दोपहरी है. मॉनसून मुबारक हो आप सभी को. सभी को सीमा वर्मा का नमस्कार. मन भावन प्रोग्राम की पहली पेशकश मेरी ओर से आप सबके लिए.

चलिए इसी दीवानगी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझे आप सबका साथ मिला हुआ है, क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके मैसेजेस जो हैं उन्हें देखना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, शुरू से ही आपके मैसेजेस आने लग पड़े हैं, और इसके लिए एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूँ, fmgoldaiadelhi@gmail.com इस पर आपको अपना संदेश भेजना है। अब क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं हमें प्रोग्राम से पहले ही आना शुरू हो गए, तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको ये एड्रेस पता है, लेकिन जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, आप 100.1 के साथ हैं। मेरा नाम है सीमा, कार्यक्रम का नाम मन भावन, और ये कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों का कार्यक्रम होता है। तो हम अब शुरू करते हैं आपके मैसेजेस को लेना। दिग्दर्शन जी और कविता गौड़ जी, आपने अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका, पूरी तैयारी करके आप आए हैं इसके लिए शुक्रिया। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैंने पढ़ने शुरू कर दिए हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खुरवाल जी, सचिन, अमन और दीपांशु हैं, पानीपत से नरेश मल्होत्रा हैं, और साथ में लक्ष्य हैं, कोयल हैं, नानक चंद मल्होत्रा हैं। अगर हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग से हमारे पास संजय साहू जी, सुनीता साहू और शशांक हैं इनके साथ, और सीमा साहू हैं। गांव नथाना पंजाब की बात करें तो हरजिंदर छिंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया, आपके साथ जसवीर जस्सी हैं और सीता हैं और गीता भी हैं। चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा साहब, आपका संदेशा हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ ऋतिक हैं, प्रतीक हैं, अनिल शर्मा हैं और जयवीर सिंह हैं। एक नाम और है आपके साथ जो कि है अमनदीप। आइए सुनते हैं एक और गीत इनमें से किसी एक की पसंद का।

FM Gold 100.1 आप सुन रहे हैं और आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के साथ. आपके साथ मन भावन प्रोग्राम है और 3:38 भी हो गए हैं. समय भी आपको बता दूं, आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा और मेरे साथ आपके बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड खत कह सकते हैं. ये मध्य प्रदेश से हमारे पास खरगोन जिला खरगोन से मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा है, अनुज वर्मा है, आयुषी है, इनके साथ रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाई जान है, भाई राजकुमार बुडाना है और इन्होंने कुछ नाम और लिखे हैं. सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप. ये आपने मैसेज किया है. आपको एक बात बताऊं, आप ना जिनके नाम आप लिख रहे हैं उन्हें ज़रूर आप कहें कि भाई आप संदेशा जो है वो अपना खुद भेजें. हम इतनी लंबी लिस्ट लिख देते हैं फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हमारा नहीं लिया जाता, नाम मिस हो जाता है, क्या करें. यहाँ पर एक और हमारे पास संदेशा आया है. ये आया है जी, बोधराज खोरवाल जी हैं, कमला रानी हैं, गीतिका खोरवाल हैं, भानु प्रकाश हैं, उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है. और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, दो मैसेजेस आते हैं उत्तम नगर से और उनका सरनेम खोरवाल होता है, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज जाती हूँ कि अभी नाम लिया शायद मैंने. तो चलिए अब अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं. और ये हरिद्वार से हमारे पास मैसेज आया है. मोहम्मद अंसारी साहब हैं, गुलाम साबिर राही साहब हैं, महराज जहाँ हैं और इन्होंने आज़ाद नगर हरिद्वार से हमें अपना ये लिख कर भेजा है संदेशा. अब अगला संदेशा जो है वो हमारे पास आया है जी ऊपरकोट बुलंदशहर से. मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान और इनके साथ पूरा का पूरा अब्बासी परिवार जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले संदेशे की ओर अगर हम अपना ध्यान जो है वो बढ़ाएं तो जी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा है, कपिल छिंपा है, ईशान छिंपा है और पूजा परिहार हैं इनके साथ. और एक आध संदेशा और पढ़ लेती हूँ फिर गीत जो है वो इंतज़ार कर रहा है लता जी की आवाज़ में. जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी हैं, एंजल हैं, सोनू हैं और पप्पी भाटिया हैं इनके साथ. फरुखाबाद से यूपी से ये आया है संदेशा. असलम मंसूरी साहब हैं और फहीम मंसूरी साहब हैं. मुझे लग रहा है मैंने मैसेजेस तो काफ़ी सारे ले लिए हैं, अब आप अगर कहें तो एक बहुत खूबसूरत सा गीत आपकी नज़र में कर दूं. यहाँ पर एक, चलिए एक आ ही गया है, श्रीगंगानगर राजस्थान से. मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा चलिए पढ़ ही दूं. लालगिरी गोस्वामी जी हैं, हिमलता हैं, हिना हैं और हर्षित हैं इनके साथ और खुशी गोस्वामी हैं. और अब बारी है एक बेहतरीन से नगमे की, आइए मिलकर सुनते हैं इस नगमे को.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम मन भावन है और 3:45:55 हो गए हैं जी। आपको मैं बता दूं समय वैसे अभी है हमारे पास, तभी मैं आपको एक बार फिर से पता बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com इस पर आपको हमें अपनी फरमाइश भेजनी है। आज आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास दिन है, जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, या फिर कोई मांगलिक कार्य है, आपके घर में नन्ना मेहमान आया है, जो भी खुशी आपके पास है वो हमसे साझा कीजिए ना। और अगर आपका दिल उदास है तो भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें, आप हम आपके साथ हैं। सुरेश नारंग जी का हमारे पास ये संदेश आया है, सहारनपुर से आपने लिखा है। और सुरेश जी आपके साथ हैं, आशा नारंग हैं आपके साथ, और सोनाली हैं, और सैयद मसरूर साहब आपके साथ शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ये हमारे पास कहाँ से जी संदेश आया है, किदवाई नगर से कहीं से ये संदेशा है बिल्कुल। और नबी हसन अब्बासी साहब हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं, अनम जी हैं, इनके साथ सुहेल हैं, और रसीद वारसी साहब हैं। आपका भी संदेशा हमने पढ़ लिया है। और खंडवा से हमारे पास जगन्नाथ पटेल जी हैं, इनके साथ कमला जी हैं, उनके साथ अंतिम पटेल हैं, ज्योति हैं जी, शुभम हैं, और एक दो नाम और इन्होंने लिखकर भेजे हैं। देवी किशन हैं इनके साथ, भावना है, मनमानस हैं, और कनिका पटेल हैं। तो मुझे लग रहा है मैंने अभी पढ़ लिए हैं नाम, या आप कहें तो एक आध नाम और मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास जी संदेशा आया है मुंबई से, और हमारे हमें जो साथियों ने भेजा है इनके नाम अब मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अहमद भाई फूल वाले हैं, और दुखनी सदफ जी साहब हैं, ये जूही इकबाल हैं, इनके साथ इमरान साहब हैं, और इनकी जो बिटियां हैं इनका नाम आमना नसरीन है, ये हैं इनके साथ, और पूरा का पूरा जो फूल वालों की इनकी इनकी फैमिली है वो हैं। आपका घर तो महकता रहता होगा, है ना, फूलों से महकता रहता होगा। अगर आप फूलों का कारोबार करते हैं तो हाथ भी आपके फूलों से महकते होंगे, और जहाँ जहाँ आप जाते होंगे फूलों की खुशबू को मुझे लगता है साथ लेकर जाते होंगे। चलिए अब हमने नाम तो पढ़ दिए हैं, ऐसे हम पढ़ते रहेंगे तो फिर और बहुत सारे गीत हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए एक बहुत खूबसूरत गीत जो ज़िंदगी की कह सकते हैं कि कहानी कहता है, और यही सच है कि ज़िंदगी एक रास्ता है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए रास्ता बेहतरीन होता चला जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं।

साथियों, आपने महसूस किया है कि किस तरह से अभी कुछ समय पहले ही तो हमने 2026 का स्वागत किया और अब हम सातवें महीने में आ पहुंचे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि समय बहुत बहुत जल्दी निकल रहा है। और मैं तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ याद दिलाऊंगी कि जो कुछ आपने 2026 के शुरू में सोचा था करने का, क्या उसे शुरुआत कर दी है आपने, क्या आप उस कार्य के बीच तक पहुंच गए हैं या आपने अभी तक शुरुआत की ही नहीं है। भाई, अब तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने शुरुआत की ही नहीं है तो अभी भी 2026 हमारी मुट्ठी में है, आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं।

0: में संदेशा भेज सकते हैं। बेंगलुरु से भारत भूषण जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंजू श्रीवास्तव हैं आपके साथ, देवंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं और पौरुष हैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस के लिए। और एक और मैसेज आया है, संयम जैन है, मुस्कान जैन है और मास्टर जीवियम जैन है, ये कहाँ से भेजते हैं हमें? ये हमें संदेशा भेजते हैं जी दिल्ली के पास से ही, यानी मेरठ से हमें संदेशा भेजते हैं। और एक और संदेशा आया है, किशन वंजानी साहब, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। महाराष्ट्र पूना से हमारे पास ये संदेशा आया है, सुनील सर हैं, इनके साथ सुषमा है और राजवीर हैं, अनन्या गायकवाड़ हैं। और इन्होंने, सुनील जी ने लिखकर भेजा है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। यकीनन मैंने शुरू में ही कहा कि मॉनसून ने जो है वो दस्तक दे दी है। अब इस हसीन मौसम में बरखा रानी झूम कर आती है और इसके साथ साथ कई बार कम बारिश होती है, कई बार ज़्यादा बारिश होती है, तो ये तो चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन मौसम सुहाना है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मौसम सुहाना होता है हम तो खुश होते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ पेड़ पौधे भी खिल उठते हैं और कितना अच्छा मंज़र हो जाता है। चिड़ियों की बात करें, पंछियों की बात करें, हर कोई खुश हो जाता है, हर जीव खुश हो जाता है। तो इसी के साथ साथ एक गीत अब और सुनते हैं, सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग और सैयद मसरूर साहब। अब भी मैं, अब आपका जब ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैंने अभी अभी पढ़ा है, तो आप बार बार संदेशा ना भेजें, कई बार हमसे डबलिंग हो जाती है, फिर हमसे नाराज़ हो जाते हैं हमारे साथ ही। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे साथ जॉन डिकॉस्ट्रो हैं, रोजी डिकॉस्ट्रो हैं, पर्ल हैं इनके साथ और विलिस डिकॉस्ट्रो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी फरमाइश हमें लिख कर भेजी है। लेकिन दोस्त अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है किसी एक की फरमाइश ही हम तक, हम आप तक पहुँचा पाएंगे। और यासीन हाशमी साहब, मोहम्मद यासीन हाशमी साहब गंज ढुंडवारा से हमें लिखकर भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। और नजमा बेगम आपके साथ हैं और मोहम्मद तौसीफ आपके साथ हैं और मोहम्मद खलीम अंसारी आपके साथ हैं। मुझे लग रहा है अब एक गीत सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त भी हमें कह रहा है कि अब सीमा ये जो मन भावन की गाड़ी है इसे जरा सा स्पीड में कर लो। तो इस गीत को हमने चाहा कि आप तक पहुंचे, लेकिन मुझे लग रहा है ये गीत तैयार नहीं है आप तक पहुंचने के लिए। कोई बात नहीं, हम दूसरा गीत आप तक पहुंचाते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है गीतों के आगे कुछ डायलॉग्स आ जाते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सुनते हैं और फिर गाना सुनते हैं तो एक मोटे मोटे तौर पे जो कहानी है ना उसका अंदाज़ा हमें, यानी फिल्म की जो कहानी है उसका अंदाज़ा हमें हो जाता है ना।
1: फिर क्या हुआ?

इसी के साथ अपनी दोस्त सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए मन भावन कार्यक्रम संपन्न करने की। आप साथ रहिए गोल्ड 100.1 के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन से केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में काबो वर्दे को अतिरिक्त समय के 3-2 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार

4:11 और 6 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज। आइए साथियों, कुछ खूबसूरत फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने लाई हूँ। पहला गीत मिलकर सुनते हैं।

इस कव्वाली के बाद साथियों आइए अब अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ख्याल कैसे रखना है कि जब आप बाहर घर से निकलें तो ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास एक छतरी होना बहुत ज़रूरी है और अपने फुटवेयर का भी ख्याल रखिएगा। कई बार आपका जो फुटवेयर होता है जब वो गीला हो जाता है तो ख़राब भी हो जाता है। तो आइए अब इसी बात के साथ एक गीत और सुनते हैं और उसके बाद हम सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार।

0: ministerial category on a deputation basis. Eligible officers may apply in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility conditions, qualifications, experience requirements, and application forms available on the official website. Do refer to www.nepa.gov.in. I repeat, it is www.nepa.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में सुपरवाइजर के 12 पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, आयुध निर्माणी नालंदा की वेबसाइट munitionsindia.in। भारत सरकार का उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अधिकारी वित्त कुल 5 पद, अधिकारी मानव संसाधन 1 पद, अधिकारी चिकित्सक कुल 2 पद। बैकलॉग वरिष्ठ प्रबंधक सीसी लैब रिक्तियां 1, अधिकारी विधि विभाग 1 पद, सहायक अभियंता 5 पद, अभियंता विद्युत कुल 5 पद, वरिष्ठ अभियंता विद्युत कुल 5 पद, उपप्रबंधक 3 पद और अभियंता सिविल 2 पद। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अभियंता सिविल के 2 पद भी रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 23 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का अंक। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com के भर्ती अनुभाग पर जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन 1 पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की वेबसाइट www.girhfwt.org। आवेदन किए जा सकते हैं 19 जुलाई 2026 को शाम 5:15 बजे तक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
2: हेलो वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। And it's 4:30. It will be 4:31 now. So you're tuned to Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 MHz with Shagun Chopra and Vaishnavi. So we are very thrilled to begin our program.
1: जी शगुन, इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, श्रोताओं को यहाँ पे एक रोचक जानकारी दे चलते हैं।
2: Which is?
1: इस जुलाई में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से लाखों फुटबॉल फैंस अपनी फोन स्क्रीन में ही व्यस्त रहते हैं।
2: ओह यस।
1: और लेकिन इसी महीने का एक और शानदार घटना भी होने जा रही है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जुलाई का सबसे बड़ा शो किसी स्टेडियम या सिनेमा हॉल में नहीं बल्कि आपके सिर के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो रहा है।
2: That's weird. How? Well, even I can tell our listeners about that. I may act, I don't know, but I actually do know the best part. Every ticket, it is completely free. So listeners, cancel all your plans for these 5 nights in July. First, mark July 9th on your calendar. On this evening, dazzling Venus, the brightest planet in our sky. This will pass right next to Regulus, the brightest star in the constellation Leo. A brilliant planet and a brilliant star almost touching. So just look west after sunset. You can't miss it.
1: बिल्कुल शगुन, सोच के ही कितना खूबसूरत लग रहा है, तो देखने में कितना
2: विजुलाइज, राइट?
1: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, फिर ठीक 5 दिन बाद 14 जुलाई को आसमान आपको अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाएगा। इस दिन सुपर न्यू मून होगा, यानी चांद पूरी तरह से अदृश्य रहेगा और उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होगी। यही वजह है कि ये पूरी साल की सबसे बेहतरीन रात होगी, क्योंकि इस दिन आप अपने मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी आंखों से देख सकेंगे। अगर आप शहर की तेज रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं तो दक्षिणी आसमान में हमारी गैलेक्सी का चमकता हुआ केंद्र साफ दिखाई देगा, जहां 100 अरब से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं।
2: वाओ, मिल्की वे गैलेक्सी, वी विल बी एबल टू सी इट विद आवर नेकेड आईज। सो ऑन नाउ आफ्टर 14th ऑफ जुलाई, लेट मी टेल आवर लिसनर्स अबाउट जुलाई 16th एंड जुलाई 17th। वेल, वी शुड लुक वेस्ट अगेन। अ डेलिकेट crescent moon will glide right beside Venus, forming one of the prettiest pairings of the summer. The moon and the evening star shining together just after the sunset, and then then comes the grand finale. On the nights of July 30th and 31st, 2 meteor showers, they will peak at the exact time, the Delta Aquarids and the Alpha Capricornids. This raining shooting stars from 2 directions at once. All at once. A double meteor shower ending the month on a very beautiful note. Well, how can we wait for it? I can't.
1: जी बिल्कुल, मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब हम दोनों साथ में चल के देखेंगे।
2: We should actually.
1: जी बिल्कुल।
2: Okay. So, on this particular note, let's begin our program. Well, Vaishnavi told us about the news, discussion segment, Dateline India reports, capsules, tributes. There is so much that we will unfold today. We have planned it for you and we have lined it up for you. So let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi dedicates India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra, Rajasthan. Also inaugurates new terminal building of Jodhpur Airport.
1: गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया।
2: सेंटर इश्यूज नोटिस टू टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप ओवर वाइडस्प्रेड पायरेसी रिपोर्ट्स, आस्क्स टू सबमिट रिपोर्ट विद इन 15 डेज।
1: भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू।
2: IMD says southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 4 days.
1: और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा।
2: This is our discussion segment Dateline India. Well, it will be about International Day of Cooperatives. First, there is another topic as well. Mm-hmm. So let's begin with International Day of Cooperatives. Let's begin our discussion with that. Vaishnavi.
1: Shagun, agar main aapse kahun ki duniya ke sabse taakatwar business model mein se ek ka malikana hak arabpatiyon ke paas nahi balki aap aur mere jaise aam logon ke paas hai. क्या आपने कभी अपनी लोकल डेयरी कोऑपरेटिव के बारे में सोचा है जहां किसान हर सुबह अपना दूध बेचने आते हैं?
2: ओह राइट, एग्जैक्टली. सो दिस वेरी मॉडल इट गेव इंडिया द अमूल कोऑपरेटिव. दिस इज अ मूवमेंट दैट स्पार्क्ड इंडियाज वाइड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग आवर कंट्री फ्रॉम अ मिल्क डेफिशिएंट नेशन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. हाउ ग्रेट.
1: जी, और बिल्कुल सही कहा आपने. यहाँ फिर हम अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को ही ले लीजिए या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की उन महिलाओं को जो अचार मसाले या हैंडीक्राफ्ट बनाती और बेचती हैं. अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है.
2: And that's the very idea behind a cooperative. And when you were mentioning pickles and these spices, even papad, right? It tastes so good, right? And every year, on first Saturday of July, the world celebrates International Day of Cooperatives. The roots of this celebration, Vaishnavi, they go back to August 19 in the year 1895, when the International Cooperative Alliance was founded in London during the first Alliance Cooperative Congress.
1: 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 1895 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की शताब्दी के उपलक्ष्य में जुलाई 1995 के पहले शनिवार को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जाएगा.
2: वी शुड ऑल्सो टेल आवर लिसनर्स अबाउट दिस ईयर्स थीम. सो दिस ईयर्स थीम इज प्रीटी ब्यूटिफुल. Pretty and beautiful, International Day of Cooperatives. So, cooperatives for a peaceful world. This is the theme for this year, the year 2026. So, at first, peace and business may sound like two completely different things, don't they? But are they? Because peace isn't only about the absence of war. Peace also means trust. It means fairness. It means knowing that nobody, absolutely nobody gets left behind.
1: जी, और इसका मतलब ये भी है कि लोग साथ मिलकर बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं. और सहकारी समितियां यही काम करती हैं. पारंपरिक व्यवसायों के विपरीत, जहां निर्णय अक्सर निवेशकों द्वारा लिए जाते हैं, सहकारी समितियां लोगों को प्राथमिकता देती है.
2: एंड वैष्णवी, इफ एन इंडिविजुअल इज अ फार्मर, अ कंस्यूमर और समवन सीकिंग अफोर्डेबल सर्विसेज, you aren't merely a customer. You can actually become an owner. And this changes the dynamic completely. When people own an enterprise together, they also share a responsibility.
1: बिल्कुल सही कहा आपने शगुन. जो सहकारी समितियों के जो लोग होते हैं, वे चर्चा करते हैं, मतदान करते हैं, समाधान निकालते हैं और आखिर में सब मिलकर आगे बढ़ते हैं. ये लोकतंत्र है, ना सिर्फ संसद के अंदर बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में भी. आइए आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ. गांव में डेयरी किसानों का एक समूह होता है जिसमें हर किसान के पास कुछ ही गाय हैं. अकेले अकेले उन्हें सही कीमत पर मोल भाव करने में मुश्किल होती है, इसलिए वे एक साथ आते हैं, दूध इकट्ठा करते हैं, उसे मिलाकर प्रोसेस करते हैं, एक भरोसेमंद ब्रांड को बेचते हैं और मुनाफे को सही तरीके से आपस में बांटते हैं.
2: वेल, दिस एक्सप्लेन्स अ लॉट. एंड इफ यू टॉक अबाउट वन फार्मर, one farmer alone had limited bargaining power, but thousands of farmers, if they come together, they build one of India's greatest success stories, and that is the strength of cooperation. Or if you think about a group of women in a village, they start making pickles, spices, papad, handcrafted products as well, and working alone they will reaching the customers, it's actually difficult. And if they work together, they purchase raw materials at lower prices. Then they can divide their responsibilities. They can build a brand and then earn much better incomes.
1: बिल्कुल. और शगुन, इसे हम देखें तो सिर्फ उनका व्यापार ही नहीं बढ़ता है बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. और शायद इसीलिए भारत ने हमेशा सहकारी संस्थाओं की ताकत को समझा है. डेयरी और खेती से लेकर बैंकिंग, हाउसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है.
2: वेल ट्रूली, लेट मी टेल यू हाउ. दिस इज एम्पावर्ड फार्मर्स

0: created livelihoods, strengthened rural economies, and also ensured that development reaches people at the grassroots. So at the heart of every cooperative lies the very simple belief, people are stronger together than being alone. And now here's something interesting that I would be mentioning. Members in cooperatives, they contribute financially according to their capacity. And then, Vaishnavi, they collectively decide how the surplus should be used then.
1: इसका इस्तेमाल कोऑपरेटिव को बढ़ाने में, सदस्यों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में और मुश्किल समय के लिए कोई सुरक्षा फंड बनाने में होता है। ये फैसला सदस्य खुद लेते हैं। सफलता सिर्फ मुनाफे से नहीं मापी जाती, ये इस बात से मापी जाती है कि कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है।
0: Well, this model, it matters more than ever. The world is witnessing rising inequality, social divisions, declining trust, but cooperatives, they come to rescue. They offer a different path, a path where competition doesn't eliminate cooperation. And the numbers, they tell an incredible story. More than 12% of humanity is associated with one of the nearly 3 million cooperatives across the globe. 3 million.
1: बिल्कुल और दुनिया की 300 सबसे बड़ी सहकारी और म्यूचुअल संस्थाएं मिलकर हर वर्ष 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार करती है और शायद सबसे खास बात यही है कि सहकारी संस्थाएं लगभग 280 मिलियन लोगों को नौकरी देती है यानी कि दुनिया में काम करने वाले हर 10 लोगों में से लगभग एक व्यक्ति को ये एक वैश्विक ताकत को दर्शाता है शगुन
0: So India proudly stands among the countries where the cooperative movement has become a pillar of inclusive growth and perhaps that's the real message of the United Nations theme this year. A peaceful world isn't built only by governments. So listeners, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation with Devendra Sura, who has been working towards tree plantation and environmental conservation.
2: जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ साथ में रखो थैला क्यों करे हम राष्ट्र को मैं ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ
0: So to listen to this conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. This will also be brought, in case you miss it, it will also be broadcast tomorrow morning at 10:30 a.m. So now we will be... doing the actual work, the parikrama, right? We will find out what our correspondents have lined up for ourselves, for us and for our listeners.
1: मिथिला की सदियों पुरानी वैवाहिक परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाली विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभा एक बार फिर सज गई है इस साल 2 जुलाई से शुरू हुई सभा में बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में वर और कन्या पक्ष पहुंच रहे हैं आखिर क्या है ये अनूठी परंपरा और क्यों आज भी सदियों पुरानी व्यवस्था लोगों के विश्वास का केंद्र बनी हुई है आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में
4: आषाढ़ की दस्तक के साथ मधुबनी जिले के सौराठ गांव में हर साल एक ऐसा अनोखा समागम सजता है जहां न बैंड बाजा होता है न शहनाइयां गूंजती हैं फिर भी जीवन भर के रिश्तों की नींव रखी जाती है जिले के रईका प्रखंड स्थित सौराठ सभा परिसर में हर साल आयोजित होने वाले सभा में मैथिल समाज के लोग मूल गोत्र और वंशावली के आधार पर वैवाहिक संबंध तय करते हैं सभा सजते ही अब तक 7 सिद्धांत लिखे जा चुके हैं और पंजीकारों के पास लगातार वर और कन्या पक्ष से लोग पहुंच रहे हैं इस साल मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर बेगूसराय पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंच रहे हैं सौराठ सभा पंजीकार प्रमोद कुमार मिश्र कहते हैं
5: ये पंजीकृत जो है वो जेनेटिक विज्ञान 14वीं सदी में जो डेवलप किया तो 7 जनरेशन का जीन का व्यवस्था दिया जो 7 जनरेशन तक जीन का असर रखता है लेकिन हमारे पूर्वज से बहुत पहले इसका व्यवस्था दे चुके हैं तो पितृता सप्तमम के जे तो मातृता पंचमम के जे यानी पितृकुल के जो 7 जनरेशन है और मातृकुल के जो 5 जनरेशन है मध्य का जो संबंध है एक रक्त संबंध में है हम लोग वो एक रक्त संबंध वैवाहिक संबंध नहीं करना चाहते हैं नहीं करते
4: तेजी से बदलते दौर में जब विवाह की परंपराएं नया रूप ले रही हैं, सौराठ सभा आज भी मिथिला की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बनी हुई है। परिक्रमा के लिए आकिल हुसैन के साथ निधिश्री की रिपोर्ट।
0: Now let's find out about Goa. So the Goa government has started the application process for the post-matric scholarship scheme for scheduled tribe students for the academic year 2026-27. The scheme supports students from class 11 up to post-graduation. We'll find out more details from our correspondent.
6: The post-matric scholarship scheme aims to support scheduled tribe students in continuing their higher education with financial assistance. Eligible students studying from class 11 to post-graduation who are residents of Goa and belong to scheduled tribe category can apply. The annual family income should not exceed 2.5 lakh. The entire application process is online through scholarships.gov.in. Both fresh and renewal applications are accepted and students can also apply through common service centers if required. Under the scheme, students receive financial support in the form of scholarships and fee reimbursement depending on their course, helping reduce the financial burden of higher education. The scheme is expected to benefit a large number of ST students in Goa, helping them continue their education with greater confidence and reducing financial barriers to learning. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani Parji.
1: और अब हिमाचल की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। प्रदेश के 8 और पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है और अब हिमाचल की GI टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर कुल 17 हो गई है। इनमें सिरमौरी लोहिया की GI को GI टैग मिलना खास तौर पर सिरमौर जिले और गिरपार क्षेत्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सिरमौरी लोहिया भेड़ की ऊन से हथकरघे पर तैयार किया जाने वाला पारंपरिक ऊनी वस्त्र है। अपनी गर्माहट, मजबूती, टिकाऊपन और पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध ये लोहिया वर्षों से सिरमौर, विशेषकर गिरिपार क्षेत्र के जनजीवन, लोक संस्कृति और पहनावे का अभिन्न हिस्सा रहा है। GI टैग मिलने से सिरमौरी लोहिया की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा और नकली उत्पादों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय बुनकरों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग बढ़ने से रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार से इसके व्यापक प्रसार, ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, ई कॉमर्स से जोड़ने, शिल्पकारों के कौशल उन्नयन और युवाओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह किया है। साथ ही सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों का भी वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से GI पंजीकरण दिलाने की मांग की है। निश्चित तौर पर सिरमौरी लोहिया को GI टैग मिलना केवल एक उत्पाद का सम्मान नहीं बल्कि पूरे सिरमौर और गिरिपार की सांस्कृतिक असीमता, पारंपरिक ज्ञान और लोक कला की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
1: देश के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात का सीमावर्ती जिला कच्छ अब केवल अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं बल्कि तेजी से विकसित हो रही हवाई संपर्क सुविधाओं के लिए भी नई पहचान बन रहा है। औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में औद्योगिक विकास, पर्यटन और व्यापार को नई गति देने में भुज हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में हवाई अड्डे पर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास और देश के प्रमुख महानगरों से बढ़ती हवाई संपर्क व्यवस्था ने इसे जिले के विकास का एक प्रमुख आधार बना दिया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भुज हवाई अड्डे के निदेशक नवीन कुमार सागर ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और सहज यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक नई पहल की गई है।
9: भुज एयरपोर्ट जो है इस जिले के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों में औद्योगिक क्रांति जिस तरीके से क्षेत्र में आई है और साथ ही साथ जो पर्यटन का विकास जो हुआ है वो एक अभूतपूर्व है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के पेश हुआ है। 2047 में हम जो है साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने, उसके लिए भुज को नामित किया गया। यहाँ पे मेजर आप कह रहे हैं टर्मिनल रिकन्फ्यूगरेशन शुरू हुआ, जिससे खत्म होने के बाद अब उसको 31 जुलाई की हमारे इंजीनियर से डेट दी है, तो उसके बाद हमारी टर्मिनल कैपेसिटी जो पैसेंजर के लिए है वो दुगनी लगभग हो जाएगी, 540 अभी है और वो 1200 यात्रियों को सहजता से प्रति घंटे आवागमन करवा सके।
8: कच्छ में तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश, बंदरगाह आधारित विकास, ऊर्जा परियोजनाओं और पर्यटन के विस्तार को देखते हुए आने वाले वर्षों में भुज हवाई अड्डे का महत्व और बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर हवाई संपर्क न केवल निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन देगा बल्कि सीमावर्ती जिले के समग्र आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
10: इन टुडेज एपिसोड वी पे आवर ट्रिब्यूट्स टू पैट्रियट सेंट स्वामी विवेकानंद who died on the 4th of July 1902. His vast knowledge of Eastern and Western culture, as well as his deep spiritual insight and broad human sympathy, made an irresistible appeal to humans across the world who came in contact with him. At the Parliament of Religions held in Chicago in 1893, Swami Vivekanand represented India and its cultural heritage.
11: I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth.
12: Through his mission of interpreting India's spiritual culture, especially Vedantic philosophy, Swami Vivekananda inspired the Indian national consciousness. He enriched religious consciousness through the rational and humanistic teachings of the Vedanta philosophy. His mission was both national and international. A lover of mankind, he strove to promote peace and human brotherhood.
10: Swami Vivekananda organized the Ramakrishna Order of Monks, which is the most outstanding religious organization of modern India.
12: Swami Vivekananda once spoke of himself as a condensed India. In the course of a short life of 39 years, he left for posterity his four classics, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga and Raj Yoga. Salutes the great patriot saint Swami Vivekananda.
10: We also remember Gandhian freedom fighter Pingala Venkaiah, who died on the 4th of July 1963. India's national flag is based upon his design, which Pingala Venkaiah first presented to Mahatma Gandhi in 1921.
12: Pingali Venkaiah was born on the 2nd of August 1876 in Krishna district of Andhra Pradesh. He served as a soldier in the British Army in South Africa during the Anglo-Boer War in Africa, where he first met Mahatma Gandhi. He was 19 when the meeting took place and formed an association which would last for more than 50 years.
10: Pingala Venkaiah met Gandhiji once again in Vijayawada and showed him his publication with the various designs of the flag. Acknowledging the need for a national flag, Gandhiji then asked Venkaiah to design a new flag and present it at the National Congress meeting in 1921. Initially, Venkaiah came up with red and green colors, but it later evolved with saffron color, a spinning wheel at the center, and a third color, white. The flag was officially adopted by the Indian National Congress in 1931.
12: In 2009, the Government of India issued a stamp to commemorate him. In 2015, the All India Radio Vijayawada station was named after Pingali Venkaiah. We pay tribute to the great nationalist.
10: We also remember independence activist Hemant Kumar Nayak, who died on the 4th of July 1932. A resident of Medinipur, West Bengal, Hemant joined a large gathering in his hometown to celebrate the All India Prisoners' Day on 4th of July 1932. Despite permission from the authorities, the police forcefully declared the meeting unlawful and tried to disperse the gathering. When the people refused to disperse, the police opened fire, killing many people on the spot, including Hemant Kumar Nayak. We salute the brave martyr.
1: आज पुण्यतिथि है धन सिंह गुर्जर की। सन 1857 में आज ही के दिन मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 10 मई 1857 को जब मेरठ से क्रांति की पहली चिंगारी भड़की तो धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों के खिलाफ जनता को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी और मेरठ से लेकर दिल्ली तक क्रांति की आग फैलाने में मदद की थी।
0: We'll now tell you about H.K. Venkatram, distinguished violinist who has accompanied several artists and a respected teacher rooted in the Gayaki tradition and a top-graded artist in the All India Radio. Venkatram has made his mark through ensemble.

आजी के दिन वर्ष 1982 में हिंदी सिनेमा के संवेदनशील और कालजयी गीतकार भरत व्यास का निधन हुआ था। ए मालिक तेरे बंदे हम, जिसे अमर प्रार्थना रचने वाले भरत व्यास ने अपने रचनात्मक सफर में 100 से अधिक फिल्मों के लिए 2000 से भी अधिक गीत लिखे थे। आइए आपको सुनाते हैं भरत व्यास का एक गीत।

0: Today, we're also remembering Marie Curie. Well, Polish and naturalized French physicist and chemist, she shared the 1903 Nobel Prize in Physics with her husband, actually, Pierre Curie, for their joint searches on the radioactivity phenomena discovered by Professor Henri Becquerel. The first woman to win a Nobel Prize, the first person to win a Nobel Prize twice, and the only person to win a Nobel Prize in two different scientific fields.
1: 4 जुलाई 1916 को हिंदी सिनेमा की पहली ब्यूटी क्वीन और अपने दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली नसीम बानो का जन्म हुआ था। 1930 और 40 के दशक में उन्होंने पुकार, खून का खून, अनोखी अदा और शीश महल जैसी फिल्मों में अपने प्रभावशाली अभिनय से अलग पहचान बनाई थी। उनकी खूबसूरती और सशक्त अभिनय के कारण उन्हें भारतीय सिनेमा की शुरुआती महिला सुपरस्टार्स में गिना जाता है। वे प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरोबाना की माँ थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: Well, with this, won 3 Grammy Awards out of 9 total nominations. He largely stopped performing and recording in the mid-1980s, citing burnout and also conflicts with record company executives. But his songs, they are just amazing to listen to.
1: और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और शगुन को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
2: मीडियम व्यू 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, धरहोरा, चंदौरा, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, कनकपुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कासाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटापानी, श्रीटोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर, उदरा झरिया, साजा पानी, सोनार पहरी, बर्नी झरिया, सोनगेरसा, बीजा घाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 111 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गठघोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड़, ताराझर, डडईपानी, होलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए हम आपको बताएं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती आप सुनेंगे रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा पंडित अर्नब चटर्जी का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आज की युववाणी होगी छत्तीसगढ़ी में। इसमें अपन गोठ में चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। साथ ही सुनेंगे क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे परमानंद करियारे और साथी। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर आप सुनेंगे परसराम यदु और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी गीत। 7:21 पर होगा किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें आप सुनेंगे आज की बात, ए माह के उद्यानिकी कार्य। किसानवाणी में आप सुनेंगे आज की सलाह, स्थायी उन्नत कृषि के कार्य, जल संचयन एक उपाय। इस विषय पर सलाह देंगे डॉक्टर रविश केशरी। इसके अलावा होगा आज का प्रश्न और छत्तीसगढ़ी गीत। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। और अब कल के प्रमुख कार्यक्रम। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे कल शाम 7:30 से। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। जिले की चिट्ठी में कल शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सूरजपुर जिले की चिट्ठी। कल शाम 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात में आप सुनेंगे किशोर न्याय अधिनियम एवं महिला संबंधी अपराध विषय पर सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती उषा किरण वाजपेयी से ली गई भेंट वार्ता। यह आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति होगी। कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुनिएगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। कल सुबह 8:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम किसलय। इसमें बच्चों की डायरी में चर्चा का विषय होगा सदाचार की शिक्षा। क्रम नवांकुर में आप सुनेंगे स्पेस किड्स इंडिया के मिशन शक्ति सेंट के लिए चयनित कुमारी महिमा राजपूत से धीरेंद्र गिरी गोस्वामी की बातचीत। साथ ही सुनिएगा क्रम बच्चों के मुख से और प्रेरक प्रसंग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: मिलजुल के हाथ बढ़ाबो, विकास के रद्दा बनाबो, सहकारिता के जोत जला के नवा बिहान सजाबो, एकता के बलमा बस्थे समृद्धि के हर सपना, युववाणी ले गुंजत है आज सहयोग के अपन सपना। युववाणी के संझा आप जम्मो तीर मैया के गोट करे खातिर मैं हूँ अमित कुमार साहू,
1: असंग में मैं हूँ दामिनी सेन। आप जम्मो श्रोता संगवारी में हमर दोनों जगह जय जोहार। आज सहयोग के दिन आए अमित,
0: माने
1: आज विश्व सहकारिता दिवस आए।
0: ये बात के मोला सुरता है संगी।
1: हाँ?
0: हर बछर जुलाई के पहली शनिचर के दिन विश्व सहकारिता दिवस मनाया जाते।
1: हाँ हाँ।
0: और ए दिन हमन एक ऐसन भावना के सम्मान करथन जेन समाज ल जोड़थे।
1: हाँ?
0: विकास के रद्दा दिखाथे।
1: हाँ?
0: और जम्मो ल संग लेके आगू बढ़े के सीख देते।
1: हाँ?
0: यही भावना आए सहकारिता।
1: सिर तो नमित, सहकारिता के मतलब सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक दूसर के हाथ पकड़ के सुख दुख में संग दे के मिलजुल के बूता करना है। आज विश्व सहकारिता दिवस आए, जब मैं के जगह हम आ जाते ना तो विकास के नवा कहानी घलो लिखा जाते।
0: हमर छत्तीसगढ़ में सहकारिता के परंपरा बहुत प्रचलन है संगी।
1: हाँ?
0: मन ला हर जिनिस की सुविधा पहुंचाए बर सहकारी संस्था मन के योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहते।
1: हाँ?
0: ये व्यवस्था ले किसान मन मजबूत होते।
1: हाँ?
0: और गांव के अर्थव्यवस्था घलो सुदृढ़ बनते।
1: पोर्ट केस, आज के बेरा में सहकारिता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। महिला स्व सहायता समूह, दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज, बचत समूह, हस्तशिल्प और नान्हे नान्हे उद्योग में घलो सहकारिता की भूमिका लगातार पढ़ा जावत है।
0: संगी हो।
1: हाँ?
0: ये बात ला सुरता रखो।
1: हाँ?
0: अकेला मन के जेन बूता ला कठिन समझते।
1: हाँ?
0: उही काम ला समाज मिलजुल के बहुत आसानी ले पूरा कर लेते।
1: हाँ?
0: यही सहकारिता के असली ताकत आए।
1: एक सुग्घर कहावत है, एक लकड़ी आसानी ले टूट जाते, फिर उही लकड़ी के ढेर ला तोड़ना आसान नहीं है। यही संदेश सहकारिता हमला देवत है, एकता में ही शक्ति है।
0: भारत के गांव-गांव में सहकारी संस्था मन लाखों परिवार की जिंदगी बदलत है।
1: हाँ?
0: आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विश्वास बढ़ाए बर इखर बहुत बड़का योगदान है।
1: छत्तीसगढ़ के किसान मन के अंधियारी जिंदगी में अंजोर गांव के तरक्की और समाज के विकास में सहकारिता एक ठोसा आधार है मन के सामने आते। जब जम्मू मिलजुल के कार्य करते तो सफलता अपने आप मिलते ना।
0: आज विश्व सहकारिता दिवस के अवसर में।
1: हाँ?
0: आओ सब हम परण लेवन।
1: हाँ?
0: संकल्प लेवन कि अपन गांव।
1: हाँ?
0: अपन समाज, अपन देश प्रदेश के विकास बर सहयोग के भावना ला हमेशा जिंदा रखबो।
1: एक दूसर के सम्मान करबो, विश्वास बनाबो, मिलके काम करबो और आत्मनिर्भर भारत सुघर छत्तीसगढ़ के सपना ला साकार करबो।
0: संगवारी हो, कही थे कि एक झन ले काम शुरू हो सकते।
1: हाँ?
0: फिर पूरा तभी होते जब सबो के हाथ जुड़ जाते।
1: हाँ?
0: यही भावना आज के दिन के सबले बड़े संदेश आए।
1: सिर्तोन के समित, मनखे ले जब सिर्फ अपन बर नहीं बल्कि समाज बर सोचते ना तो उन्हें ले बदलाव के शुरू हो जाते। एक दूसर के भरोसा, अपनापन और संग साथ के हर मुश्किल के रद्दा घलो आसान हो जाते।
0: हमार छत्तीसगढ़ के माटी में संगे संग काम करके परंपरा बहुत जुन्ना है दामनी।
1: हाँ?
0: चाहे रोपा बियासी हो, घर बनाए के बूता हो।
1: हाँ?
0: या गांव के कोनो सम्मिलहा काम।
1: हाँ?
0: गांव भर के लोगन एक परिवार का जुड़ जाते।
1: हाँ?
0: यही हमर असली पहचान है।
1: असल में जब जम्मू मन अपन अपन अनुभव, मेहनत और जिम्मेदारी ला साझा करते ना अमित, तो सिर्फ एक काम पूरा नहीं हुआ बल्कि आपसी भरोसा घलो मजबूत होते।
0: आज के बेरा में युवा मन पर घलो संदेश बहुत जरूरी है।
1: हाँ?
0: एक दूसरे ले सीखना।
1: हाँ?
0: मिल के नवा सोच ला आगे बढ़ाना।
1: हाँ?
0: और अपन गांव समाज के तरक्की में भागीदार बनना।
1: हाँ?
0: यही सफलता के सही रद्दा आए।
1: सिर्तोन अमित, सुरता रखो, एक दिया ले दूसर दिया जलते, फिर उजाला कम नहीं हुए और बढ़ा जाते। ठीक वैसने ढंग दे जब एक मन के दूसर मन के हाथ ला थामते ना अमित, तो विकास के उजार घलो चारों कोती फैल जाते।
0: सिर्तोन आवाओ, आज हम सबो ये प्रण लेवन कि भेदभाव ला छोड़ के।
1: हाँ?
0: अपन गांव, अपन समाज और अपन प्रदेश पर संग संग काम करबो।
1: हाँ?
0: काबर की सबो के तरक्की में ही अपन तरक्की छुपे हवे।
1: यही भावना के संग एकता, भरोसा और अपनापन के संदेश घर घर पहुंचावन। काबर की जब मन जुड़ते तो समाज जुड़ते, और जब समाज जुड़ते तो विकास के नवा इतिहास बनते। कहते ना, सहयोग के सुर गुंजे हर गांव हर द्वार, मिलजुल के मेहनत ले चमके जिंदगी संसार। युवा संगवारी मल्ल आज देवत हन संदेश, सहकारिता के बनही मजबूत हमर छत्तीसगढ़ देश।
0: दामनी।
1: हाँ?
0: गोड़ बात तो होते रही।
1: हाँ?
0: फिर सुन लेथन सुग्गर अकन माटी के गीतला।
1: हाँ?

0: संगवारी हो, अभी आप में सुनत रहो सुघर अकन माटी के गीत ला, जिला अपन सर में सजारी से बेहतर राम साहू और साथी मना।
1: और जिला सुने पर चाहे दुर्गा चौक रायगढ़ ले गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी, राम दुलारी मन अउ पलारी छत्तीसगढ़ ले प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस, यशस्वी वर्मा मन, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खडसे अउ विनोद खडसे मन, खैरागढ़ ले देवेंद्र महोबे, अमरदीप महोबे मन, खल्लारी भीमखोद ले जी एल साहू अउ सरोज छोटी पिंकी मन, अउ बागबहरा छत्तीसगढ़ ले पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन मन, बिलाईगढ़ ले रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन मन, अउ संगवारी मन सुने पर चाहरीन है रोहांसी ले मुकेश साहू, नंदनी मनीष मयंक साहू मन, लालपुर ले कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, निशान ध्रुव मन, डोंगरगांव राजनांदगांव ले राष्ट्रपाल गजभीय, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभीय मन, अउ सुंदरपारा रोहांसी ले डगेसर साहू, घनश्याम गौरव, नूतन साहू मन, अउ दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, अउ संगे संग भदरसी ले घनाराम सेन, गीतेश, दीपेश, निर्मला सेन मन।
0: संगी हो, आज बड़ मयारुक दिन है सनिच्चर, जेमा हमन आप संगी संगवारी मन के अंतस के गोट ला पढ़थन, माने ओखर जौन मयाद बुला रहे थे ओला हमर तीर अपन पाती ले पठोते, जेला हमन अपन क्रम आप मन के चिट्ठी में पढ़थन। तो संगी हो, आज सनिच्चर है, तो चल झटकुन शुरू करथन क्रम आप मन के चिट्ठी।

0: दामनी
1: हाँ?
0: तोर हाथ में सुग्घर सुग्घर पाती दिखा थे
1: हाँ?
0: तो झटकुन पड़ डर भाई कौन कौन साथी कहाँ ले अपन पाती ला पठो है
1: संगवारी मन भेजे है गणेश धाम परसू लीले जितेंद्र मानीपुरी मोती जय देवेश अनमोल दास मानीपुरी मन संगवारी मन कहा थे 20 जून सनिचर के हमला युवानी कार्यक्रम सुने बर मिलिस जिला प्रस्तुत करता रीस हावे नीलेश साहू और प्रांजल सिंह जेमा हमला विश्व सहकारिता के दिवस के बारे में जाने बर मिलिस दुनिया भर में कतको कन ऐसे मनखे है जेला हमन अपन देश अपन घर द्वार ला जबरन छोड़ के जाए ला पड़ते अपन पेट रोजी बर फिर अपन संस्कृति अपन माटी महतारे ला कभू नहीं भुलाए और संग में सुने बर मिली से माटी के सुघर सुघर गीत ला जेला सुन के मन हा गदगद हो जाते सुघर प्रस्तुति बर नीलेश साहू और प्रांजल सिला गाड़ा गाड़ी बधाई कहा थे
0: बड़ सुघर पाती पठो है संगवारी
1: हाँ
0: संगी हो हंसी के फुहार हा जिंदगी में माया की रस घोल देते
1: हाँ।
0: हंस के गोठियाए ले जम्मो दुख ला किच मोल देते
1: हाँ हाँ।
0: दुनिया के झंझट ला छोड़ हंस के गोठिया ले और ताना बाना तो लगेच रही पर के चिंता विसरा दे
1: सिर तो माँ
0: संगवारी हो पेट रोजी भर बूता करना जिंदगी के नियम आए एकर भर संगवारी मन गाँव ला छोड़ के जाते
1: हाँ।
0: फिर वोला अपन माटी के महक ला नहीं छोड़े जैसे तीस तिहार के बेरा आते उही मनखे अपन गांव कोती खचित चले जाते काबर की सबला अपन माटी ले मया होते यही रिकीम ले 20 जून शनिवार के दिन दू जन कंपियर संगवारी नीलेश साहू और प्रांजल सिंह सुग्घर सुखर माटी के गीत सुनावत रहिन कहा थे
1: हाँ हाँ।
0: तो ये पातीला रेडियो के माध्यम ले दोनों संगवारी ला हमन पठोवा थन और अतिक सुघर पाती बर अंतस ले धन्यवाद घलो देवा थन हम आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही संगवारी तो हमरा मन के गोड़ बात तो चलते रही
1: हाँ
0: फिर पुनः सुन लेते हमन सुग्घर अकन माटी के गीत ला
1: सिरतोन में

बस्तर ले महिलाओं को तोर पर टिकली माला फुंदरी रायगढ़ देवो नांग मुरी कर धन पहचन यो मुंदरी बस्तर ले महिलाओं

0: संगवारी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिला पंसर में सजारे से पंचराम मिर्जा कुलवंतीन बाई हा।
1: औ एला सुने पर चाहरी से चांदनी चौक गंडई पनरिया ले पवन कुमार सेन प्रभादेवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन मन हा। औ परसा टोला ले ओम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र तुसारणी मसिया मन हा। दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा मन हा। आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल अजीत आयुष नंदिनी जंघेल मन हा। धरसीवा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव सीता अर्चना अरुणा मन हा। आउ अनुराधा अल्पना यादव इकबाल कुर्रेसी रानू खुशी प्रवीण कुमार साहू मन हा। दुर्गापारा संतोषी नगर ले छन्नूलाल पुष्पलता अर्पिता अनुराग मन हा। औ संगे संग बलदाऊ राजेश्वरी आस्था यादव अभिषेक अभिनव यादव मन हा। पुतली कला कंवर्धा ले राधेश्याम पांडे विनय विनय शंकर नयन शुमांशु पांडे मन हा। कोरासी भैंसा रायपुर ले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू मन हा। पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल मन हा। कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव मन हा। सह मांगलगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी मन। देवर बिजारा बेरला ले दिनेश देवांगन सृजन देवांगन रूपेश राजपूत मन हा।
0: अमित तोर हाथ में तो बिकट अंग पाती है दिखा थे, अब झटकुन बता डा कि कौन संगवारी कहाँ ले पाती भेजे हवे।
1: मोर हाथ में जिन पाती है ना संगवारी, वो आए ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन हा भेजे है। लिखे हैं कि ठंडा ठंडा हवा चले पीपर के छाँव मा रुख राई है ये हमर धरती के सुघर श्रृंगार मा। 30 जून दिन मंगलवार के हमन ला युवाणी कार्यक्रम सुने पर मिलिस जेला प्रस्तुत करत रहीस हवा ऋषभ देव साहू और सुमित तिवारी जेमा गोड बात के संग युवाणी कार्यक्रम के शुरुआत हुई। जेमा हमन ला युवाणी कार्यक्रम में सवाल जवाब अंग 236 के प्रश्न के उत्तर सुने पर मिलिस और संग मा श्रोता संगी मन के ईमेल और चिट्ठी ला ज्यादा ले ज्यादा शामिल करिन और संग मा हमन ला अगला अंग 237 के प्रश्न बताइस और संग मा माटी के सुघर सुघर गीत सुने पर मिलिस। ये जम्मो कार्यक्रम हमन ला बने लागिस कहा थे और सुघर प्रस्तुति बर ऋषभ देव साहू और साथी सुमित तिवारी ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा थे और यही संग में पाती पठोए है ग्राम सलोनी राजनांदगांव ले पुरानी ग्राम साहू सीताबाई प्रियांशु गौरव साहू मन हा। कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरजभान साहू कमलाबाई साहू मडोदा जालबांधा जिला खैरागढ़ ले पारक दास साहू किरण सोनू रेशमा गुनीता साहू मन हा। मही दही साजा ले बेमेतरा ले हेमलता साहू देव विशु विभु साहू मन हा। ग्राम देवर बीजा बेरला जिला बेमेतरा ले दिनेश देवांगन सृजन रूपेश देवांगन मन हा। पोटिया कला दुरुग ले संजय साहू सुजाता ससांग सीमा साहू मन हा। पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता और ग्राम भड़गा कोदवा गोड़ान ले श्याम सिंह मरावी रानी रजनी पूजा मरावी मन हा। और कोई ग्राम भंगी टोला ले ननकाराम धुवे जमुना बाई फिरत राम मालती धुवे मन हा।
0: संगी हो, ज्ञान है अंधारी कुरिया में दिया कस आए। जब मनखे करा सही ज्ञान नहीं रहा है तब कोनो तब तक ओला बने करुछ फरक नहीं समझ आए। काबर की बिना ज्ञान के मनखे है बिना पूछ के गर्व कस बरोबर आए। ज्ञान है हमार सोच ला बढ़ कर थे और रुपया पैसा धन ला चोर है चुरा सकत थे मंझनिया ओह सिरा सकत थे दिया नदिया में बोहा सकत है। फिर ज्ञान ज्ञान ऐसन धन है जला कभू कोनो नहीं चोरा सके। हमार छत्तीसगढ़ में एक बड़ सुग्गर कहावत है बैठे बाके उदीम हा खाके, माने बैठे बैठे कोनो काम नहीं हुआ मेहनत करे ले कतको बड़का ले बड़का बूता चुटकी में पूरा हो जाते। अतेक सुग्घर पाती पठोवे ते खबर अंतस ले धन्यवाद। रेडियो के तेले नीलिमा साहू तृप्ति भारती ला बधाई पठोवाथन। आगू घलो आपके पाती के अगोरा रही। अमित अव कौन पाती भेजे संगवारी मना?
1: ये भेजे हवाए चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन मन हा।
0: का कहते संगी मना?
1: एमन कहा थे कि मनखेला आज के बदलती दुनिया में जगह जगह काम खोजे के जरूरत नहीं है। नौकरी खोजे के तको जरूरत नहीं है, बस मन में लगन होना बड़ जरूरी हवा। काम की कमी बिल्कुल नहीं है। दुनिया में अपन परिवार के पालन पोषण करे खातिर खुद ला आगे आए के जरूरत हवे। कतेक सुघर शिक्षा और ज्ञान के गोट करत आयरिस हमर युवाणी मायूरी संगवारी मन हा नीलिमा साहू और तृप्ति भारती है। और सूक्ष्म और लघु उद्योग विषय में बड़ सुघर गोट बांध करीस है और संग माँ हमला आप मन के चिट्ठी कार्यक्रम के सुघर माटी के गीत घलो सुने पर मिलीस है। ये दिन सुघर प्रस्तुति कार्यक्रम पर नीलिमा साहू तृप्ति भारती ला गाड़ा गाड़ा बधाई कहा था वह। हाँ, अब तृप्ति ला तो गाड़ा गाड़ा बधाई हम कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। एक ठन आउ पाती हवा हमर मन करा जेमे संगी मन लिखे हवय देखत देखत आधा बछर सिरा जाथे और नवा दिन और रात आ जाथे कतेक सपना पूरा होगे और कतेक पाछू सिरागे ऐसे उमन कहत हवे बाँचे दिन में अब्बड़ मेहनत करना है नवा रद्दा में आगे बढ़ना है काबर समय के चक्का कभू नहीं सके बस अपन कर्म ला गढ़ना है। बहुत सुंदर विचार रखे हवे तो संगवारी हो अपन ऊपर विश्वास रखाओ और अपन बूता ला निरंतर बिना रुके करत रहो और संग में आप मन ला अपन ज्ञान के बढ़ोतरी घलो होइसे और सुग्घर माटी के गीत सुने बर मिलिस अतेक सुग्घर पाती पठे होकर बर अंतस ले धन्यवाद आगु घलो आपके पाती के अगोरा रही।
0: बड़ सुग्घर लागे संगवारियो आप मन के मया भरे पाती ल पढ़ के आपो मल्ला घलो बने लागिस होई अतेक सुग्घर हमर तीर अपन पाती ल पठोया आगु घलो आप मन के पाती ऐसने पठहु तेखर ओखर बर हमर पता तो चाहिए ना तो हमर पता है क्रम आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पोस्ट बॉक्स नंबर 97 पिन कोड 4920001।
1: और जेन संगवारी हा हमला ईमेल के माध्यम ले ईमेल करना

0: भात है त ओकर हम ओकर बर हमर ईमेल पता है aiyouth9@gmail.com आउ कोड लगाए बर झन भुलाहु संगवारी हो हमर कोड हरे वाई एट तो आप मन के चिट्ठी
1: इहे तक।

0: दामनी
1: हाँ?
0: हमर छत्तीसगढ़ मा कहते ना
1: हाँ?
0: आसार लागे ता कुट बैला भागे माने ये महीना मा पानी बरसते
1: हाँ?
0: ता किसान मन अपन नांगर बैला लेके खेती किसानी निकल जाते।
1: सिरतोन संगी धान के ब्यासी डाले के बूता खेत में नांगर चलाए के बूता और इही महीना में ब्यासी करेले शुरू हो जाते ना।
0: सिरतोन कहा था संगी जब उही खेत के माटी में जब पहली पानी के बूंद आ गिरते
1: हाँ?
0: तब माटी के महर महर महाते तब मन हा गदगद हो जाते।
1: सिर्फ तो संगी गर्मी के घाम ले तपे धरती है आषाढ़ हा शांत करते सुखाए नदिया नरवा में पानी आते चारों कोती हरियर हरियर हरियाली छा जाते और सुघर सुघर ठंडा ठंडा हवा चले धरते ना।
0: जैसे ये गीत में कहा थे आगे रे आषाढ़ गिर गे पानी
1: हाँ।

0: संगी हो, अभी आप मन सुनत रहे हो सुक्तिन मरकाम और साथी मन।
1: आओ ये गीत ला सुने पर चाहरी से अड़ार नान घाट ले माखन वर्मा, चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा मन गेंदर टोला बाजार चौक राजनांदगांव ले वीरेंद्र कुमार गुप्ता अंजलि योगिता गजेंद्र गुप्ता मन लोरमी चचेड़ी ले कमल कांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन कोलियारी कंवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद्र पुणेन्द्र साहिल चंद्राकर मन सहसपुल हाला धनिया खुर्दले गुणी राम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मन अमली डी कंवर्धा ले संतोष राजपूत हेमप्रभा ट्विंकल गौरव राजपूत मन वार्ड नंबर दो गंडई पंडरिया ले शिवा यादव राज चिंटू तरुणा चोवा कन्हैया निर्मला यादव मन लोरमी चचेड़ी ले शंकर कोलाम संतोषी संजय संध्या शिवम कोलाम मन डूमर टोला मंगचुआ बालोद ले भगवानी राम कार्टे गोपिका भावेश माधुरी देवी का कार्टे मन और पीपरपारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन बंगला मटिया बालोद ले शिवकुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला आशुतोष अंगारे मन बीरनपुर कला दनिया गंडई ले सुरेश कुमार साहू तन्मय टेमेश्वरी खिलेश्वरी जंत्रीबाई साहू मन समडील नवापारा ले मुकेश गुप्ता दीपक श्रद्धा गुप्ता अंकु गुप्ता आदिति राधवे गुप्ता मन दतरेंगी ले विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु मन पहारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर मन और देवरी भाटा पारा ले गन्नूराल रजक पुनेश्वर फानेश्वर हाविया टानिया रजक मन
0: अमित अभी घाम के बेरा कते कृष्णा कुछ दिन पहली अब ए असाड़ लग गए
1: हाँ भाई
0: अब पानी हा गिरी से तो तीर तार के रुख मा रुख राई मन नदिया मन कतका सुघर दिखत ना
1: हाँ भाई और जीव जंतु मन घलो बढ़िया खोस खोसायल धर ले है
0: हाँ,
1: और संगे संग में चिरई मन घलो एकदम चहकत हावे
0: अब ते जाने था
1: हाँ।
0: जब पानी गिरते है तो रोड रोड में जब गड्ढा रहते ना
1: हाँ, हाँ।
0: तो पानी हा भर जाते है तो नान नान चिरई मन कैसे रहते ना पानी मस्त नहावत रहते
1: और संगे संग में लइका मन घलो भर
0: हाँ। उबुक चुबुक
1: बने खेलते भाई
0: तो देख के मन ऐसने खुश हो जाते
1: हाँ, हाँ।
0: तो सुमित अमित गोट बात तो चलते रही ओखले पहले सुन लेते सुघर अकन गीत ला

0: संगवारी अभी आप में सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला जिला अपन स्वर में सजारी से विदोशी ममता चंद्राकर कुलेश्वर ताम्रकर
1: और ये ला सुने पर चाहरी से परसठ ओला अम्बागढ़ चौकी लेम प्रकाश मसिया सिलोचनी खुमेंद्र तुषारणी मसिया मनहा पीपल लोड सरगांव ले दीपेश वर्मा पूनम ज्योति शिवांश वर्मा मनहा और हसदा नंबर दो ले कमलेश साहू जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि आकांक्षा पार्वती टिकेश्वरी नागेश्वरी तुलसाराम साहू मनहा भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर लाक्षी यादव मनहा पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता मनहा वीरभूमि सोना खान ले उमेंद्र उर्मी पैकरा कामेश हंसिका लकेश्वरी पैकरा मनहा कल्लू बंजारी ले वीर नारायण उइके ईशान चंद्र प्रकाश डिसीता मालिनी मुनमुन उइके मनहा ढोंडरी घोटिया ले महेश निषाद रंभा रानी निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल निषाद मनहा दहियान बांधा बाजार ले हरिओम साहू रेवा राम रानू सरस्वती प्यारी परमानंद साहू मनहा विजय तला जाल बांधा ले ओम प्रकाश देवांगन नोहर लाल कुमारी बाई डोगेंद्र भिनेश्वरी सुनीति देवांगन मनहा डोंडी लोहारा बालोद ले देवशंकर तामुरिया अजय देव तुषार देव डॉली पूजा प्रभा देवी तामुरिया मनहा बिलहारी पाटन ले संतोष शर्मा रुक्मणी शर्मा नानू सानू ज्योति जूही चंदन शर्मा मनहा और पीपर पारा पालचुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन
0: अमित जब हमन कोनोला मया करथन तो ओखर मतलब होते ओखर प्रति हमर सुखर भावना अपना पन्ना
1: सिरतोन संगी जैसे ये मया दाई ददला लैका बर संगी जोहार और भगवान बर घलो होते
0: और नानकुन लैका मल्ला जब महतारी पुचकार थे तो ओला घलो मया की थे ना
1: कभू कभू मया के उपयोग ला दया के भाव पर घलो होते जैसे ओकर ऊपर थोकिन मया कर देतीन
0: और जब इही मया हा अपन मयारू ला अंतस के गोट ला जताना चाहते ना तो ओखर बोली मा अलगेस मिठास और अपनापन छलकते ना
1: सिरतोन संगी जैसे ये गीत मा कहा थे ना
0: हाँ
1: ना तो

0: संगवारी हो, अभी आप सुनत रहे हो सुघर अकन माटी के गीत ला, जेला अपन स्वर में सजारे से गरिमा दिवाकर हा।
1: और ये ला सुने पर चाहरी सांकरा सोमनी राजनांदगांव ले नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, दिवेंद्र प्रताप और खपरी जमरा सिरसा ले चेतन लाल साहू, रेवा राम, टिकेश्वरी कौशल्या देवी, मोहित प्रतीक मनहा, सलोनी घूमका राजनांदगांव ले देवचरण साहू, हेमा वेदांत, वैभव साहू मनहा।
0: अमित संगी संगवारी मन संग गोट बात करत करत कब बेरा पहा जाते पता नहीं चले ना। तो जाए के पहली काली की कार्यक्रम बता देता हूँ। संगी वो काली की कार्यक्रम आप मन सुनो हिंदी में, जो मैं आप मन सुनो आज मेरी बारी है नए तरह। तो अपन स्वस्थ रहा, मस्त रहा और यही गोट बात संग अपन संगी दामिनी सेन
1: और अमित कुमार साहूला देवा
0: विदा।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 6 बजने को है समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल

0: इलेक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
2: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम व्यू और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
4: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित,
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर में शुरू। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र ये महीना के 20 तारीख ले शुरू हो ही और 13 अगस्त तक चल ही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हा बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 20 जुलाई ले संसद के मानसून सत्र बुलाए के सरकार के प्रस्तावला मंजूरी दे दिहावे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू हा कहिन कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा ऊपर सार्थक बहस चर्चा और निर्णय ले मा ध्यान केंद्रित करे जाही।

0: राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गए है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र ले होइस। ओमन मंत्रिमंडल नेतृत्व जीवन मूल्य आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसन विषय पर बात करें। ये दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ विभागीय कामकाज तक ही सीमित नहीं है, फिर ला जनता के बीच भरोसा के केंद्र घलो बनना है। उन्हें सत्र के दौरान अभय करंदीकर मंत्रिमंडल के सदस्य मंडला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस के बदलत भूमिका ले परिचित कराइन। ओमन बताएं कि अवैया बेरा मा वही शासन प्रभावी माने जाहि जौन तकनीक के उपयोग सिर्फ सुविधा बर नहीं फिर तेज फैसला बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी बर कराए। एकर अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करें। ओमन ग्रामीण आय बढ़ाए बर कृषि मूल्य श्रृंखला ला मजबूत करे बर स्थानीय उद्यम ला बढ़ावा दे बर और गांव केंद्रित विकास के जरूरत ऊपर जोर दें। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर पर अब अगला चरण विकास जनविश्वास और अवसर के हवै। सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन निवेश और स्थानीय आजीविका ये सबो क्षेत्र में प्रगति पर शासन के नवा सोच जरूरी है। ऐसन में मंत्रिमंडल ला आधुनिक प्रशासन तकनीक और जन केंद्रित नीति समझ ले लैस होना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिंतन शिविर ला बदलत समय के जरूरत बताई है। ओमन की हिंकी शासन ला सरलग सीखे बर पढ़ी खुद के मूल्यांकन करे बर पढ़ी और भविष्य के चुनौती के अनुसार खुद ला तैयार करना हो ही। श्री साय की हिंकी अब सरकार ला सिर्फ प्रशासनिक दिनचर्या के रूप में नहीं फिर विकसित भारत के लक्ष्य के अनुसार एक प्रशिक्षित जिम्मेदार व्यवस्था के रूप में गढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह में सामान्य ले कमती वर्षा और ओखर प्रभाव के समीक्षा बैठका करें। श्री शाह कहिन कि सरकार अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह में कमती वर्षा और संभावित सूखा के स्थिति में सरलग नजर रखे हवै। ओमहना कृषि मंत्रालय और दूसर मंत्रालय मनला सतर्क रह के और किसान मनला बने फसल के बोआई के बारे में सलाह दे बर राज्य सरकार मन संग सलाह करे के निर्देश दीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा के तैयारी के समीक्षा करत अधिकारी मनला किसान मन बर खाद बीजा और सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था निश्चित करे के निर्देश दीन है। बैठका में बताया गया कि प्रदेश ला 46,000 टन ले ज्यादा DAP उर्वरक की आपूर्ति मिल गया हवै। मुख्यमंत्री जल संरक्षण वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार ऊपर जोर देवत सबो जिला बर कार्य योजना तैयार रखे के निर्देश दीन। ओमन कहिन की संभावित अल्प वर्षा के चुनौती ले निपटे बर राज्य सरकार पूरा तरीका ले तैयार है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। नई दिल्ली में 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा ऊपर राखे गए राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुईन। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकाय बर अनुदान के अनुशंसा के जानकारी साझा करेगी। एकर अनुसार छत्तीसगढ़ ला अवैया 5 बछर में 11,664 करोड़ रुपया के अनुदान मिली। ए मौका में ग्रामीण स्थानीय निकाय मनला वित्तीय संसाधन के आवंटन पंचायत के वित्तीय क्षमता ला मजबूत करे के और 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा में कामकाज ले जुड़े विषय ऊपर गोठबात करेगी। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम ह 11,000 दिव्यांग मनला स्वरोजगार बर ऋण देवाय के लक्ष्य रखे है। संगे संग हितग्राही मनला कौशल विकास प्रशिक्षण उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया निगम ले अधिकृत आने आने बैंक के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके स्वरोजगार ऋण योजना के काम के समीक्षा करिन। ए मौका मा श्री कावड़िया कहिन कि राज्य सरकार के उद्देश्य दिव्यांग मनला सिर्फ आर्थिक मदद देवाना नहीं, फिर मनला सफल उद्यमी बना के प्रदेश के विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना करे जाही। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई के बीच हुए बैठका में एकर ऊपर सहमति बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम डहार ले अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जावत थे। यही कड़ी मां कवर्धा परियोजना मंडल हा नर चीतल के अवैध शिकार के मामला में 7 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। मिले जानकारी के अनुसार बोरला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट के जंगल में शिकार मां जाल बिछा के चीतल के शिकार करिन। एकर बाद चीतल के मांसला आपस में बांटे के तैयारी करे जावत रही, तभे वन विभाग के टीम दबिश दे के आरोपी मनला गिरफ्तार करिस। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहरले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र मन एक संग्रह रिले कर ही ए बखत के अंक मा सूरजपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेशे मौसम के हाल। राजधानी रायपुर संग्रह प्रदेश के कतकुन जगह में आज गरज चमक के संग तेज वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग वैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ले गोठ बात करत बतायन कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक ठन चक्रवाती घेरा बने हैं। एकर प्रभाव ले प्रदेश में बारिश के गतिविधि बढ़ गया हवे। ओमन बतायन कि अवैया 24 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन जिला में भारी वर्षा होए के संग आकाशीय बिजली गिर सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2-दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर मा शुरू और मौसम विभाग अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाण पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शतकस्य शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जासंकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 3,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45,000 युवकानां कृते नियुक्तिपत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतम् इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीराच्च आतंकवादी गतिविधीन् संचालयन्ति। एते आतंकवादिनः भारत विरोधि कृत्येषु, शस्त्रास्त्र तस्करेषु, निधि संग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोद्धुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् 21-2000 वर्षे UAPA अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीय सर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनावृत्तमाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलिग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। आधिकारिकस्रोतेभ्यः प्राप्तानुसारं प्रशासनेन टेलिग्राम संस्था वञ्चना प्रसारितेभ्यः चलच्चित्रेभ्यः OTT विषयवस्तुभ्यः सद्यः प्रतिबन्धात्मकं पदक्षेपं वोढुं समादिष्टा। अस्य संवाद मञ्चस्य प्रबन्धकाः आगामिषु 15 दिनेषु स्वीकृत कार्याचरणस्य प्रतिवेदनं प्रेषितुं निर्दिष्टाः। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये सञ्जातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य 5 आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। अयं हि ऐतिहासिकः सन्धिः गतवर्षे सितम्बर मासे नवदेहल्यां हस्ताक्षरितं गतः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् अयं द्विपक्षीय निवेश सन्धिः उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सम्बन्धानां दृढीकरणाय अथ एकं सुरक्षितं पूर्वानुमानयोग्यं निवेशवातावरणं निर्मातुमेकं ऐतिहासिकं चरणं वर्तते। मन्त्रालयेन गदितं यत् सन्धेः आधारेण परिसीम्नि निवेशगतिविधिषु प्रवर्धनेन सह भारत इज़राइल देशयोः मध्ये रणनीतिक आर्थिक सहभागिता अपि गभीरा भविता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य पुण्यतिथौ तस्मै सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन् इत्यनेन स्वामी विवेकानन्दः कश्चन महान् देशभक्तः, दार्शनिकः, आध्यात्मिक द्रष्टा चेति व्यपदिष्टः। तेन प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य सभ्यतामूलक चेतनायाः पुनर्जागरणं विहितम्। सहैव देशस्य सनातनज्ञानं कृत्स्नं हि विश्वं प्रति प्रसारितम्। उपराष्ट्रपतिना सबलं विज्ञापितं यत् स्वामिनः आत्मविश्वासपूर्णस्य, प्रबुद्धस्य, करुणापूर्णस्य च भारतस्य परिकल्पना अद्यापि राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः मार्गं दिशति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य संस्कृतम्, आध्यात्मिकतां, राष्ट्रियचेतनां च वैश्विकपटले प्रतिष्ठापयितुं स्वामी विवेकानन्दस्य यत् अवदानं वर्तते तत् अनुपम अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृन्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखाङ्कितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना लेखं प्रकाशयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बद्धपक्षैः सह व्यापकमन्त्रणायाः परं ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तु विज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु 4 मध्यभागे गुजरातराज्यस्य कतिपयेषु, अन्यभागेषु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुषक्रिकेटक्रीडायां भारत इंग्लैण्डदेशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रियक्रीडा अद्य मञ्चेस्टरनगरे क्रीडिष्यते। भारतीय समयानुसारं क्रीडेयम् अद्य सायं 7 समारप्स्यते इति वार्ताः।
2: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं परमानंद करियारे और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए पारंपरिक रचना।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए परमानंद करियारे और सावित्री साहू के स्वर में ददरिया।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, कलाकार थे परमानंद करियारे और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से IIM रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर, मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गया है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र से हुई। उन्होंने मंत्रियों से नेतृत्व, जीवन मूल्य, आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसे विषयों पर संवाद किया। इस दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल विभागीय कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जनता के बीच भरोसे का केंद्र भी बनना है। वहीं सत्र के दौरान अभय करंदीकर ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस की बदलती भूमिका से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वही शासन प्रभावी माना जाएगा जो तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि तेज फैसले, बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी के लिए करे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर के लिए अब अगला चरण विकास, जनविश्वास और अवसरों का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर को बदलते समय की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि शासन को निरंतर सीखते रहना होगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार रखना होगा। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की जानकारी साझा की गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ को आगामी 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने राज्य के संभागीय और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि मूर्ति स्थापना के लिए 10,60,00,000 रूपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा राज्य के 32 नगरीय निकायों में लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। जलवायु परिवर्तन और सुपर अल नीनो के कारण संभावित अल्पवर्षा की चुनौती से निपटने के लिए कल धमतरी में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मित्रों को आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खेती और फसल बीमा की जानकारी दी गई ताकि वे गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर सकें। प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने कम वर्षा की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, दलहनी और तिलहनी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। साथ ही पानी की बचत के लिए वैज्ञानिक तरीके से धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा खेतों में उपलब्ध पानी का सही उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम विश्नोई के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सूरजपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
0: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
8: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम ने 11,000 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कल विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान करंट लगने की दो अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में आज सुबह मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते समय 2 मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। इस घटना में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर जिले के ग्राम भाड़म में कल खेत में काम करने गए पूर्व सरपंच समेत परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में मां और उसके 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच दसनबाई अपने 2 बेटों के साथ खेत में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए मेड़ पर GI तार और नायलॉन की रस्सी से घेराबंदी करने गई थी। इसी दौरान खेत में बिछे तार में अचानक करंट आ गया और 3 उसकी चपेट में आ गए। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है।
9: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की आगामी 3 दिन तक रहने की चांसेस है और आज और कल जो है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और इससे लगे हुए क्षेत्र में, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र में अति भारी वर्षा की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा भी बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और राजनांदगांव संभाग में भी, ये जिलों में भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का संभावना है। और परसों से भारी वर्षा का गतिविधि कम होने के चांस है, लेकिन विस्तार रूप से वर्षा जो है वो परसों भी होने की

0: श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की ग्राम पंचायत तरई गांव के सचिव किशन राठौर को प्रशासनिक अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसी जिले में जिला प्रशासन ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में सेमरा स्थित डीडी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वार्ड को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। बालोद जिले के ग्राम संबलपुर में बीते 30 जून को एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव पुलिस ने दूधगांव चौक के पास एक मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक ने गायों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 9 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। फिल्म बेताब के लिए संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं वर्मा मलिक का लिखा गीत। संगीतकार हैं उत्तम जगदीश। फिल्म वारिस के लिए आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

आशा भोसले और विनोद राठौर को आपने सुना फिल्म चांदनी में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था शिव हरि ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में। निधा फाजली के बोल हैं, शिव हरि का संगीत, फिल्म का नाम विजय।

फिल्म विजय के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप हमारी इसी सभा में रात 8 बजे और रात 9:15 पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दीदी, जैसे कि आप कहत रहे हो ना कि जिन मन थरहा के तैयारी कर डरे, फिर कई जन संगवारी मन हा जे मन हा अभी बोना चाहा था भाई, तो वो मन हा सबले पहली तो बीज उपचार कर ले भाई।
4: हाँ।
3: और कहूं कई जन संगी मन हा बीज उपचार नहीं कर पाए हावे, तो थरहा के उपचार कर ले भाई। एखर ले काहे खेत मा मस्त बाड़ी मा उपचार करे के बाद लगाए मा कीड़ा बीमारी के खतरा थोड़कीन कम रही। तो जैसे पाछू हफ्ता हमारे कई जन संगवारी मन हा अदरक हल्दी और कुचैला जिन मन हा लगाए हुई मन बने ए बेरा मा निंदाई गुड़ाई कर ले भाई। और कंद ऊपर ना दीदी, ए बेरा में ना मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है, काबर एकर ले सुघर एकर बढ़वार होते। और यही समय में दीदी, जैसे आप मन कहते रहो ना कि पानी हा ए बेरा में बहुत अच्छा गिरते, तो ए बेरा में का होते जैसे हमारे कई जन संगवारी मन पपीता नींबू लगाए हावे वो जगह में जम जाते, तो एमा पानी के निकासी ला बतावत रहो कि निकासी बने होना चाहिए। एखर ले काहे अगर कहूं जड़ में थम गए तो या तो गल जाते या तो बीमारी होए के डर रही थे। तो ये सब के बात हमर किसान भाई मन ध्यान रखे। संग
4: यहू बात के ध्यान रखना है संगवारी हो कि भाई बेल वर्गी यदि पौधा आप मन लगाए हो अपन खेत में, तो ओकर नार जो बढ़ते तो वो नीचे नहीं फैलना चाहिए, ओकर सहारा दे बर हमला मड़वा या मचान तैयार करके भी रखना है। काबर पौधा नीचे छछली तब फल और फूल के खराब होए के संभावना बढ़ जाते। भाटा मिर्चा टमाटर के थरहा लगाए के अभी अच्छा समय है। और अगेती गोभी यदि लगावत है संगवारी मन, तो ओकर ऊंचा बैठ के थरहा तैयार कर लेवे। संगे संग भिंडी बरबट्टी गंवार फल्ली के बीज बोए के पहली अभी जो है वो तो तैयारी कर ले। और यही बेरा में सही जो समय है इमा बीच के बोवाई कर सकत थे। और संगे संग जुलाई के महीना जो है वो बागवानी बर भी बढ़िया माने जाते। कहूँ मई जून में गड्ढा के तैयारी हम कर ले हन, तब भाई नर्सरी अच्छा किस्म के ले आओन और फलदार जो पौधा है ओला अभी रोप सकत हन। छोटे छोटे जगह है या आसपास में आपके कोनो परिया पड़े खेत है भाटा है, ते में हमन फलदार वृक्ष लगा सकथन। घर के बाड़ी है तनीबू सीताफल करंदा अनार लगा सकथन। खेत के यदि मेड़ है तो ओकर सदुपयोग करके केला जामुन आम पपीता घलो लगा सकथन संगवारी हो। और ऋचा,
3: हाँ दीदी,
4: भाई जुलाई के महीना हमार संगवारी मन जरूर वृक्षारोपण तो करते छोड़े हैं।
3: हाँ।
4: ये महीना में हम सब संगवारी मन ला एक संकल्प भी करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करन, ओकर देखभाल करन और पर्यावरण ला संरक्षित करें।
3: तभी तो दीदी हमार जिन धरती महतारी है तभी तो हरियाही। और अच्छा, और अभी के बेरा ला देखा दीदी, एक चीज देखन, पेड़ ला जितना तेजी से कटत हावे फिर ओ किस्म ले हमन लगावत नहीं है। तो जैसे एक झन मनखे भी आजकल देखथन कि सीड बॉल बनाए जाते, तो इसने पांच पांच दस दस ठन सीड बॉल बना के कहूं हमन हा खाली जगह में लगाबो तो कतका सुघर हमर धरती हरिया जही।
4: और हमन गोड बात ला तो आगू बढ़ावेज करबो ऋचा। फिर अभी बेरा है किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: हम है भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
3: दीदी आज घर ले निकले हो तो झमाझम पानी ला पहुंचाए काबर अब असार आगे और आज सिरतोन में लागी सके। हाँ भाई असार आगे काबर के आज के पानी जेन है बा बिजली और पानी दोनों एक साथ रही से
1: तो भाई असार के महीना चलत है तो असार के सुघर संगीत घलो सुनवा दे।
3: छाया शर्मा और साथी मन के स्वर में दीदी अब सुनतन ये सुघर से गीत।

0: छाया शर्मा और साथी मन के स्वर में अभी ये सुघरा साड़ के गीत ला सुन के ना दीदी झमाझम पानी ले मोर मन तो जुड़ा आगे हावे।
1: फिर रिचा हाँ? अभी तो मन जुड़ा आगे है। अभी कुछ दिन पहली जब खूब घाम करत रही से, खूब गर्मी होत रही से, तभी एक चीज हमन गौर करे हन कि जगह जगह पानी की समस्या होत रही है नी। और जब पानी के समस्या होते तो ये सिर्फ खाए पिए बर नहीं बल्कि खेती किसानी बर भी होते हैं। तो वो समय जब जेकर पास बोर के सुविधा है वो तो अपन खेती किसानी करते। फिर यहू पाए गए है कि जब गर्मी ज्यादा बाढ़ते तब बोर के पानी घलो सुखा जाते है ना, भूजल स्तर नीचे चले जाते। तब वो भूजल स्तर ला यदि बना के रखना है तो हम ला वर्षा के समय जो जल संचयन है उकर उपाय ला अपनाना है। जल संचयन आज करबो तो काली बार हम ला पानी अच्छा मिली, भूजल स्तर बाढ़ी तो बारह महीना पानी अच्छा रही। तो आज की सलाह मा आज यही विषय में हमार चर्चा है। विषय है स्थाई उन्नत कृषि के लिए वर्षा जल संचयन एक उपाय। और हमर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवीश केसरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा एवं जल अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद। और गोड़ बात करते हैं रिचा वर्मा।
2: संगवारी हो, खेती किसानी में पानी के बड़ महत्ता हबे। और पहले के खेती तो सड़क भरोसा होवत रही से, माने जब वर्षा ऋतु आवे ता ओ बेरा के जिन पानी है ओला संचयन करे, बहुत सारे तरीका अपनावे और जिन खेती है वो सड़क भरोसा कहलावे। फिर अभी के बेरा बदल गए हावे, बहुत सारे नवा नवा तकनीक आगे हे बे। फिर ऐसने ही बहुत से उपयोगी हमन जानकारी हमर कार्यक्रम में देवत रही थन। और ऐसने ही आज हमर बीच में उपस्थित हबे डॉक्टर रवीश केसरी जी हा। आप मन हाबो विषय वस्तु विशेषज्ञ मृदा एवं जल अभियांत्री कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले। और आप मन ले हमन जानबो स्थायी उन्नत कृषि के लिए वर्षा जल संचयन एक उपाय, ये विषय में बड़ फरियाए के गोट बात करबो। फिर ओकर ले पहले आप मन के हमर कार्यक्रम में स्वागत है। सबले पहले आप ले जानना चाहबो कि कृषि खातिर वर्षा जल संचयन काबर जरूरी हावे और ये काय।
3: नमस्कार किसान भाइयों, ये हम देखेंगे जब हमारे गांव में खेतों में जब बारिश होती है तो वो पूरा पानी बह करके हमारे खेत से निकल के, गांव से निकल करके जो आसपास का नदी नाला है उसके माध्यम से बह करके निकल जाता है, जो हमारे उपयोग में नहीं हो पाता है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से हमारा जो कार्य होता है, जब पानी गिरता है हमारे खेत में उसको हमें संग्रहित करना है, संचय करना है और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करना है। जब हम बात करते हैं इसकी महत्ता की, आप देखेंगे लगातार हमारे खेत का में जो पानी का जल स्तर है वो गिरते जा रहा है। जो बोरवेल हमारे पहले पानी अच्छा देते थे, अब जैसे ही गर्मी आती है वैसे सूख जाते हैं और हमारे पास जो उपलब्ध पानी है वो भी समय पे हमारे पूरे फसल को पूरा नहीं पड़ पाता। इसलिए जब बात करते हैं कि इसकी जरूरी क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हम भूजल का दोहन हो रहा है, अत्यधिक हम भूजल का उपयोग अपनी खेती में कर रहे हैं, वर्षा अनिश्चित हो गई है, जलवायु परिवर्तन हो गया, तो इस वजह से हमारे जल चक्र है उससे हमारे पर्यावरण में पानी की कमी हो गई है। उसको ध्यान में रखते हुए अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको वर्षा जल संचयन के विषय पे सोचना है और उस पर कार्य करना है।
2: जी, आधुनिक कृषि खातिर वर्षा जल संचयन काबर महत्वपूर्ण है भाई, यहूला बताते हो।
3: ये जो आधुनिक कृषि है कि हम बात करते हैं कि हमारी जो खेती है वो टिकाऊ खेती हो, जो हमें साल भर हम अपने खेत में फसल ले सकें। तो आधुनिक खेती के लिए इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे तो ही हम खेती को टिकाऊ तरीके से कर सकते हैं, सही समय में खेती कर सकते हैं और खेती में उसका उचित उपयोग करने पर ही सही फायदा हम ले सकते।
2: जी, और एक हम जानना चाहबो कि कृषि में कर का लाभ है।
3: देखिए, जब हम कृषि में पानी एक महत्वपूर्ण, बिना पानी के खेती संभव नहीं है।
2: जी,
3: और जैसे हम अभी बात भी चल रही है, शासन स्तर पर भी सरकार भी बात कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान में हमारे मिट्टी सुधार करना है और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी हमें अच्छे से उपयोग करना, क्योंकि पानी बहुत ही मुख्य चीज इसमें आती है। अब हम यदि वर्षा जल संचयन करते हैं तो हमारे खेतों में नमी बना रहता है। जब यदि बारिश के समय अंतराल आ जाता है, काफी समय तक बारिश नहीं होती है तो भी उस समय हमारे मिट्टी में नमी की मात्रा स्थिर रहती है जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। उसके साथ साथ सिंचाई की लागत में भी कमी आती है क्योंकि हम जब बोरवेल के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो बिजली के खर्च हो या डीजल पंप के माध्यम से या सोलर पंप से उपयोग करते हैं तो हमारी सिंचाई लागत में भी कमी आती है। उसके अलावा हमारा जो भूजल स्तर है क्योंकि जब हम वर्षा जल संचयन करते हैं वो पानी रिस करके हमारे खेत में नीचे जाता है, मिट्टी के नीचे जाता है और हमारा वो भूजल स्तर को भी बढ़ाता है। और जो कि हम बात करते हैं अभी सतत कृषि की, टिकाऊ खेती की, और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रति भी ये हमें मदद करता है जिससे हमारी खेती टिकाऊ खेती के रूप में स्थापित हो जाती है।
2: और जैसे खेत में उपयोग होवैया वर्षा जल संचयन प्रणाली ला घलो थोड़कीन फरियाए के बताते हो आप मन।
3: वर्षा जल संचयन का बहुत सारा तरीका है जिसमें सामान्यतः हम देखेंगे तालाब गांव में निजी डबरी बनाई जाती है और सामुदायिक तालाब भी बनाया जाता है जिसमें हमारा जो वर्षा जल है उसको गांव के वर्षा जल जो बह के निकल जाता है हम उसे वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा चेक डैम होता है, हमारे बहुत सारे नदी नाले होते हैं जो छोटी छोटी चैनल होती हैं जिससे पानी बहता रहता है, वहां पर अगर हम चेक डैम बना देते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो मिट्टी कटाव भी रुक जाता है और पानी का बहाव धीमा होने से पानी रिस करके हमारी जमीन के नीचे जाता है जिससे हमारा क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाता है। उसके अलावा एक होता है पर्कुलेशन टैंक। पर्कुलेशन टैंक सामान्यतः हल्की मिट्टी वाली जगह पर बनाया जाता है जहां पर रिसाव दर ज्यादा हो। जब हम इस पर्कुलेशन टैंक में पानी डालते हैं तो ये पूरा रिस करके नीचे जाता है। इसका मुख्य उपयोग हमारे भूजल को रिचार्ज करना होता है। इसके अलावा हम अपने छत के ऊपर के पानी को भी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिसे वर्षा छत जल संचयन बोलते हैं उस पानी को हम उपयोग कर सकते हैं अपने बोरवेल को रिचार्ज करने में या फिर हमारे भूजल को रिचार्ज करने में। हम ये पानी जो भले कम मात्रा में लेकिन इस पानी का उपयोग हम अगर हमारे घर में बाड़ी या छोटा क्षेत्र है या फिर पशुपालन है हमारे पास, पशु के लिए भी पानी की समस्या गर्मियों में बढ़ जाती है तो हम अगर उस इकाई का पानी छत के माध्यम से इकट्ठा करके रिचार्ज करते हैं तो भी हमें वो फायदा करता है। उसके अलावा अगर हमारी ढलान वाली जमीन है, हमारा खेत ढलान वाला है, वहां पर हम कंटूर बंडिंग कर सकते हैं या छोटे छोटे गड्ढे बना सकते हैं जिससे वर्षा जल इकट्ठा होकर के जमीन के नीचे संचय होगा।
2: तो जैसे हमारे किसान संगी मन हावे वो मन अपन खेत में वर्षा जल संचयन कैसे अपना सकत हावे।
3: वर्षा जल संचयन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खेत का अवलोकन करना चाहिए, हमारे वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ की वर्षा की स्थिति कैसी है, ढलान कैसा है, इन सब चीजों का अवलोकन सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद हमें ये पहचान करना है क्षेत्र में कि जो पानी हमारा बह करके जाता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, ऐसे क्षेत्र की पहचान करनी है। और उसके बाद जो वर्षा जल संचयन के मैंने तकनीकी की बात की उसमें से जो हमारे मृदा या और बारिश के अनुसार उपयुक्त है उस प्रणाली का चुनाव करें और उस तकनीकी को अपनाकर वर्षा जल संचयन का कार्य किया जा सकता है। इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी प्रणाली है उसका देखरेख बहुत जरूरी होता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जो भी निर्माण संरचना का कर रहे हैं उसका देखरेख उचित तरीके से किया जाए।
2: तैकर भर कृषि जल प्रबंधन के उपयुक्त तरीका का है।
3: देखिए हमारे जब हम खेती में पानी का उपयोग करते हैं ज्यादातर हमारा जो बहाव पद्धति है उसी माध्यम से सिंचाई किया जाता है, इससे पानी का नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए हमें बहाव पद्धति के साथ साथ जो उन्नत सिंचाई की तकनीकी है स्प्रिंकलर प्रणाली या ड्रिप सिंचाई प्रणाली इसका उपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो फसल का चुनाव है हमारे पास जो जल उपलब्धता है उसकी अनुसार हमें फसल का चुनाव करना चाहिए। यदि हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में है तो हम अधिक जल मांग वाली फसल उपयोग में ले सकते हैं या फिर अगर हमारे पास पानी सीमित मात्रा में है तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी कम लगती है। इसके अलावा अतिरिक्त सिंचाई ना करें। ज्यादातर देखा जाता है किसान भाई अपने खेतों में पंप चालू करके छोड़ देते हैं और वो पानी अधिक मात्रा में खेतों में होता रहता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही देने से फसल की जो बढ़वार होती वो भी अच्छी होती है। उसके अलावा मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान खेत में जब फसल काटने के बाद जो अवशेष होता है उसे जला देते हैं, उसका उपयोग हम एक मल्चर मशीन होती है, बहुत सारी और भी मशीन आ गई हैं जिसके माध्यम से हम उसे अपने खेत में काट करके बिछा सकते हैं जो मल्चिंग काम करता है जिससे मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो उससे हमारे नमी का संरक्षण भी अच्छा होता है, वो नमी हमारे फसल में बढ़वार में फायदा करती है।
2: तो कृषि जल संचयन में सामान्य तौर पे कौन कौन से चुनौती आती है और इला कैसे हमन एकर बर उपाय अपना सकत हावन?
3: कृषि जल संचयन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उसकी प्रारंभिक लागत। कोई भी संचयन की संरचना बनाने में लागत ज्यादा लगती है। उसके अलावा हमारे जो किसान है उनके बीच में जागरूकता की कमी है और जानकारी के अभाव में उसका अच्छे से प्रबंधन नहीं हो पाता है, और उसके साथ साथ सीमित भूमि उपलब्धता, क्योंकि कोई भी जल संचयन प्रणाली बनाना है तो उसके लिए हमें भूमि भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो शासन स्तर पर और किसान स्वयं भी अपना सकते हैं। शासन स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें निजी डबरी है, तालाब निर्माण है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका माध्यम से जल संचयन अपनाया जा सकता है। इसके अलावा सामुदायिक तरीका है जब किसान मिल करके अपने समूह के माध्यम से कार्य करते हैं। उसके अलावा कम लागत की तकनीकी जैसे बंडिंग और ट्रेंचिंग है, इसमें केवल मृदा कार्य होता है, किसान भाई अपने से स्वयं से बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विभागों द्वारा, कृषि विभाग या उससे संबंधित विभाग हैं, उसके द्वारा प्रशिक्षण और प्रसार कार्यक्रम भी किया जाता है जिससे किसानों को जानकारी मिलती है, उस तकनीकी को वो अपना।
2: तो जैसे ही किसानी में सरकार घलो बहुत चेत लगावत है, तो ऐसन में वर्षा जल संचयन खातिर कोनो योजना भी है का?
3: सरकार द्वारा सामुदायिक स्तर पर, गांव स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसमें महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना जो अब जी राम जी के नाम से जाना जाता है, उसके अलावा डीएमएफ के द्वारा और वाटरशेड कई योजनाएं भी कई जगह चल रही है, और सबसे मुख्य चीज है जनभागीदारी, क्योंकि केवल शासकीय योजना पर निर्भर रहने से समय निकल जाता है, तो जनभागीदारी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर गांव के लोग जनभागीदारी से बहुत सारा तरीका अपना करके संचयन का कार्य के अलावा बहुत सारी जो गांव की समस्याएं हैं उसमें उनको सहायता मिलती है।
2: जी, जावत जावत हमारे किसान भाई मन पर आप मन कोई समसामायिक संदेश देना चाहते हो?
3: किसान भाइयों, चूंकि अब खेती के समय आ गया, खरीफ की तैयारी सभी किसान अब स्टार्ट करें क्योंकि मानसून आने का समय है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कोशिश करें कि हम ऐसी बुआई विधि का उपयोग करें जिसमें पानी कम लगे और जो पानी हमारा खेत में आ रहा है उसको हमें संचयन करना है, क्योंकि सरकार द्वारा भी कहा जाता है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो हम अपने खेती को टिकाऊ खेती बना सकेंगे। धन्यवाद।
2: स्थायी उन्नत कृषि के लिए वर्षा जल संचयन एक उपाय, ये विषय में बड़ सुघर जानकारी देवत रही है डॉक्टर रविश केशरी जी। आप मन विषय वस्तु विशेषज्ञ, मृदा एवं जल अभियांत्रिक, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: संगवारी हो, आज की सलाह में अभी सुनें हमन भेंटवार्ता, स्थायी उन्नत कृषि के लिए वर्षा जल संचयन एक उपाय। विशेषज्ञ रहने डॉक्टर रविश केसरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, मृदा एवं जल अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद ले, और एक संगोट बात करत रही ऋचा वर्मा मन।
0: आओ संगवारी हो, अब सुन ले वो ये सूचना। अवैया मंगलवार 7 जुलाई 2026 को प्रसारित होवैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के विषय हो ही बरसात के मौसम में आवारा पशु के प्रबंधन, और ये विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान करे खातिर स्टूडियो में उपस्थित रही विशेषज्ञ डॉक्टर पदमचंद जैन जी। आप मन हो वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी जिला पशु चिकित्सालय बैरन बाजार रायपुर ले। आप मन के जोन भी जिज्ञासा या शंका हो ही उकर समाधान पाए खातिर हमारे टेलीफोन नंबर हावे 400-3482। हमारे दूसरा टेलीफोन नंबर हावे 400-3483। और हमारे तीसरा टेलीफोन नंबर हावे 400-3484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। और कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हुई 7 जुलाई 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक करे जाही। और ये कार्यक्रम के प्रसारण मंगलवार के ही संझा 7:30 में करे जाही। हमला आप मन के फोन के अगोरा रही। सूचना समाप्त।

0: रिचा,
1: हाँ दीदी,
0: अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न पूछे के। त संगवारी मन, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ हमार प्रश्न लिखे बर। हमार आज के प्रश्न है संगवारी हो, जुलाई महीना मा कौन कौन से साग भाजी लगा सकथन। एक घाव सुन ले, जुलाई महीना मा कौन कौन से साग भाजी लगा सकथन। और ये विषय में हमन चर्चा तको करे हन आज। त संगवारी मन, झट कुन एकर जवाब ल लिख के हमार तिरपाती पठो सकथे। हमार ईमेल एड्रेस है संगवारी हो RAI@gmail.com। आपके जवाब एक हफ्ता के भीतर हमार तक पहुंच जाना चाहिए। और अब बता देथन आप मन ला पाछू हफ्ता में पूछे गए प्रश्न ओकर सही जवाब। पाछू हफ्ता में हमार सवाल रही से संगवारी हो, माटी परीक्षण करत बेरा का बात के ध्यान रखना चाहिए। एकर सही जवाब है, खेत के अलग अलग जगह के चार अलग अलग गहराई तक माटी के नमूना लेवन और छैया जे जगह है वहाँ के नमूना हमला नहीं लेना है। ये बात के सावधानी रखत हमला माटी के परीक्षण के नमूना तैयार करना है। और ये प्रश्न के सही जवाब लिख के हमार तीर पाती पठोए हैं, मेल भेजे हैं संगवारी मन। कांकेर संबलपुर ले फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। लोरमी ग्राम चचेड़ी ले हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी मन।
1: और दीदी और संगी मन भी हावय डोंगरगांव ले है राष्ट्रपाल गजभय, राधिका बेबी अनिष्का, तन्मय गजभय, परसर टोला अंबागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया और तुसारनी मसिया।
0: हाँ।
1: तेंदुभाटा मगरलोड ले है उमेंद्र कुमार निषाद, मोहेश्वरी देविका, पोषण नूतन, सुरेंद्र, यशस्वी, भास्कर, किशन निषाद मन। और कटोरा तालाब ले हावे मोहन देवांगन, प्रभा बेबी, तुषार और भूपेश देवांगन मन।
0: त संगवारी हो, आप मन पाती भेजे एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद तक हुई। और ऋचा भाई, अतका सुघर प्रश्न घलो हो गए हमार है नी। त सुघर असन गीत और एक ठन सुन लेथन संगवारी हो, सुनथन ये सुघर गीत तीरथ राम गड़ेवाल और संगवारी मन के स्वर में ये सुघर गीत ला।

0: तीरथ राम गढ़वाल और साथी मन के स्वर में अभी सुनें ये सुखघर गीत। किसान वाणी के प्रायोजक रहीस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और संगवारी हो होवत है जाए के बेरा तो जाए के पहली बता देवन अवैया दिन के कार्यक्रम। संगवारी हो आज की सलाह में सुनो जानकारी अश्वगंधा और एलोवेरा की खेती बताही डॉक्टर सत्य प्रकाश विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक वानिकी महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र सांकरा पाटन ले। और कृषक प्रश्न मंच के साथ साथ गीत संगीत तो होवेच करी। तदेव विदा जम्मो संगवारी मल्ला सरिता
0: और ऋचा के
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, सुरीले गीतों के साथ प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

0: धरती कहे पुकार के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मां। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में फिल्म ममता का गीत। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को आपने सुना फिल्म प्रेम नगर में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं परसराम यदु और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए गिरिवर दास मानिकपुरी की रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं परसराम यदु और कमला देवी शर्मा के स्वर में ददरिया।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे परसराम यदु और साथियों के स्वरों में छत्तीसगढ़ी गीत। आकाशवाणी का ही रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर अपने कोहोस्ट शक्ति सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। नमस्कार शक्ति।
1: नमस्कार नवीन।
0: शक्ति, खेल प्रेमियों और विशेषकर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें आज उस शख्स पर थी जो इतिहास रचने जा रहा था, और उसने आज कर भी दिखाया जब 145-46 की स्पीड से आ रही उस तेज तर्रार गेंद को उसने बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड के जॉफ्री आर्चर को बता दिया कि ये बल्ला रुकने वाला नहीं है। वैभव सूर्यवंशी।
1: बिल्कुल नवीन, आज की पहली खबर है वैभव सूर्यवंशी। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए हैं। आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया दूसरे T20 मुकाबले में।
0: और वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होगी। और शक्ति, क्रिकेट में ही अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर महिला क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में श्रीलंका का दौरा करेगी।
1: बिल्कुल, क्रिकेट के बाद नवीन बात करते हैं फुटबॉल की, जहां फीफा फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले अब प्री क्वार्टर फाइनल की स्टेज में पहुंच गए हैं, और आज कनाडा का सामना मोराको से और पराग्वे का सामना फ्रांस से होगा। इस पर भी हमारी नजर रहेगी।
0: शक्ति, फुटबॉल के बाद बात स्क्वैश की करेंगे, जहां बहुत अच्छी खबर हमारे पास आ रही है। भारत की तन्वी खन्ना ने PSA चैलेंजर्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है।
1: जी नवीन, आपने कोर्ट की बात की तो बात होगी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के कोर्ट की भी, जहां आज कई मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसपे हमारी नजर रहेगी।
0: स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत क्रिकेट से। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
1: जी नवीन, और भारत ने इस समय तक समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में आज कुछ बदलाव किए गए और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने

0: वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।
1: सुनते हैं मुकेश की ये खास रिपोर्ट।
2: लगातार अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर उतरते ही 15 वर्षीय वंडर बॉय ने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसमें सबसे खास है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 वर्ष पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना। सचिन ने नवम्बर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था तब उनकी उम्र केवल 16 वर्ष 205 दिन थी। वे तब से भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने रहे हैं। लेकिन वैभव ने आज केवल 15 वर्ष और 99 दिन की आयु में ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया। वैभव आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में पहले ही सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। आईपीएल के हालिया सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने 237 के स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए हैं। इसके साथ ही वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने केवल 35 गेंद में शतक जड़ा है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति, आज क्रिकेट प्रेमियों का वो इंतजार खत्म हो गया जो हमें आयरलैंड से लगातार क्रिकेट प्रेमियों की एक जिज्ञासा थी कि कब सूर्यवंशी मैदान में उतरेंगे, कब कोर्ट में उतरेंगे और कब पहला छक्का उनके बल्ले से हमें दिखाई देगा, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया।
0: जी बिल्कुल, आज जब तिलक वर्मा ने उनको अपनी डेब्यू कैप सौंपी तो वो जो उनके चेहरे पे इमोशंस थे वो साफ बता रहे थे कि ये इंतजार सिर्फ हमारे जहन में नहीं था, हमारे मन में नहीं था, इंतजार शायद वैभव को था, उनके बल्ले को था। और गेंद जब जोफ्रा आर्चर की बाउंड्री पार गई है तो शायद सारे जवाब मिल गए।
1: 140 की स्ट्राइक रेट से वो खेले, हालांकि केवल 10 बॉल ही खेल पाए हैं, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी उसमें एक 15 साल का लड़का 146 की स्पीड से खेलता है, 10 बॉले खेलता है, 14 रन बनाता है और छक्के से शुरुआत करता है।
0: जी बिल्कुल, और शायद दर्शक यही देखने आए थे, 2 छक्के लगे, लेकिन कह सकते हैं नवीन ये अभी ट्रेलर है और एक बहुत बड़ी फिल्म बाकी है।
1: 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हुए थे वैभव सूर्यवंशी।
0: और बिल्कुल, और इसके एक साल बाद उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया था मात्र 13 साल की उम्र में नवीन।
1: और अगर आईपीएल की बात करें तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का इतिहास भी रचा था और सबसे तेज भारतीय शतक भी उन्होंने बनाया था।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर।
1: बिल्कुल, और ऐसे ही घाव करने के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल भी किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि, और तमाम खेल प्रेमियों की तरफ से उम्मीद करते हैं कि भारत आज का मैच शायद जीतेगा और अगले मैच में वैभव और तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह सामने आएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: बात महिला क्रिकेट की करते हैं। शक्ति, क्रिकेट की दुनिया में अब एक और इतिहास लिखा जाएगा जब भारतीय बधिर यानी डेफ महिला क्रिकेट टीम इस सप्ताह श्रीलंका का दौरा करेगी और अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलेगी। यह दौरा बधिर महिला टीम का अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में पदार्पण होगा।
0: जी नवीन, 5 मैचों की इस ऐतिहासिक T20 अंतरराष्ट्रीय बधिर टीम की कप्तानी काजल धवन करेंगी, जबकि निदा जबी शेख उप कप्तान होंगी। और भारतीय महिला डेफ क्रिकेट टीम 7 जुलाई से 13 जुलाई तक श्रीलंका के मोरातुवा में डी सेसवा पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेलेगी।
1: अब आपको सीधा लिए चलते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की ओर। इस विश्व कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होगा जहां ऑस्ट्रेलिया 6 बार की चैंपियन है और इंग्लैंड अपनी धरती पर कभी नहीं आ रही। और शक्ति, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 7वीं बार चैंपियन बनने का इतिहास रचने की कोशिश करेगा और इंग्लैंड अपनी जमीन पर अजय रहने की भी कोशिश करेगा।
0: बिल्कुल, 2009 से लेकर 2026 T20 विश्व कप फाइनल इंग्लैंड आज तक अपनी जमीन पर कोई मुकाबला नहीं हारा है और ऐसा ही रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगा। मेजबान इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमी पर 11 मुकाबले खेले हैं और सभी 11 के 11 में उसको जीत मिली है। तो यानी एक तरफ फाइनल में 8 बार अपना फाइनल खेलने उतरेगी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होगी 5वां फाइनल खेलने वाली ये इंग्लिश टीम। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: T20 विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और 6 मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई है। यही कहानी इंग्लैंड की भी रही है। नेट साइवर ब्रंट की कप्तानी में मेजबान टीम अजय रहते हुए खिताबी मुकाबले तक पहुंची है। हालांकि कल इन दोनों में से किसी एक टीम के विजय रथ पर विराम लगना तय है। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 45 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 22 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। है। वहीं 20 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बाजी मारी है, दो मुकाबले टाई रहे हैं जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका है। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबले में भी कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति क्रिकेट के मैदान से अब हम सीधा फुटबॉल के उस महाकुंभ की तरफ चलते हैं जहां पे राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रखे हैं। लगभग अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर ये फीफा महाकुंभ यानी विश्व कप अपना पहुंच रहा है। हालांकि कल अर्जेंटीना और काबो वर्डे ने कड़ी टक्कर हुई, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना मैच 3-2 से अपने नाम कर जीत का सिलसिला उसने बरकरार रखा है।
0: नवीन, मिस्र ने भी इतिहास रचा है और अपना पहला नॉकआउट मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, जहां मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में शानदार डिफेंस और अटैकिंग का एक कॉम्बिनेशन दिखाया और प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट पक्का किया। सुनते हैं कल खेले गए मैचों का हाल।
4: फीफा विश्व कप में अब राउंड ऑफ 16 की रेस के सभी स्लॉट फिक्स हो गए हैं। राउंड ऑफ 32 के अंतिम मुकाबले में कोलंबिया ने कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हरा दिया और मैच के 14वें मिनट में ही जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दाग दिया। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और कोई गोल नहीं होने दिया। एक अन्य मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना काबो वर्डे के खिलाफ एक उलटफेर से बाल बाल बच गया। म्यामा स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में बनाई। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेस्सी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इसके बाद काबो वर्डे के डेराय डुआर्टे ने 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांड्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई। काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स कारबेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर किया। इसके बाद अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया। मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। इससे पहले कल मिस्र ने इतिहास रचते हुए विश्व कप के नॉकआउट मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दी। मुकाबले में 90 मिनट तक दोनों टीमों की तरफ से एक एक गोल किया गया। शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रयास विफल किए जबकि मिस्र ने 4 बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए पहली बार अंतिम 16 का टिकट पक्का किया। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: शक्ति अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन कल एक बहुत बड़ा उलटफेर होते होते बच गया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ही अर्जेंटीना जीत गया हो, लेकिन दिल जीता काबो वर्डे ने।
0: जी बिल्कुल, और एक वो गलती जो हुई मैच के 111वें मिनट में काबो वर्डे के डिने बोर्गस से, जब अपने ही गोल्फ कोर्ट में उनकी गेंद चली गई लियोनेल मेस्सी का एक गोल बचाते बचाते। लेकिन जो अभियान शुरुआत से पहला मैच स्पेन के साथ ड्रॉ खेलना हो या उसके बाद जिस तरह से टीम खेली, शायद कोई फुटबॉल प्रेमी नहीं कहेगा नवीन कि ये टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही है।
1: शक्ति, ये इतिहास रहा है फीफा विश्व कप का कि कभी ना कभी कोई ना कोई छोटी टीम ऐसे बाहर निकल कर आती है जो सबको चौंका देती है, और शायद ये कल जो मैच हुआ था वो सबको चौंका देने वाला मैच होता कि मेसी के रहते अर्जेंटीना हार जाती। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा मैच खेला गया और मैच अंतिम समय तक गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें आपको मैच खेलना पड़ा। अगर यही परफॉर्मेंस अर्जेंटीना की राउंड ऑफ 16 के मुकाबलों में रही तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, अर्जेंटीना को वापस एक बार अपने परफॉर्मेंस की तरफ देखना होगा और मोर्चों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो इस टूर्नामेंट से निकल के आई, इस मैच से निकल के आई, कि इस पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है काबो वर्दे।
1: जी, फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले आज रात से शुरू हो रखे हैं और आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ह्यूटन स्टेडियम में होगा कनाडा और मोरक्को के बीच, और दूसरा होगा फ्रांस की टीम का, और फ्रांस जो है इस बार खेलेगी पराग्वे से।
0: जी बिल्कुल, और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होती है एम्बापे की। किलियन एम्बापे सबसे आगे हैं गोल्डन बूट की रेस में और टीम को सबसे अधिक उम्मीदें टीम के स्टार खिलाड़ी से होने वाली हैं।
1: जी शक्ति, पैराग्वे और फ्रांस के बीच अब तक कुल मिलाकर 5 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और इसमें फ्रांस का जो पलड़ा है वो लगातार भारी रहा है। फ्रांस ने 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रखे हैं और फ्रांस को पैराग्वे के खिलाफ अपनी पहली जीत का इंतजार है। अगर आपको ये जीत देखनी है, ये मैच देखना है, तो आज इंतजार करना होगा।
0: जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा। लेकिन उसके पहले एक और बहुत शानदार मुकाबला होना है जो कि कनाडा और मोराको के बीच खेला जाना है। दोनों टीम के अगर आपस के स्कोर की बात की जाए, 2 मुकाबले खेले गए हैं और मोराको का दबदबा थोड़ा सा भारी है, एक मैच जीता है और एक ड्रॉ किया है नवीन
1: भी। फीफा विश्व कप के इतिहास में दोनों की ये दूसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2022 में वर्ल्ड ग्रुप स्टेज में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हरा दिया था। अगर आप इन दोनों मैचों को देखना चाहते हैं तो सुबह 2:30 यानी 2:30 पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे और आज रात 10:30 टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। फुटबॉल के बाद अब आपको लिए चलते हैं हम उस ग्रास कोर्ट पे जिसका इंतजार टेनिस प्रेमियों को शुरू से ही रहता है। जून का महीना हो, जुलाई का महीने की शुरुआत हो, जून का आखिर हो, तो सब रुक करते हैं विंबलडन की ओर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जहां पुरुष सिंगल्स में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का सामना अमेरिका के मार्कस गिरा से होगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया के एडी मिनार ने अमेरिका के जेट्री स्वाजदा को 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 से हरा दिया।
0: जी और महिला सिंगल्स की बात की जाए तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक का मुकाबला फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा इला से जारी है और एक अन्य मुकाबले में कजाकिस्तान की एलिना रॉय बकीना ने बेल्जियम की एलिस मार्टिस से उनको हार का सामना करना पड़ा 7-6, 6-1 से।
1: शक्तिकल इस टूर्नामेंट में एक शानदार मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने आर्थर रिंडरकनेक को 3 घंटे चले मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 से हरा दिया।
5: And take the claim of the crowd one more time.
0: और इस जीत के साथ ही जोकोविच विंबलडन के पुरुष सिंगल्स में सबसे अधिक जीत के मामलों में दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर के बराबरी पर आ गए हैं। अब उनसे आगे सिर्फ मार्टिना नवारितोवा हैं जिनके नाम पर 120 जीत दर्ज हैं।
1: और अब बात स्क्वैश की। स्क्वैश में तन्वी खन्ना ने पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब जीत लिया और मुंबई में खेले गए फाइनल में तन्वी ने मिस्र की फरीदा वालिद को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है लेकिन चलते चलते अब तक का स्कोर सुन लेते हैं शक्ति से।
0: जी बिल्कुल, और 19 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है। भारतीय टीम 6 विकेट खोकर 188 रन स्कोर बोर्ड पर चढ़ा चुकी है।
1: तो आज के इस अंक में लिस्टनर्स बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए मुझे नवीन और मेरे साथ शक्ति को। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए

0: बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: लॉडिंग द डाइवर्स वर्कफोर्स एट द प्लांट, द प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड

0: रेशमा और शेरा। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। उद्धव कुमार के लिखे गीत को संगीत दिया था जयदेव ने।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात। सुनिए, इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी के बोल। फिल्म सुराग के लिए धुन बनाई है बप्पी लाहिड़ी ने।

थोड़ी सी बेवफाई। इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। नक्श लायलपुरी के बोल थे खयाम का संगीत। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकराकर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
3: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई।
2: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
3: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
2: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
4: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
3: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
4: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
3: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
2: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
3: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
4: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
5: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
6: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
5: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
6: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए,

0: वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी

0: हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उससे मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
1: सुख से नहीं विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
0: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे शहीद थे उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्यकृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर

0: या कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्लियो कस चढ़ आया मदोन्नमत यू नान जानता था न मगध के बल को समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से हम कृतज्ञ हैं सेल्लियोकस ने अवसर हमें दिया है दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्लियोकस ने वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्लियोकस था आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो तो ये है रामधारी सिंह दिनकर
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष उमाशंकर जोशी अजीत कुमार महाश्वेता देवी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गोपाल दास नीरज कुंवर बेचैन कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं वाचन स्वर नीलम मलकानिया प्रस्तुति सहयोग वंदना आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई। भारत के
2: शामिल है किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
3: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kannan, Vidushi Malabika Kannan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान